0: स्वर रंजिनी, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। आज आप सुने थे विपुल कुमार राय के सितार वादन में अहिर टोड़ी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 6 बजने को हैं, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जिगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में

अभी आपने सुना पंडित विश्वनाथ के स्वर में ये भजन, और लीजिए अब सुनते हैं माधुरी खरे के स्वर में ये भजन।

माधुरी खरे के बाद और आज के इस वंदना कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति भाई गुरदयाल के स्वर में।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास प्रतिदिन अनेक लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। स्वामी जी से अपनी जिज्ञासा व्यक्त करके व उनसे समाधान पाकर लोग खुशी खुशी अपने घर लौटते थे। एक व्यापारी अपने जीवन में बहुत व्यस्त रहता था। उसका व्यापार बहुत तरक्की कर रहा था। वह अपने व्यापार में पूरी ईमानदारी बरतता था। ईश्वर में भी उसकी अटूट आस्था थी, किंतु उसे अपने व्यस्त जीवन में आराधना का समय नहीं मिल पाता था। वह अपनी इसी समस्या को लेकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा। स्वामी रामकृष्ण बोले, इस प्रश्न का जवाब मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, पर पहले तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी ग्रामीण स्त्री को ढेंकी से चूड़ा बनाते देखा है? स्वामी जी का यह अजीबोगरीब प्रश्न सुनकर व्यापारी बोला, नहीं स्वामी जी, मैंने तो किसी ग्रामीण स्त्री को ऐसा करते आज तक नहीं देखा। अरे, मुझे अपने व्यापार से फुर्सत मिले तब तो मैं कुछ देखूं। इस पर स्वामी जी बोले, चूड़ा बनाने वाली ग्रामीण स्त्री एक हाथ से चूड़ा पलटती जाती है तथा दूसरे हाथ से बच्चे को गोदी में लेकर दूध पिलाती रहती है। उस दौरान यदि कोई पड़ोसन या अन्य व्यक्ति उसके पास आता है तब वह उनसे बातें भी करती है, ग्राहक आने पर उनसे हिसाब भी करती है, किंतु इन सब के बीच उसका कार्य निरंतर चलता रहता है। इन सब कामों के बीच उसका ध्यान ओखली और मूसल पर लगा रहता है। वह भली भांति जानती है कि यदि थोड़ी सी भी असावधानी बरती गई तो मूसल हाथ पर गिरेगा और हाथ टूट जाएगा। उस ग्रामीण स्त्री की तरह ही हमें अपने सांसारिक कार्यों के बीच सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। उसके लिए अलग से समय नहीं निकाल पाने का पछतावा नहीं करना चाहिए। स्वामी जी के इस उदाहरण से व्यापारी भली भांति समझ गया कि व्यस्त रहते हुए भी ईश्वर की आराधना की जा सकती है। तभी स्वामी जी बोले, पुत्र, एक बात और याद रखना कि कार्य और व्यापार में ईमानदारी बरतना, मन लगाकर काम करना भी ईश्वर की आराधना के ही बराबर है। व्यापारी स्वामी रामकृष्ण परमहंस से अपनी जिज्ञासा का उत्तर पाकर संतुष्ट हो गया और उन्हें प्रणाम कर वापिस चला गया।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और लीजिए, अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 100।

शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का ये वचन सुनकर कि शूरवीर तो युद्ध में करनी कर दिखाते हैं, मात्र कहकर डिंग नहीं मारते, ऋषिवर ने अपना फरसा संभाल लिया। बोले, अब लोग उन्हें दोष ना दें, ये मूर्ख बालक मारे जाने के ही योग्य है। बात बढ़ते देख मुनि विश्वामित्र ने अपने शिष्य के अपराध की क्षमा याचना की। कहा, बालकों के दोष गुण को साधुजन नहीं गिनते। मन ही मन वो हंसे कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। सर्वत्र विजयी होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्हें कदाचित ये नहीं मालूम कि ये दो कुमार फौलाद की खंड हैं, ईख की खंड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाएं। परशुराम की धमकियों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर कटाक्ष किया कि माता पिता के ऋण तो मुनिवर चुका ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब हिसाब करने के लिए यदि किसी को बुला लें तो वो थैली खोल दें। मुनि की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचन को आहुति समान जानकर श्री राम ने अनुज को शांत होने का इंगित किया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हेलमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम में 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। मंत्रालय ने कहा है कि वैध दस्तावेज के बगैर या आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से परेशान होने की संभावना बढ़ जाती है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की योदाई ओकीमोतो को पराजित किया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ले युंग के होगा। फीवा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने पैनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: tournament in Bosnia and Herzegovina. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हो चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम संगीतिका का। लीजिए सुनते हैं संगीतिका में अंजलि भारद्वाज के गाए भजन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आपने सुने अंजलि भारद्वाज के गाए भजन। जी हाँ, 7:30 हो चुके हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। ये समय जिसका आपको होता है बेसब्री से इंतजार, क्योंकि ये समय है गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। गीतों भरी गुड मॉर्निंग लेकर आज आपके साथ है आपकी दोस्त कुसुम लता। जी हाँ, कुसुम लता है आपके साथ।

जिन जो संदेश हैं आपके, उनको आप भेजेंगे तो किस पर भेजेंगे, वो ईमेल आईडी हम आपको बता दें, वो है ipradiodelhi@gmail.com। जानते हैं आप, आलस में यहाँ संडे है, छुट्टी का दिन है, और लेकिन कुछ तो नया होगा। क्या आज के दिन नया करने वाले हैं आप? क्या प्रोग्राम है आपके, क्या प्लानिंग है आपकी, बताइए ना हमें भी। हम भी आपकी आंखों से वो जगह देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, जिन्हें आप आज देखना चाहते हैं और घूमना चाहते हैं। जी हाँ, क्योंकि कहते हैं ना, एक से दूसरे को हाथ होता है, एक से दूसरे का साथ होता है। आपके जरिए ही सही हम नई नई चीजों को देख ले, जान ले, घूम ले और स्वाद ले ले। जी हाँ, तो ये सब आप बताएंगे कहाँ, ये सब बताएंगे आप अपनी दोस्त कुसुम को ipradiodelhi@gmail.com पर। फिलहाल कार्यक्रम का आगाज करते इस खूबसूरत गीत के साथ, जो है सोनू निगम और अलका याग्निक के स्वर में।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

लगता है संडे है, तो संडे के दिन बहुत ही आराम के मूड में है मेरे सारे दोस्त, क्योंकि अभी तक कोई नहीं जागा, और नहीं जागा तो कोई बात नहीं, गीत सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए, हम भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि एक दिन तो भाई आराम बनता है ना। तो लीजिए सुनते हैं अगला गीत, लता मंगेशकर और भूपिंदर के स्वर में।

और देखिए कार्यक्रम लगभग आधा हो चुका है क्योंकि अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 12 मिनट। और 12 मिनट में यदि आप बात करना चाहें तो हम अब बता देते हैं आपको अपना ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी है इंद्रप्रस्थ। जी हाँ, इंद्रप्रस्थ का ईमेल आईडी है हमारा ip.radio.delhi@gmail.com, ip.radio.delhi@gmail.com पर आप हमें संदेश भेज सकते हैं और अपनी बात साझा कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास संदेश आ चुका है मंटू शर्मा का, कहते हैं आज सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। बाकी संदेश में क्या लिखा है नहीं दिख रहा है क्योंकि एक काली पट्टी का नजर आ रही है, सिर्फ ऊपर मैसेज में समझ आ रहा है कि ये लिखा है आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग जी। आज आपका कार्यक्रम सुनने में हम थोड़ा लेट हो गए, शायद इन्होंने ये लिखा है। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। तो लीजिए सुनते हैं अब ये गीत किशोर कुमार के स्वर में।

तो कुछ हमारे दोस्त जाग चुके हैं क्योंकि सुबह के 8 बजने को हैं। देखिए ना, नींदो शहर डिस्ट्रिक्ट बदीन सिंध पाकिस्तान से सिराज अहमद जी संदेश भेज रहे हैं। सिराज अहमद मेमन और महक मेमन हैं साथ। काफी टाइम पहले सूरज के साथ साथ प्रोग्राम सुनते थे, फिर अचानक वो प्रोग्राम गुम हो गया। काफी ढूंढा उस प्रोग्राम को, गूगल से पूछा तब भी नहीं मिला। अब अचानक ये प्रोग्राम मिला है। अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो प्लीज बताएं क्या बात है। देखिए, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, तो अब के बाद आप सुनेंगे 10:10 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम। उसमें आप अपने संदेश भेज सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं, अपनी पसंद के गीत सुनना चाहें तो वो भी मेल कर सकते हैं। तो सिराज जी उदास ना हो, परेशान ना हो, हताश ना हो। कार्यक्रमों में थोड़ी सी तब्दीली हो जाती है लेकिन ढूंढने पर मिल जाती है, जैसे आज हम आपको मिल गए। तो चलिए, अब कार्यक्रम का जो समय है बहुत ही कम रह गया है, सिर्फ 5 मिनट शेष बचे हैं। तो लीजिए सुनते हैं ये गीत, और इस गीत के साथ आपको छोड़े जाती

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय

0: नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदाम्बी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP Zone 2 पवन बंसोड इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को

0: तरह की समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं से कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
4: हमारे यहाँ दो कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के 1-1 गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी लवलीन, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की

0: बाजी की तो गोवा के 14 वर्षीय एथनवाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद प्रेसिडेंट ऑफ सेशेल्स पैट्रिक हर्मिनी टुडे टू ऑल्सो एड्रेस सेशेल्स नेशनल असेंबली एंड इंटरैक्ट विद मेंबर्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा। Prime Minister to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 this morning. Ministry of External Affairs asks Indian citizens

0: अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के सदर पैट्रिक हरमिनी से बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा शराकतदारी के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे और बाहमी मफादात के इलाकाई व बैन अल-अक़वामी मामलात पर अपने ख्यालात का तबादला करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेशल की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे और भारतीय बरादरी के अरकान से बातचीत करेंगे। बाद में वज़ीर-ए-आज़म मोदी रोश कैमन में कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजारत ने बताया कि भारतीय दिफाई अफवाज का एक दस्ता भारतीय बहरिया के दो जहाजों के साथ इन तकरीबात में हिस्सा लेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के तीन रोजा सरकारी दौरे पर हैं। इस दौरान वो सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली में मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत करेंगे। यह दौरा भारत और सेशल्स के दरमियान मजबूत और देरपा दोस्ती को तकवियत देगा और तमाम शोबों में दोनों मुल्कों के दोतरफा ताल्लुकात के मुश्तरका अज़्म को फरोग देगा। नई दिल्ली से आकाशवाणी के लिए अक्षित विद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बोटेनिकल गार्डन्स का दौरा किया और शजरकारी की एक तकरीब में हिस्सा लिया। उन्होंने बोटेनिकल गार्डन में जायंट टोर्टाइज इनक्लोजर का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म सेशल्स के अपने तीन रोजा दौरे पर कल विक्टोरिया पहुंचे। एयरपोर्ट पर सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। यह माहाना रेडियो प्रोग्राम का 135वां नशरिया होगा। यह प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नशर किया जाएगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तला व नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो कैलाश मानसरोवर यात्रा उस वक्त तक शुरू न करें जब तक उन्हें पूरे सफर के लिए तमाम जरूरी दस्तावेजात हासिल न हो जाएं। वजारत ने यह हिदायत निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हुए नेपाल में फंसे हुए भारतीय यात्रियों की मदद की दरखास्तें मौसूल होने के बाद जारी की हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: वजारत खारजा ने कहा है कि कुछ भारतीय शहरी निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हो गए, लेकिन वो चीन में दाखिल होने के लिए लाजमी वीजा और एंट्री परमिट हासिल किए बगैर नेपाल पहुंच गए। इसके नतीजे में कई यात्री नेपाल में फंस गए और उन्होंने वजारत खारजा से मदद तलब की। वजारत ने यात्रियों को हिदायत दी है कि वो तमाम सफरी दस्तावेजात और इजाजतनामों की तस्दीक के बगैर सफर शुरू न करें, क्योंकि जरूरी इजाजतनामे हासिल होने से पहले रवानगी सफर के दौरान मुश्किलात का बायस बन सकती है। वजारत ने यह भी कहा कि यात्री रवानगी से कबल इस बात की जरूर तस्दीक कर लें कि उनका टूर ऑपरेटर बाकायदा रजिस्टर्ड और मजाज है। वजारत खारजा की इस हिदायत का मकसद यात्रियों के लिए महफूज, आसान और बिला रुकावट रूहानी सफर को यकीनी बनाना और उन्हें गैर जरूरी परेशानी से महफूज रखना है। दिल्ली से रोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहन अम्मार।
0: उमूर दाखिला और इमदादी बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज शाम गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रेकर आजमाइशी प्रोजेक्ट का बाजाब्ता इफ्तिताह करेंगे। इस नए इकदाम का मकसद खानदानों के लिए सेहत की निगरानी के निजाम को बेहतर बनाना, नीज सेहत और फलाही खिदमत तक उनकी रसाई को मजीद आसान बनाना है। जनाब अमित शाह अहमदाबाद में बूथ सुदूर और शक्ति केंद्रों के इंचार्ज के लिए मुनक्कदा खसूसी चिंतन शिविर में भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर वो जमीनी सतह पर तंजीमी हिकमत अमली का जायजा लेंगे और मकामी पार्टी वर्करों से भी बातचीत करेंगे। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत ने गुज़श्ता 12 वर्षों में सेहत की देखभाल में नुमाया पेशरफ्त की है और वो हर शहरी के लिए काबिले रसाई, किफायती और मेयारी सेहत की देखभाल को यकीनी बनाने और आलमी सेहत की कवरेज के वसी तर हदफ की सिमत काम कर रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के नौवे एडिशन से खिताब करते हुए मोहतरमा पटेल ने कहा कि हुकूमत ने अपनी पॉलिसी के मरकज में रोकथाम के साथ अपनी सेहत के नुक्ते नजर की बीमारी की देखभाल से तंदुरुस्ती और मुकम्मल तौर पर इलाज मुआलजे से जामे सेहत की देखभाल की तरफ मुंतकिल कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद होने वाले 6 जांबाज फौजियों की

0: तो मकानात की फेरिस्त साजी और गिनती का काम 100% मुकम्मल कर लिया है। ऐसा करने वाला ये मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पहले अजला में से एक बन गया है। हम अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के हिस्से के तौर पर छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के बारे में एक मुजाकरा नशर करेंगे। ये कैफे अंबिकापुर म्यूनिसिपल कारपोरेशन चलाती है, जिसमें प्लास्टिक कचरे के बदले में खाना पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में हमने गार्बेज कैफे के इंचार्ज रितेश सैनी से बात की।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: इस बातचीत को आप 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर आज सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। आप हमारा ये प्रोग्राम न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। बैडमिंटन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत कैलिफोर्निया में जारी अमरीकी ओपन चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में एक सख्त मुकाबले में जापान के खिलाड़ी युदाई वुकीमोतो को 22-20, 15-21, 21-19 से हराया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ है मोहम्मद अम्मार।
5: शुक्रिया फैसल। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम मोदी के सेशल्स पहुंचने की खबर को अव्वलियत के साथ शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, सेशल्स बहर हिंद खित्ते में भारत की बहरी सलामती और खुशहाली की हिकमत अमली का कलीदी हिस्सा है। वजीर आजम मोदी सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब भी करेंगे। इसी अखबार ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान को शह सुर्खी बनाया है, रिहायश के लिए जरूरतमंद लोगों के इलाज और मकान का इंतजाम करेगी हुकूमत। रोजनामा इनकलाब ने अपने अंदरूनी सफे पर एक अहम खबर को शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मुल्क की पहली 8-लेन सुरंग खोल दी गई। इसी अखबार ने अपने आलमी सफे पर एक अहम खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है, ईरान के मुतादिद फौजी अहदाफ पर अमरीका की बमबारी, तेहरान का जवाबी हमला।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के सदर पैट्रिक हरमनी के साथ बातचीत करेंगे। वो सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब करेंगे और वहां मुकीम भारतीय बिरादरी से बातचीत करेंगे। वजीर आजम आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों से कहा है कि वो तमाम जरूरी सफरी दस्तावेजात के बगैर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर न जाएं। अमरीकी फौज ने सदर ट्रंप की हिदायत पर लगातार दूसरे दिन ईरान में मुतअद्दिद ठिकानों पर हमले किए हैं। वेनेजुएला में जलजले से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1430 हो गई है। बचाव टीमें अभी जिंदा बच जाने वाले अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
6: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर।
7: यह आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, तकनीक ने हमारे पढ़ने लिखने के ढंग को पूरी तरह बदल दिया है। आज का लेखक सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि ब्लॉग्स, किंडल और ईबुक्स के जरिए सीधे हमारे स्मार्टफोन तक पहुंच रहा है। इसी बदलते दौर की नब्ज को टटोलने के लिए लीजिए सुनिए ई साहित्य की पठनीयता, संभावनाएं और चुनौतियां। विषय पर परिचर्चा, प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं प्राचार्य और साहित्यकार डॉ. देवेंद्र देव, युवा साहित्यकार सुश्री रश्मि ममगाई, शिक्षा विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार और युवा साहित्यकार श्री आरडी गौतम। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं श्री आरडी गौतम।
8: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम अपने इतिहास के पन्नों को पलटकर गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। अतीत के तमाम अनूठी

0: आवाजों को सुनकर भाव विभोर हो रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। इस पर बात करने के लिए हम आप सभी के विचार जानेंगे और ये देखेंगे कि ये जो ई साहित्य है आखिर ये है क्या, और चलते हैं आदरणीय रश्मि ममगाई जी की ओर। ये ई साहित्य क्या है, हमें समझाएं जरा।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ई साहित्य साहित्य का ही डिजिटल स्वरूप है। जहाँ पहले हम कागज पर अक्षरों के माध्यम से साहित्य को ग्रहण करते थे, वहीं अब हम अपने मोबाइल पर कंप्यूटर पर उसे पढ़ सकते हैं। ई साहित्य की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह हमें आसानी से प्राप्त हो सकता है।
0: जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो ई साहित्य की पठनीयता की संभावनाएं हैं आखिर वो क्या क्या है, हम चलते हैं डॉक्टर देवेंद्र देव जी की ओर। आपके विचार क्या है?
2: जी, ई साहित्य साहित्य का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है जिसकी शुरुआत 1950 के आसपास से मानी जाती है। 1960 में एक ग्रुप था सिएटल ग्रुप के नाम से, उस ग्रुप ने कोशिश की कि जो डिजिटल फॉर्म में जो लिखा हुआ है वो डिजिटल फॉर्म आए ताकि उसकी पठनीयता हर जगह अवेलेबल हो सके। और फिर वो चलते चलते 70-80 के दशक में थोड़ा और फला फूला और आज हमारे सबके हाथ में ई साहित्य उपलब्ध है। सबसे बड़ी इसकी खासियत है एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी कि जिसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं।
0: आपने बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी की ओर चलता हूं और विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी,
3: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ई साहित्य के और भी रूप जो दिखाई देते हैं, जैसे ई बुक्स है, ई ऑडियो है, ब्रॉडकास्ट आजकल चल रहा है, इसके अलावा ब्लॉगिंग होती है। उसका फायदा ये होता है कि जैसे सपोज किसी साहित्यकार ने कोई साहित्य लिखा और कोई उसी की तरह प्रबुद्ध कोई साहित्यकार है या कोई उसका पाठक है, वो उस साहित्य पर अपनी कोई टिप्पणी देना चाहता है तो वो ब्लॉगिंग के जरिए पुस्तक पर अपनी टिप्पणी दे सकता है। उसका फायदा ये होता है कि सामान्य जो पाठक है, जो भी उसने पढ़ा नहीं है, उसके पास एक पृष्ठभूमि होती है उस साहित्य को पढ़ने से पहले। तो ये तो इसके अलग अलग रूप है। जब हम छोटे थे तो हम कहीं यात्रा पर निकलते थे, पिताजी हमारे कहते थे बेटा कुछ बुक्स रख लो, रास्ते में पढ़ लेना। दो या तीन बुक रख लेते थे। जब से ये साहित्य का कॉन्सेप्ट आया है तो आप एक फोन पर ही हजारों बुक रख सकते हैं और अलग अलग राइटर के बुक रख सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो साहित्य है वो सर्वसुलभ हो गया। सब उसको कहीं भी किसी जगह भी पढ़ सकते हैं और किसी प्रकार का साहित्य पढ़ सकते हैं। अगर मुझे मुंशी प्रेमचंद को पढ़ना है, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ूं, या किसी और, चाहे हिंदी का, इंग्लिश का, किसी भाषा का साहित्य में पढ़ सकता हूं। दूसरी इसकी संभावना बहुत अच्छी हुई कि बहुत सारी ई बुक्स में क्या होता है, साहित्य के साथ साथ एनिमेशन भी चलता है। तो साहित्यकार जो बताना चाह रहा है अपने विषय वस्तु को, उसको आप एनिमेशन के फॉर्म में उसे महसूस कर सकते हैं। तो उससे पाठक को उत्सुकता भी बनती है और रोचकता भी आती है। और एक इस तरह से ऑडियो बुक है, आप अगर पाठक पढ़ना नहीं चाहता तो वो एक ऑडियो चला करके उसे सुन सकता है। तो इस साहित्य ने साहित्य को सर्वसुलभ बना दिया, रोचक बना दिया और पाठक को उत्सुक किया ताकि वो लगातार उस पर अपनी जानकारी देता रहे। इसकी पोर्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ तो यहाँ पढ़ सकता हूँ, मैं किसी भी जगह जाता हूँ वहां पर ही 2 मिनट में मुझे लगता है मैं फोन पर या अपने लैपटॉप पर या आईपैड पर उसको देख सकता हूँ या सुन सकता हूँ। तो इससे आपकी पोर्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसके चलते सर्वसुलभ हो गया है।
0: तो जो ई बुक्स हैं इन्हें हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ते हैं, पाठक इससे अच्छी तरह से अवगत हैं। ई पब के जरिए, मोबी लिंक के जरिए और किंडल पर इन्हें अच्छी तरह से भली भांति पढ़ा जा सकता है। अब हम चलते हैं आदरणीय रश्मि ममगाई जी की ओर कि ये जो ई साहित्य है किस तरह से ये हमारे पाठकों के लिए उपलब्ध है, किस तरह से इसकी संभावनाएं और अधिक हो सकती हैं?
1: जी बिल्कुल, क्योंकि पहले जो पुस्तकें थी उनको अगर हमें पढ़ना है तो हमें बहुत खर्च करना पड़ता था उन पुस्तकों के लिए, और बहुत सारी पुस्तकें उसके बाद भी दुर्लभ होता था प्राप्त करना, हर किसी के बस में नहीं था। लेकिन अब जब से ई साहित्य हुआ है तो हम सिर्फ एक मोबाइल के जरिए बहुत अधिक खर्च न करते हुए अपने पसंदीदा लेखकों को और उन पुस्तकों को भी जिनका मिलना दुर्लभ है, या इसके अलावा अन्य भाषाओं की पुस्तकें भी हम आराम से और कहीं पर भी किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में, चाहे हम घर में हो, बस में हो या सफर में हो, कहीं पर भी उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये ई साहित्य की बहुत अधिक संभावनाएं हैं इसमें।
0: ज्ञान का तो दायरा बहुत बड़ा होता है, वो क्या पता आज हमने पढ़ा समझ में 2 महीने बाद आएगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें तो ई साहित्य में पर्यावरण का बचाव भी होता है, क्योंकि पुस्तकों को छापने के लिए कागज की आवश्यकता होती है और कागज निर्माण में आप सभी जानते हैं कि पेड़ों को काटकर ही कागज तैयार किया जाता है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये ई साहित्य पर्यावरण के अनुकूल भी है। इसके अलावा मैं चाहूंगा कि डॉक्टर देवेंद्र देव जी, इस आसानी के बारे में कोई और लाभ आप

0: आपके नजर में आता हो तो आप हमें समझाने का प्रयास करें।
1: जी, जैसा कि अभी ज्ञानेंद्र जी ने बताया भी था कि किंडल और लैपटॉप में इनमें हम जो ई साहित्य हमें प्राप्त होता था वो सबसे ज्यादा जो विस्तार पाया है वो मोबाइल ने पाया है, मल्टीमीडिया ने। जब से मोबाइल में ई साहित्य आया है तब से वो सभी के हाथ में आ गया। तो आपके पास वैसे एक मोबाइल होना चाहिए, और ममगई मैम ने भी बताया है कि इतनी एक्सेसिबिलिटी है उसमें, आप किसी भी राइटर को, उसकी कोई भी कविता, उसका कोई भी लेख लेखन आदि सब ले सकते हैं। और जहां तक रोचकता की बात है तो हाइपर टेक्स्ट में और मल्टीमीडिया में एनिमेशन के द्वारा, और ये जो इसका एक सबसे बड़ा जो लाभ है वो है ऑडियो बुक का। वो लोग जिनकी नजर कमजोर है या जो बाकी कई कारणों से पढ़ने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते, तो ऑडियो बुक के द्वारा भी वो उस साहित्य का पूरा आनंद ले सकते हैं। तो ये इस साहित्य की एक बड़ी देन है,
0: क्योंकि हम कोई कार्य करें और उस कार्य में कोई चुनौतियां ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो ई साहित्य की पठनीयता है, पाठकों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसके लिए हम बढ़ते हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी की ओर।
2: एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब आप पुस्तक ढूंढते हैं, जैसे कोई क्लासिकल टेक्स्ट है उसका जब अनुवाद किया जाता है तो आपको ये पता नहीं चलता कि इसका अनुवाद सही है कि नहीं, कुछ कुछ दिक्कतें हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमें प्रमाणिक अनुवादित पुस्तक का मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है जो सबकी समझ में आ जाए, क्योंकि अनुवाद करते समय कई बार अनुवादक त्रुटियां कर देते हैं, उसके चलते वो बोधगम्यता उसकी खत्म हो जाती है। तो उसके लिए प्रमाणिक पुस्तकों का चयन करना एक थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए भारत सरकार की कुछ योजनाएं भी हैं जिसका मैं थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगा। उसमें पीएम ई विद्या करके प्रोग्राम चलता है, विशेषता को कि हमारे सुनने वाले पाठक जो है वो स्कूलों में पढ़ते होंगे, तो छोटे बच्चों के लिए जो डिजिटल ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं या ऑन एयर जो बहुत सारे एजुकेशन के प्रोग्राम ई विद्या में निकालते हैं, इस तरह से दीक्षा प्रोग्राम है, कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पुस्तकों का पूरा डिजिटल फॉर्म में आपको दीक्षा के प्रोग्राम पर मिल जाता है। इस तरह से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, स्वयं के कुछ प्रोग्राम है जिस पर हम एक प्रमाणिक साहित्य को पढ़ सकते हैं। इस तरह एनसीईआरटी बहुत सारे काम करती है ई साहित्य पर। एक और बड़ी चुनौती यह है कि जब हम लंबे समय तक डिवाइस के साथ में कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो जो पाठक का जब स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जाता है तो उसकी आंखों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ई साहित्य पढ़ रहे हैं तो हमें इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा है और डिवाइस के हम ज्यादा समय तक कॉन्टेक्ट में हैं, उससे उस पाठक की आंखों पर, उसके मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। तो ये इसकी चुनौती है। और दूसरी बात यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अति आत्मनिर्भर हो गए हैं ई साहित्य और साहित्य जो ई कंटेंट हम उपलब्ध है, तो उसे अति निर्भरता से भी बचने के लिए हमें थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए। एक और इसके साथ में मैं जोड़ देखता हूँ कि प्लेटफॉर्म इंटरैक्टिव होता है तो आप अपने विचार दे सकते हैं, इंटरैक्टिव नहीं होता तो फिर आपके कल्पनाशीलता पर थोड़ी सीमाएं निश्चित हो जाती हैं, फिर हम उसी के आसपास ही देखते हैं। तो हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि इस साहित्य का जितना लाभ हमें मिले उतना अच्छा है, पर थोड़ी कुछ कुछ सीमाएं उसको हम कैसे सीमित कर सकते हैं, उसको कैसे हम सीमाओं को कम कर सकते हैं, इस पर हमें भी थोड़ा विचार कर लेना चाहिए ताकि पाठक को उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा और उसका लाभ हो पाए।
0: हम जानने का प्रयास करते हैं कि बौद्धिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हम जानते हैं आदरणीय रश्मि ममगई जी से।
3: जी सर, प्रथम बौद्धिक स्तर पर जैसे पहले हम पुस्तकें पढ़ते थे, अपनी कल्पनाशीलता में हम घोड़े दौड़ाते थे, लेकिन अब जब हमारे सामने सब कुछ सहज रूप में उपलब्ध है, बच्चों के पास खास करके जब उनके पास सब कुछ सहज रूप में उपलब्ध है तो वो अपने दिमाग का बहुत अधिक प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उन्हें सब कुछ वहीं पर मिल जाता है, एक क्लिक पर मिल जाता है, तो वो उतनी आसानी से वो चीजें प्राप्त हो जाती हैं और इससे हमारी जो याद करने की क्षमता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है और साथ ही हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम निरंतर एक ही पोजिशन में बैठे रहते हैं और लगातार फोन को देखते रहते हैं या लैपटॉप को या कंप्यूटर को देखते रहते हैं, तो बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं इसमें हो सकती है। माइग्रेन जैसे सर ने बताया, हो सकता है आंखों की परेशानी हो सकती है या सर्वाइकल हो सकता है, ऐसी कई समस्याएं हमें हो सकती है।
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर साहब, क्या वर्तनी जैसी समस्याएं भी कभी हमें आती है? डॉक्टर देवेंद्र देव जी।
1: जी, जो एक कंसेप्ट है उसमें कहा जाता है कि पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा पढ़ा आदमी नहीं है, पढ़ा लिखा है, और जो ई साहित्य है वो कहीं ना कहीं हमारे लिखने को प्रभावित करता है। इसका एक बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि इसने सीमाओं को तोड़कर विस्तार दिया है साहित्य को। आज यदि विश्व के किसी भी कोने में बैठा कोई हिंदी भाषी व्यक्ति मेरे किसी विचार को या पढ़ना चाहे, यहाँ किसी भी लेखक को पढ़ना चाहे, तो वो आसानी से पढ़ सकता। जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो उसमें बड़ी महती भूमिका आई साहित्य की। दूसरा ये भी है कि समय के साथ साथ इसकी विश्वसनीयता कम भी होती है। जो भी ई साहित्य उपलब्ध है उसमें ऐसे कई टूल्स होते हैं कि जिसके द्वारा मूल लेखक के लेखन में अंतर पैदा किया जा सकता है।

0: जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं इसके उपलब्धता के साथ साथ में एक अविश्वसनीयता भी पैदा होती है। और इसी के साथ यदि हम देखें तो जो स्क्रीन टाइम है वो निश्चित तौर पर उस पर प्रभाव डालता है, लेकिन इसके साथ साथ जो साहित्य का एक असली आनंद होता है ये उसको डिस्टर्ब करता है। ई साहित्य, मैं अभी मोबाइल में कोई कहानी पढ़ रहा हूँ, कोई किसी का काव्य पढ़ रहा हूँ, तुरंत कोई मैसेज आता है या कॉल आती है तो वो उसके तारतम्य को डिस्टर्ब कर देती है। और साहित्य का आनंद तभी लिया जा सकता है कि जब वो पूरा आप फोकस होकर एक तारतम्य में पढ़ें। तो ये कई सारी चुनौतियां हैं कि जिनसे इनको गुजरना है विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी से जानना चाहूंगा कि ये पुस्तक के साथ जो आत्मीयता होती थी, क्या उसमें कोई कमी आई है, क्या उसका क्षरण हुआ है? क्योंकि जब हमारे सामने किताब आती मुंशी प्रेमचंद की किताब, तो मुंशी प्रेमचंद का चित्र सामने आने लगता है, तो क्या उस आत्मीयता में कुछ कमी आई है? डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी,
2: अभी ई साहित्य वो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना और अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध भी करना है। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर स्कूलों में जो पहले आईपैड दिए थे उसे वापस ले लिया, उनको पुस्तक दे दिया। वो इसलिए थी कि उनको ये महसूस हुआ कि भाई विद्यार्थी जो है वो जो पुस्तक का जो रियल सेंस होता है, जो उसको टच करके महसूस करना, देखना चित्र को, जो देखना उसको देख करके उसी तरह से फील करना, तो वो जो उसकी जो बाधा आ गई थी उसको दूर करने में बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ पर उसको वापस लेकर उनको पुस्तकें दी हैं। तो अब हमारे देश से भी इस तरह की चुनौतियां भी इस साहित्य को फेस करनी पड़ेंगी क्या? तो वो जो कहना है संचालक महोदय का कि वो जो बाधा उत्पन्न हुई है पाठक और पुस्तक के बीच में, वो तो है, उसको कुछ कम करने का प्रयास जरूर किया है, कुछ एनिमेशन के थ्रू, कुछ ऑडियो के थ्रू, पर अभी वो तारतम्यता जो पुस्तक और पाठक के बीच में होती है अभी उस तरह से स्थापित नहीं हो पाती है, ये आप हम सब महसूस करते हैं। दूसरे जो अभी जिस पर चर्चा चली है उस पर कि सारी समस्याएं तो है, चाहे आंखों की समस्या हो या माइग्रेन वगैरह या सर्वाइकल वगैरह की समस्या, बहुत लंबे समय तक आप जब इस साहित्य को पढ़ते हैं ये समस्याएं तो है, मानसिक चुनौतियां उससे बड़ी है। जैसे एकाग्रता का अभाव हो गया, एक साथ हम कई सारी पुस्तकें पढ़ते हुए एक साथ कई सारी चीजें कर रहे हैं, हमें अलग अलग तरह के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कभी कोई फूड डिलीवरी का है, कभी किसी का है, कभी किसी का नोटिफिकेशन आपके, तो आपकी जो एकाग्रता उसमें कमी आ रही है, उसको भी थोड़ा न्यूट्रलाइज किया जा सकता है कि आप कुछ समय तक पुस्तक को डाउनलोड कर लें और नेट वगैरह को ऑफ कर दें, तो वो जो नोटिफिकेशन का आना है वो थोड़ा कम हो सकता है। पर क्या हर पाठक उस तरह से अपने आप को इंटरनेट से दूर रख सकता है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। तो एक तो ये, दूसरा कि हमें ये भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की पहुंच स्मार्टफोन किंडल तक नहीं है, और बहुत सारे ऐसे इलाके भारत में जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या वहां पर ई साहित्य अपनी प्रासंगिकता सिद्ध कर पाएगा? ये एक प्रश्न हमारे सामने जरूर है कि जो पाठक ऐसे हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, एक ऐसा वर्ग जिसके पास स्मार्टफोन परचेज करने की पावर नहीं है, तो ई साहित्य को किस तरह से पढ़ सकता है? उसको कुछ काउंटर भारत सरकार के कुछ योजनाओं ने किया है कि आप कुछ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ वीडियोज डाउनलोड कर सकते हैं, ये तो कुछ बिल्कुल कुछ चुनौतियां तो हैं, पर उनको अगर हम सही से कैटर करें तो कुछ तो कम किया जा सकता है, बिल्कुल खत्म तो नहीं किया जा सकता पर कम जरूर किया जा सकता है।
1: और कौन कौन से प्लेटफॉर्म हमारे लिए उपलब्ध हैं जिनसे पाठक लाभान्वित तो हो सकते हैं?
2: जैसा मैंने पहले चर्चा की थी कि पीएम ई विद्या करके प्रोग्राम चलता है भारत सरकार का, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, हम उसको देख सकते हैं। उनका एक इनिशिएटिव है वन क्लास वन टीवी चैनल, ऐसा एक प्रोग्राम चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा। देखिए जब हम एक प्रमाणिक स्रोत में ई साहित्य को देखते हैं तो उसका जो ज्ञान होता है वो एक प्रमाणिक स्रोत से हमें मिलता है, तो जो एक मिसकंसेप्ट बनने की पॉसिबिलिटी कम होती है। इसी तरह से और एक प्रोग्राम चलता है भारत सरकार, दीक्षा प्रोग्राम है, जो कक्षा एक से अभी तक की जो ई पुस्तकें हैं वो उपलब्ध हैं, उसमें आप QR कोड के जरिए आप उसको देख सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ ई बुक्स भी हैं, स्वयं के प्रोग्राम हैं, MOOC प्रोग्राम्स चलते हैं, स्वयं आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के कोर्स मिलेंगे, उसमें आप कुछ कोर्स करना चाहते हैं किसी एक विषय पर करना चाहते हैं उस विषय के अंदर भी आप कुछ एक, जैसे IKS आजकल जिस पर बातचीत करते हैं भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा, तो भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा में गीता में स्पेशली पढ़ना चाहते उसके लिए भी MOOC में कोर्स है। तो भारत सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव स्वयं प्लेटफॉर्म पर हैं जिसको आप अलग अलग तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है जहां पर आपको बहुत सारी ई पुस्तकें, ई पत्रिकाएं और बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जिस जो आपको लगभग फ्री में, सिर्फ आपके पास में नेट होना चाहिए और एक डिवाइस होनी चाहिए जो नेट को एक्सेस कर पाता हो, आप बड़े इजी तरीके से देख सकते हैं। ये सब भारत सरकार के इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, क्योंकि NCERT लगातार विद्यालय शिक्षा पर काम करे तो लगातार वो ऐसे प्रोग्राम तैयार कर रही है जहां पर ई बुक्स वगैरह उपलब्ध हो। उनकी ई पाठशाला एक प्रोग्राम चलता है, उन्हीं का ही एक प्रोग्राम है दीक्षा, जो विद्यार्थी को कक्षा 1 से 12 तक ई पुस्तकें उपलब्ध कराता है, उसमें एनिमेटेड ई बुक्स हैं, फ्लैप बुक्स वगैरह भी उपलब्ध। इसके अलावा ई टेक्स्ट बुक चलती हैं, शिक्षक के लिए हैंडबुक भी उपलब्ध है NCERT।

0: सोसाइटी में कि जैसे कोई शिक्षक अभी नया रिक्रूट हुआ है या उसको लगता है कि मुझे कुछ नया बदलाव करना है, तो उसके लिए हैंडबुक वगैरह भी उपलब्ध है ई फॉर्म में, उसको पढ़ करके आप अपने पेडागोजी को इन्हेंस कर सकता है। जैसे उनका एक प्रोग्राम चलता है मूलभूत साक्षरता के लिए, जादुई पिटारा प्रोग्राम चलाते हैं, ऐसे बहुत सारे भारत सरकार के प्रोग्राम है और एनसीईआरटी ये केवल राष्ट्रीय स्तर पर है। तो कुछ ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है इसलिए हम सभी पर बातचीत नहीं कर सकते, पर बहुत सारे प्रोग्राम भारत सरकार के चलते हैं।
1: मैं ये जानना चाहूंगा आदरणीय रश्मि ममगाई जी से कि ये जो ई पठनीयता है ये और कितनी सार्थक साबित हो सकती है हमारे पाठकों के लिए और जो हमारे नए बच्चे पढ़ने वाले हैं उन सब के लिए।
2: जी बिल्कुल, ई साहित्य का हमारे नए बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि नए बच्चे शायद पुस्तक को पढ़कर उतना रुचि से नहीं पढ़ पाते जितना अगर उन्हें एनिमेशन के द्वारा, वीडियो के द्वारा उनको सिखाया जाता है तो उसे जल्दी ग्रहण करते हैं। और साथ ही जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए या शोधकर्ता है उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अपने उपयोग की सामग्री एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है, तो इसका वह पूरा फायदा उठा सकते हैं।
1: बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा ये फोन नहीं है, ये हमारा फोन पूरी एक लाइब्रेरी है। डॉक्टर साहब आपके हिसाब से
3: ई साहित्य को जितना ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, आप देखेंगे कि जो रिसर्च प्रोग्राम है वो इसके द्वारा बहुत इजी हो गए हैं। डाटा कलेक्शन, किसी भी क्षेत्र विशेष से संबंधित जानकारी, वहाँ के कल्चर के, वहाँ के लिटरेचर के, सबकी जानकारी आपकी एक क्लिक पर उपलब्ध होती है। तो जितना इसको बढ़ावा मिलेगा और आने वाले टाइम में बढ़ेगा भी, मेरी उम्मीद भी है, बस ये है कि धीरे धीरे जब से ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा तो जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मेंटेन रहे और डाइवर्सिटी तो साहित्य में रहती है, उसको और बढ़ावा मिलेगा। तो आपकी क्लिक पर ना सिर्फ आपकी भाषा बल्कि सभी भाषाओं का और सभी क्षेत्रों का साहित्य एक क्लिक पर होगा, तो एक बेहतरीन प्रयास है और एक बेहतरीन आयाम भी है।
1: डॉक्टर ज्ञानेंद कुमार,
0: बहुत सारे अच्छे जो नवोदित लेखक हैं उनकी कृतियां भी आती हैं, बस उस तक हम एक्सेस कैसे कर पाए इस पर हमें थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। उससे दोनों को, जो पाठक है और जो लेखक है, ये साहित्य दोनों के लिए उतनी समान रूप से उपयोगी है। पाठक को एक ही क्लिक पर उससे ढेर सारा साहित्य अलग अलग विषयों पर मिलता है, लेखक को जब वो कंटेंट अपना अपलोड करता है तो उसको एक बड़ा पाठक वर्ग मिलता है जो अपनी रुचि से आपके साहित्य को पढ़ता है। तो उसमें जब इंटरैक्टिव फॉर्म में होता है तो आपको इंटरेक्शन भी मिल जाता है, तो आपको जो आने वाली कृतियां हैं उनमें आप उसका कुछ सुधार कर सकते हैं। तो ई साहित्य के थ्रू दोनों स्टेक होल्डर, पाठक और लेखक, दोनों को पर्याप्त सुविधा हो रही है।
1: बिल्कुल, और ई साहित्य का जो लाभ है वो हमारी नई पीढ़ी ज्यादा उठा पा रही है। डॉक्टर देवेंद्र देव जी, आपके विचार से अभी अगर हम देखें कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं या रिसर्च वर्क चल रहे हैं, हम उसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं ई साहित्य के माध्यम से?
3: एक तो जो एक्सपर्ट है उनको ज्यादा से ज्यादा शामिल करके, और उसके साथ साथ जो अवेलेबिलिटी है, पहले ही डॉक्टर साहब ने, ज्ञानेंद्र जी ने को कहा था कि यदि हम कथा कहानियों की बात करें तो जिन पे सबसे ज्यादा लिखी जाती है वही इससे वंचित रह जाते हैं। उसके अलावा एक जो बहुत बड़ा लाभ है, व्यक्तिगत रूप से भी मैं बताऊं, जो हम लिखते थे पहले इंतजार करते थे कि कहीं उसे पेश करने का, आज मैं भी लिखता हूं तो जो मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मुझे 10-20 लोगों को इकट्ठा करना है, उनके बीच में कुछ सुनाना है, मैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप और जो आपके इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी पर भी अपलोड कर सकता हूँ। इसी के साथ साथ एक चीज और भी हुई है कि जो मल्टीमीडिया में आपके पास में मोबाइल है, आप अपना विचार आया हुआ है तो आप उसे तुरंत लिख भी सकते हैं। ये एक बड़ी जो बात है कि पहले आपको एक माहौल चाहिए था, किताब, कॉपी, पेंसिल, वो सब, अब वो सारी दूर हो गई है, तो केवल आप वहां पर लिख सकते हैं और इसको सब में प्रसारित भी कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ये सभी के लिए लाभकारी होगा।
1: अगर हम पिछले समय को याद करते हैं, अखबारों में पढ़ने को मिलता था कि फला रचनाकार ने, फला कवि ने इतनी खूबसूरत पुस्तक निकाली है, तो वो पुस्तक जानकारी तो हमारे पास आ जाती थी लेकिन पुस्तक पता नहीं कितने दिन बाद हमें उपलब्ध होती थी। आजकल जैसे ही पुस्तक अपने मूर्त रूप में आती है, उसके साथ साथ बहुत से ऐसे रचनाकार हैं जो उसकी डिजिटल कॉपी भी प्रसारित कर देते हैं अलग अलग माध्यम से, तो उनका एक फायदा जो हुआ है वो पब्लिशर्स के चक्कर काटने का जो थकान है, परेशानी है, वो कम हो गई है। अब रचनाकार अपनी रचनाएं लिखता है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वो डाल देता है, न सिर्फ शब्दों के रूप में, अपनी आवाज के रूप में। कई बार डॉक्टर देवेंद्र देव जी अपनी रचनाओं को नाटक के रूप में भी लोगों के बीच में पहुंचाते हैं, तो ये मल्टीमीडिया का फायदा है। इससे और क्या क्या फायदा हो सकता है हमारे पाठकों को? आदरणीय रश्मि मैम,
2: इसमें ये फायदा है, जैसे पहले अगर हमें कोई किताब चाहिए होती थी तो हम कई लाइब्रेरी के चक्कर लगाते थे।

0: खर्च करना हर किसी के बस की बात नहीं होती थी और उसके बाद घंटों लाइब्रेरी में अपनी अपने पसंदीदा लेखक की पुस्तकें ढूंढते थे, फिर उसे या तो वहां बैठकर लगातार पढ़ना होता था या उसे घर ले जाते थे। लेकिन जब से ई साहित्य आया है तो हम सिर्फ एक छोटे से डिवाइस के माध्यम से, चाहे हम पहाड़ों में रहते हों, चाहे हम रेगिस्तान में रहते हों, चाहे हम नदी के किनारे किसी ऐसे स्थान पर रहते हों, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसके लिए वह बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है और अपनी पसंदीदा लेखकों को पढ़ सकता है।
1: बिल्कुल, जब मैं विद्यार्थी था तो मैंने एक बुकिश टॉपिक पाठ पढ़ा था जिसमें आदरणीय आर के नारायण जी ने इस मुसीबत को बढ़िया से बयां किया उन्होंने कि किताब दे तो देते थे लेकिन आती नहीं थी, और उनका ये अनुभव कई बार उनके साथ हुआ। लेकिन आज ई साहित्य का जमाना है, आज तकनीकी का जमाना है और आज क्लिक का जमाना है कि आप क्लिक करो रचना आपके सामने, आप स्क्रॉल करो तो लाइब्रेरी आपके सामने। तो ये सबसे बड़ा जो इसकी सकारात्मकता है, मैं कहूंगा ई साहित्य की जो सार्थकता है वो इसी में है कि एक भरपूर लाइब्रेरी, हजारों किताबों की लाइब्रेरी आपके एक फोन के ऊपर उपलब्ध है, एक क्लिक के ऊपर उपलब्ध है। और ये हमारी नई पीढ़ी की नहीं, पुरानी पीढ़ी के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। पाठकों के लिए ये निश्चित तौर पर आज की ये चर्चा है ये सार्थक साबित होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप तीनों का इस चर्चा में अपने बहुमूल्य विचार देने के लिए बहुत बहुत आभार। फिर कभी हमारी आपसे साहित्य के ऊपर बात होगी। इसी के साथ साथ सभी को नमस्कार।
2: ई साहित्य की पठनीयता, संभावनाएं और चुनौतियां, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे प्राचार्य और साहित्यकार डॉ. देवेंद्र देव, युवा साहित्यकार सुश्री रश्मि ममगाई, शिक्षा विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉ. ज्ञानेन्द्र कुमार और युवा साहित्यकार श्री आर.डी. गौतम। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे श्री आर.डी. गौतम। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां, प्रस्तुत कर रहे हैं युवा पत्रकार श्री रोहित रोज।
3: 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर अंबेडकर पार्क जनता फ्लैट्स दिल्ली में एक अविस्मरणीय साहित्यिक आयोजन किया गया। साहित्य उपवन रचनाकार एवं लाइट ऑफ योगा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह कवि सम्मेलन न केवल योग की महत्ता को रेखांकित करने वाला रहा बल्कि इसने साहित्य और स्वास्थ्य के अद्भुत समन्वय से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का संचालन श्री दिनेश कुमार ने किया। मंच पर काव्य पाठ के लिए प्रख्यात कवियों की उपस्थिति ने वातावरण को साहित्यिक गरिमा से ओतप्रोत कर दिया। इस अवसर पर साहित्य उपवन रचनाकार के कवि आर.डी. गौतम विनम्र सहित श्री राजवीर सिंह कमल, श्रीमती विशाखा बौद्ध, श्री दीपक नवरंग और श्रीमती भावना सेठ ने अपनी काव्य प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों को योग के प्रति प्रेरित किया। लगभग 100 लोगों की उपस्थिति में यह आयोजन सम्पन्न हुआ। दूसरी तरफ 21 जून को ही साहित्य, संस्कृति और अध्यात्म को समर्पित त्रैमासिक ई पत्रिका भाव निनाद स्पंदन प्रवाह के प्रवेशांक का भव्य विमोचन ट्राइटेंड ऑफिसर्स मेस दिल्ली कैंट में संपन्न हुआ। पत्रिका में भारत के 13 राज्यों के साथ साथ अमेरिका के रचनाकारों, शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों की उत्कृष्ट रचनाएं सम्मिलित हैं। मुख्य अतिथि श्री विकेश सेठी और अति विशिष्ट अतिथि श्रीमती रेणु अग्रवाल रहे। पत्रिका का विमोचन संरक्षक प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव सोसिल्ले और प्रोफेसर डॉक्टर संध्या वात्स्यायन द्वारा किया गया। प्रधान संपादिका श्रीमती ममता झारुद्रांसी ने कहा कि पत्रिका का लक्ष्य साहित्य को समाज की चेतना से जोड़ना और नवोदित लेखकों को गुणवत्तापूर्ण मंच प्रदान करना है। समारोह का समापन एवं धन्यवाद ज्ञापन स्नेह भोज के साथ सम्पन्न हुआ। यह पत्रिका हिंदी साहित्य के संवर्धन में एक नई और सशक्त कड़ी के रूप में देखी जा रही है। 22 जून 2026 को दिल्ली के नजफगढ़ रोड स्थित उत्सव ग्रीन में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका सफल व प्रभावशाली संचालन नोएडा की सुप्रसिद्ध कवयित्री अंजना जैन ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत नमोकार मंत्र और सरस्वती वंदना से हुई, जिसके बाद बाल कवयित्री सानवी जैन ने मनमोहक प्रस्तुति दी। सुनहरी लाल तुरंत और रोश रोशन ने अपनी चुटीली व व्यंग्यात्मक रचनाओं से श्रोताओं को खूब हंसाया। डॉक्टर ज्योति उपाध्याय ने श्रृंगार रस के गीतों और कुमार राघव ने अपने प्रभावशाली मुक्तकों से वाहवाही बटोरी। अंत में संचालिका अंजना जैन ने जैन दर्शन, गिरनार संरक्षण और श्रृंगार पर सशक्त मुक्तक पढ़े। यह कवि सम्मेलन देर रात तक चला और श्रोता काव्य रस में सराबोर रहे। इस विराट कवि सम्मेलन ने दिल्ली वासियों को साहित्यिक संस्कृति से जोड़ने का एक सुंदर अवसर प्रदान किया। 22 जून को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के स्पीकर हॉल में रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान के तत्वावधान में एक भव्य काव्य संध्या का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम

0: 1857 की क्रांति की महानायिका अमर बलिदानी महारानी लक्ष्मीबाई की स्मृति को समर्पित था। कार्यक्रम में लगभग 25 प्रतिष्ठित कवियों और कवित्रियों की उपस्थिति रही। मंच से पढ़ी गई ओजस्वी कविताओं ने पूरे हॉल में देशभक्ति का वातावरण बना दिया। कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से महारानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्र प्रेम को नमन किया। संस्थान के प्रयासों से आयोजित यह काव्य गोष्ठी न केवल साहित्य प्रेमियों के लिए एक यादगार अनुभव रही, बल्कि नई पीढ़ी में देश प्रेम के संस्कारों को जगाने का भी सफल माध्यम बनी। 24 जून 2026 को दिल्ली के शास्त्री नगर स्थित APV स्टूडियो में जनाब नईम हिंदुस्तानी के संयोजन में जश्न हिंदुस्तान, ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। इस भव्य कार्यक्रम में लगभग 36 प्रख्यात कवियों और शायरों ने शिरकत की। मंच से सुनाई गई रचनाओं ने हिंदी और उर्दू के साझा सांस्कृतिक वैभव को प्रस्तुत किया। यह आयोजन साहित्य प्रेमियों के लिए एक यादगार अनुभव रहा, जिसने दिल्ली की साहित्य धारा को अपनी ओजस्वी और मधुर पंक्तियों से गुंजायमान कर दिया। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल बना। 24 जून हिंदी साहित्य के पटल पर एक अविस्मरणीय दिन अंकित हुआ, जब इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में कविता संग्रह यशोधरा से संवाद पर एक गहन और वैचारिक चर्चा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम न केवल साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध रहा, बल्कि नारी चेतना और मानवीय संवेदनाओं के धरातल भी अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ। कार्यक्रम की बागडोर जानी मानी साहित्यकार श्रीमती माया पारिजात के हाथों में थी। उनके ओजस्वी और सारगर्भित संचालन ने चर्चा को एक विशेष ऊंचाई प्रदान की। इस साहित्यिक विमर्श में प्रबुद्ध साहित्यकारों की उपस्थिति ने गरिमा को द्विगुणित कर दिया। चर्चा में भाग लेने वाले प्रमुख हस्ताक्षर रहे सर्वश्री संगीता गुप्ता, अलका त्यागी, रेखा सेठी, सुमन केसरी, हर्ष बाला शर्मा एवं उषा मुंशी। यशोधरा से संवाद में यशोधरा के चरित्र को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखने और समझने का जो प्रयास किया गया है, उसकी सभी वक्ताओं ने भूरी भूरी प्रशंसा की। चर्चा के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे काव्य का यह संग्रह परंपरा और आधुनिकता के बीच के सेतु को दर्शाता है। वक्ताओं ने यशोधरा के त्याग, स्वाभिमान और उनके भीतर के द्वंद को कविता के माध्यम से जिस प्रकार अभिव्यक्त किया, उसे साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है। 27 जून 2026 को क्रिएटिव अनलॉक द्वारका में आगमन संस्था द्वारा आयोजित समागम बत कही देखने को मिला, जिसमें साहित्य के विविध पक्षों पर एक सार्थक संवाद हुआ। श्री निशांत जैन के कुशल संयोजन में वरिष्ठ और युवा साहित्यकारों ने समकालीन साहित्य के भविष्य पर चर्चा की। इस आयोजन ने डिजिटल युग में साहित्य की प्रासंगिकता और समाज के प्रति रचनाकारों की जिम्मेदारी को रेखांकित किया। यह आयोजन साहित्य प्रेमियों के लिए एक प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक अनुभव रहा।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे श्री रोहित रोज। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे अतिथि। शीर्षक है चंद्रशेखर भिड़ा, कड़ी संख्या 2, भेंटकर्ता और प्रस्तुति काजल सूरी की है।
3: श्रोताओ, हमारी पिछली कड़ी में हमारे साथ थे जाने माने टेक्सटाइल एंड प्रोडक्ट डिजाइनर चंद्रशेखर भेड़ा जी। आज इस कड़ी में एक बार फिर से उनके अनुभवों, संघर्षों और रचनात्मक यात्रा को हम सुनते हैं उनकी अपनी आवाज में। तो चंद्रशेखर भेड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से आए।
4: तो मैं कभी भी प्रेडिक्टेबल काम करने के आधी नहीं रहता।
3: फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी आर्ट वर्क, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो आपके करियर का सबसे यादगार प्रोजेक्ट कौन सा रहा है?
4: ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है कि क्या है कि जब हर छोटा या बड़ा प्रोजेक्ट में आप जी जान डाल के काम करते तो उसका अनुभव अविस्मरणीय होता है। मैं अगर आपको कहूँ, सबसे शुरू में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था यहाँ पर IGNC में, दिस 1989 में IGNC में वर्ल्ड कैलीग्राफी एग्जीबिशन हुई थी। और ये प्रोफेसर आर.के. जोशी जो थे वो IDC में प्रोफेसर थे। तो मेरा, मैंने राजीव सेठी के साथ एक साल काम करने के बाद फिर मैं वहां से जब निकल गया, तब मुझे किसी ने बताया आर.के. जोशी को जाके मिलो, वहां उनके लिए कुछ कर सकते हैं। मैं जाके उनको मिला, तो उन्होंने मेरे पास वो वर्ल्ड कैलीग्राफी एग्जीबिशन आकारा की लोगो रखी, बोले इस लोगो के साथ खेल करके अगर कुछ बना सकते हो तो कल सुबह मुझे ड्रॉइंग दो, मैं आपका प्रोजेक्ट अप्रूव कर दूंगा। मैंने रात भर बैठ करके पेंसिल्स का स्केच बनाया। दिस इज ओनली सेकंड ईयर ऑफ माय प्रोफेशन, वहां जाकर दिखाया तो बोली यस दिस

0: उन्होंने भाई ये है, लेकिन एक एक मेरी कंडीशन है, आपने जिस तरीके का स्केच बनाया बिल्कुल हुबहू वैसा ही तुम्हारा
1: काम।
0: पीस होना चाहिए, काम होना चाहिए। और वो जो मैंने पेंसिल का जो पेंसिल के एक रेशे के टेक्सचर होते
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ
0: उस टेक्सचर को मुझे कपड़े में लाना जरूरी था।
1: ओ
0: अब वो दैट वाज क्रिएटिव चैलेंज, दैट वाज टेक्निकल चैलेंज दोस्तों। तो
1: टेक्निकल
0: मैं वहां से
1: आल्सो।
0: एनआईडी गया और 20 दिन मैंने लूम के ऊपर काम किया और खुद मैंने वो पूरी दरी बुनी
1: वाह
0: जो 2 फुट बाय 6 फुट की थी, उसके अंदर आकारा लिखा हुआ था और अलग अलग धागों का मिश्रण करके उसके अंदर अलग अलग शेडिंग करके बनाया। आई थिंक दैट वॉज द मोस्ट मेमोरेबल एक्सरसाइज एज एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट
1: वाह
0: डूइंग इट। और दूसरा चीज क्या था कि आप, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि टेक्सटाइल डिजाइन जो है उसका जो आवश्यकता समाज में है कि हर एक इंसान को अपनी पहचान बनाने के लिए कपड़े पहनने पड़ते हैं,
1: बिल्कुल।
0: और पहचान बनाने हर एक को अलग अलग कपड़े पहनने पड़ते हैं। इसका मतलब टेक्सटाइल डिजाइनर को इतनी लगातार नई नई चीजें बनाते रहना जरूरी होता है जो कि ज्यादा पैमाने पे बने और लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सके। तो
1: बिल्कुल।
0: ये हो गया बैच प्रोडक्शन या मास प्रोडक्शन का जरूरत। उसी के साथ साथ जब आपको सिंगुलर पीस अगर बनाना है तो वो आर्ट या कला, वस्त्र कला या टेक्सटाइल आर्ट के लिए, फाइबर आर्ट के लिए हो जाता है। तो मेरा विशेष ध्यान फाइबर आर्ट की तरफ भी रहा क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में पारंपरिक कलाओं का बहुत बड़ा महत्व है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: जैसे दो दो तीन तीन गांव मिलकर के एक प्रकार का काम, सारे ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं। सांगाने में
1: बिल्कुल
0: जाके सारे
1: बिल्कुल
0: ब्लॉक प्रिंटिंग
1: बिल्कुल।
0: करते, बगरू में जाएंगे सारे ब्लॉक प्रिंटिंग करें, कलमकारी में जाएंगे सारे चित्रकारी करते, बनारस में जाएंगे सारे बुनाई करते। तो हमारे यहाँ कई सारी कम्युनिटीज मिलकर के ये काम करते हैं, तो वो एक अलग दायरा है और उसको भी रखना जरूर। साथ साथ में उनसे भी कुछ अगर नया विशेष काम कराना है जो कि म्यूजियम में रखने लायक हो या कोई बिल्डिंग में रखने लायक हो या कोई कॉरपोरेट ऑफिस रखने लायक हो, उसका भी एक अप्रोच अलग होता है। तो मेरी
1: बिल्कुल।
0: रुचि सिंगुलर पीसेस में ज्यादा रही, मैंने मास प्रोडक्शन प्रोजेक्ट भी काफी किए, लेकिन जो एक खुद की पसंदीदा जो चीज होती है वो मुझे ये सिंगुलर पीसेस बनाने में रही। तो उस वक्त ये जो पीस बनाया, ये जब आकार एग्जीबिशन में जब रखा, तो मुझे बड़ा आनंद आया कि सेकंड ईयर में मैंने एक आर्टवर्क लगा करके इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर दिया। सो दैट वाज अ सिंगुलर परफॉर्मेंस। उसके बाद कच्छ में जब भूचाल आया था
1: जी।
0: 2003, उस वक्त फिक्की केयर गुजरात रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट ने मुझे बुलाया। तब तक मैं कई सारे काम कर चुका था, थोड़ा बहुत नाम भी हो गया था, तो मुझे बुलाया कि आपको 5 गांव देते, इन 5 गांव के कारीगरों के साथ आपको काम करना है और इनको रिहैबिलिटेट करने के लिए आपने इनको मार्गदर्शन करना है, क्योंकि उनके लूम टूट गए हैं, उनके घर टूट गए हैं, तो दोबारा उनको
1: रिवाइव
0: रिवाइव
1: करना।
0: करने के लिए, और जब रिवाइव करना ही है तो कुछ नयापन क्यों ना लाया जाए। तो दैट वाज अ फंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो मैं 5 गांव में घूमा तकरीबन 1.5 साल, और इन लोगों के साथ बैठ के, इनके साथ समय बिता करके धीरे धीरे धीरे धीरे इनको नयापन लाने की ट्रेनिंग दी, और उसमें से जो चीजें निकली, सौभाग्यवश
1: बिल्कुल।
0: आज भी कुछ चीजें वो बना रहे हैं।
1: क्या
0: और
1: बात
0: कहते हैं कि चंदू भाई ये
1: क्या
0: तमारू
1: बात
0: तमारू दियेलू डिजाइन छे और आज पण बने छे।
1: कोई
0: तो सेटिस्फेक्शन वो होता है कि लोग अगर आपने दिया हुआ मार्गदर्शन अगर वो अपने आप पर ले लेते, आत्मसात करते हैं, तो वो एक लंबी दूरी तक असर
1: बिल्कुल
0: करने
1: बिल्कुल।
0: वाला
1: ये बहुत
0: अनुभव हो
1: खूबसूरत
0: जाता
1: बात
0: है।
1: कही आपने। उस मुश्किल वक्त में जब भूचाल आया, थोड़ा वो बहुत फेमस है कि बिल्कुल सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो आपने फिर से रिवाइव किया अपने आर्ट के जरिए। बहुत खूबसूरत बात कही आपने।
0: तो इसमें और एक चीज थी, क्या था कि इसमें मैंने तकनीकी रूप में भी काफी मॉडिफिकेशन किए। वहां की शॉल पहले थोड़ी स्टिफ होती थी, वो स्टार्च भी नहीं निकालते थे, तो मैंने उसमें एक तो मुलायमता लाई अच्छे
1: जी।
0: सॉफ्टनर लेकर के, फिर मैंने उसमें धागों में ऐसा बदलाव किया उससे उसका वेट कम हो गया। शॉल का वेट कम होने से दाम उतना ही था,
1: हाँ
0: तो उनका 10% भी अगर धागा बच गया तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई।
1: बिल्कुल।
0: और फिर मैंने स्टोल वहां पर इंट्रोड्यूस किया। तब तक कच्छ में स्टोल नहीं बनते
1: नहीं
0: थे,
1: बनते
0: क्योंकि
1: थे।
0: मैंने बोला कि नए जमाने की लड़के और लड़कियों के स्टोल ये बहुत ही उपयोगी चीज है, आप छोटे साइज का स्टोल बनाना करो ताकि अब SKUs ज्यादा बनेंगे और थोड़ा काम दाम कम रहेंगे तो बिकेंगे ज्यादा।
1: क्या
0: शुरू
1: बात।
0: में थोड़ी सी हिचकिचाहट चढ़ रही उनको, आज वहां से स्टोल एक ट्रेडिशनल
1: बन गया।
0: उत्पाद बन गया है।
1: तो बहुत सारे आपने कहा, जिस तरह से बात की थी आपने, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी एग्जिबिशंस की हुई है, क्या कहेंगे उसके बारे में चाहूंगी श्रोताओं को बताएं। और खास तौर पे कहते हैं ना, एक कलाकार के लिए अवार्ड भी बहुत मैटर करते हैं, एक बूस्ट मिलता है।
0: हाँ,
1: इन बातों में मैं चाहूंगी कि आप हमारे
0: मैं
1: श्रोताओं को
0: आपको
1: बताएं।
0: मजेदार बात बताता हूँ, आपको आश्चर्य होगा। मैंने आज तक एक भी अवार्ड शो में पार्टिसिपेट नहीं किया है। मुझे क्या लगता है कि ठीक है अगर आप अवार्ड शो को पार्टिसिपेट करोगे, लेकिन मुझे ना जो जिसके साथ मैं काम करता हूँ ना, चाहे वो क्लाइंट हो या चाहे वो कारीगर हो,
1: मुझे लगता है जो अवार्ड सबसे बड़ा होता है वो आपके जो क्लाइंट्स आपकी जो तारीफ कर जाते हैं वो सबसे बड़ा अवार्ड है।
0: बिल्कुल, लोग सोचते हैं क्यों तुम नहीं करते, लेकिन मुझे चार लोग जब अपनी उत्सुकता से पूछना चाहते हैं तुम क्या करते हो कैसे करते हो, दैट इज मोर देन अवार्ड।
1: बिल्कुल,
0: इफ दे शो इंटरेस्ट इन योर एक्टिविटीज तब जा करके अवार्ड से ज्यादा बेहतर मुझे लगता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके एग्जीबिशन के बारे में जानना चाह रही थी।
0: क्या सबसे पहले एग्जीबिशन तो मैंने वर्ल्ड कैलिग्राफी एग्जीबिशन की थी, उसके बाद कई बार ऐसे मौके आए जिसमें मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ल्ड टेक्सटाइल एसोसिएशन का बिनाले हुआ था पुणे में, और वहां पर जफूरजा म्यूजियम है, जफूरजा म्यूजियम दोनों ने मिलकर के ये बिनाले करा था। तो उनके क्यूरेटर ने मुझे कहा कि आप भी कुछ बनाइए यहाँ के लिए, और उन्होंने 10x10x10 स्क्वायर फीट की जगह बोली इसमें आप कुछ बनाइए। तब मैंने सोचा कुछ नया करा जाए। आपको शायद आपने कभी देखा होगा जब ब्लॉक प्रिंटिंग होती साड़ी में, तो उस साड़ी को एक सीध लाने के लिए नील में धागा डुबो करके उसको खींच करके निशान बनाया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: उसको नील डोरी ये कुछ कहते हैं। तो वो जो निशान बनाने का जो है, और बाद में उसको मिटा दिया जाता है, तो वो एक एंसिलरी सपोर्ट होता है। लेकिन मेरा ध्यान उसकी तरफ गया और मैंने देखा कि वो जो निशान होता है वो कभी सीधा बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें स्प्लैटर्स होते हैं, उसके तो छींटे उड़ते हैं। और एक देखा मैंने कि इसमें सारे निशान सीधे होते हैं लेकिन उसके स्प्लैटर्स अलग अलग होते हैं। ये बहुत ही गजब की खूबी मुझे नजर आई कि एक ही ग्राफिक्स है जिसके अंदर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी लिव साइमल्टेनियसली। तो मैंने उन स्प्लैटर्स के साथ खेल करके मैंने एक अनुभव बनाया, और इंसानी जो अनुभव है वो बनाया, और उसमें हमारे दिमाग में जो आइडियाज होते हैं, कई सारे आइडियाज होते हैं, वो हम जब अंदर सोचते हैं तो किसी को पता नहीं होता अंदर क्या सोच रहे हैं। और मैंने अंदर की जो हमारी कल्पना है उसको रंगीन समझा है। अंदर में इतने सारे कल्पना है, इतने सारे रंग है, लेकिन जैसे ही आप उसी कल्पना को बाहर लाते हैं या किसी को बताते हैं तो वो आपके व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन दिमाग में होता है तब तक किसी को पता नहीं होता है। तो अंदर में कलर और बाहर में ब्लैक एंड व्हाइट, इस कल्पना सोच करके मैंने शेल बनाया जिसके अंदर बाहर में सारा ब्लैक एंड व्हाइट था और अंदर में स्प्लैटर से मैंने रंग बिरंगा अनुभव कराया। और ऑफ लेट मैं क्या करने लग गया हूँ कि जीवन के मुझे लगता है मानवीय जीवन इतना इतना रोचक है और इतने हरेक इंसान की एक अलग कहानी होती
1: है।
0: तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल कि ये मानवीय जीवन को मैं चित्रों के द्वारा कैसे एक्सप्रेस करूं, तो इस उलझन में आजकल मैं लगा हुआ हूं।
1: जी आपने बात की कि जो ट्रेडिशनल डिजाइनिंग की बात आप कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहूंगी जो आपके डिजाइन्स हैं उनमें भारतीय संस्कृति की झलक भी आप शामिल करते हैं और मॉडर्न भी, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में?
0: भारतीय क्या है कि संस्कृति जो है हमारी उस परंपरा को कायम रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: और हमारे जितने भी कलाकार है उस परंपरा को कायम रखने का काम बहुत ही बखूबी निभा रहे हैं, और कई सारे एनजीओ सरकार का जो भारत सरकार का जो योगदान है इस परंपरा को कायम रखने का ये बहुत ही बड़ा है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय, पुपुल जयकर, और अभी लैला तेब जी या जया जेटली, इन सारे लोगों ने क्रॉस काउंसिल है, इन सारे लोगों ने इन परंपरा को कायम रखने खूब योगदान दिया है। लेकिन ये भी होता है कि पारंपरिक कारीगर जो है पारंपरिक चीजें बनाता है, लेकिन उसको ये भी देखना कि समय के अनुसार उसके काम में थोड़ा थोड़ा बदलाव आना जरूरी है, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले लोग बदल रहे हैं, जनरेशंस नई नई आती जाती है और नए जनरेशंस की कुछ नई जरूरतें होती है, क्योंकि माहौल बदलता है।
1: बिल्कुल,
0: टेक्नोलॉजी आ गई है, आजकल एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन इतना जबरदस्त हो गया है, तो यंग लोगों के दिमाग पर असर कई सारी चीजों का पड़ता है, इसलिए उनकी जो पहचान बनाने की जो एक आवश्यकता है वो अलग प्रकार की हो रही है। और उनकी पहचान बनाने की आवश्यकता में अगर पारंपरिक कारीगर भी अगर कुछ योगदान दे तो उनको उनकी आवश्यकताओं को समझना पड़ेगा।
1: बहुत जरूरी,
0: दैट इज वेयर समकालीन प्रकार का काम भी करना जरूरी है। और इसी तरह से हर साल 20% बदलते जाएंगे ना, तो आप समय के साथ परंपरा को नए सिरे से लेके जाओगे। ये फॉर्मूला है मेरा बैलेंस रखने का। तो हमें पारंपरिक स्टोरी टेलिंग के साथ नए स्टोरीज को भी देखना होगा। कई सारे कलाकार करते हैं।

0: काम करूंगा। खादी की इज्जत बहुत ज्यादा है और उसको बरकरार रखना जरूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे क्या लगता है कि मैं जब कोई चीज, कोई भी अनुभव बना रहा हूँ या कोई भी टेक्सटाइल क्राफ्ट बना रहा हूँ या कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसकी जरूरत क्या है उसके हिसाब से मैं कपड़े का सिलेक्शन करता हूँ। तो जरूरत के हिसाब से फैब्रिक सिलेक्शन होता है। इफ दैट फैब्रिक कॉन्ट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली इन योर एक्ट ऑफ क्रिएशन, देन दैट फैब्रिक क्वालिफाइज टू बी पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम।
1: अब मैं वापस आती हूँ, जैसे आपने बात की आपने NID पास आउट है, आपने डिजाइनिंग किया, संगीत की तरफ ही आपका रुझान रहा क्योंकि आपके पिताजी संगीत के उस्ताद थे, भजन गाते थे, तो संगीत की तरफ आना चाहूंगी। क्या आपने संगीत की भी कोई शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा की अगर हम बात
0: करें? नहीं, संगीत की पारंपरिक शिक्षा मैंने कभी प्राप्त नहीं की, क्योंकि अगेन जो प्रायोगिक काम करना है तो डिजाइन में रहा ही रहा है। हमने संगीत के साथ भी प्रयोग हरदम किए, लेकिन वो छोटे ग्रुप में और निजी मामले में ज्यादा करे। हम क्या करते, हॉस्टल में हम गाने नए बनाते थे, पैरोडीज बनाते थे, स्टेज पे भी बनाते थे इस तरह। और मैं खास करके महाराष्ट्र में बड़ा हुआ पला हुआ, तो वहां पर मुझे अभंग में काफी रुचि रही है। जो हमारे वारकरी संप्रदाय के जो जितने भी तुकाराम, रामदास और नामदेव, इनके अभंग थे मराठी में, मैंने काफी उनको सुना है। मेरे पिताजी भी गाते थे और मैं भी कई बार इन अभंगों को गाता हूँ। जब भी कोई हमारे महाराष्ट्र मंडल दिल्ली में वहां पर कभी मौका आता है तो मैं कई बार वहां पर अभंग गाया।
1: थोड़ा सा आप
0: इतना प्रोफेशनल तरीके से नहीं गाता हूँ, लेकिन अभंग अगर मुझे आपको एक दो लाइन सुनानी है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री आज 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वो सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता

0: अनुरोध के बाद जारी किया है, जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के एक महत्वपूर्ण दौर में श्री राव ने भारत की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। सेंट्रल कमान ने कहा कि ईरान ने ड्रोन से तेल टैंकर कीकू पर हमला किया। यह टैंकर होर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजर रहा था और इसमें 20 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल था। अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने तेल पोत पर हमला करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। उधर ईरान की सरकारी मीडिया ने होर्मुज़ के ठीक उत्तर में विस्फोटों की सूचना दी है। किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की युदाई ओकिमोतू को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीन ताइपी के सूली यांग से होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफरसन से हार गई। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ग्रुप ए के अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष टी20 क्रिकेट में आज बेलफास्ट में भारत का सामना मेजबान।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles Patrick Hermini today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. We have a report.
3: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with two Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a three-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. This visit reaffirms the strong and enduring friendship between India and Seychelles and strengthens the shared commitment of both nations to enhance bilateral ties across all sectors. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
2: The Prime Minister reached Victoria yesterday on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani at Doordarshan Network, the AIR News website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast.

ब्रह्मचारी से इस गीत को आप सुन रहे थे और हमारे पास इस गीत की फरमाइश भेजी थी राजेश सेन ने छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से, साथ ही सुरेखा सेन भी। साथ ही संदेश भेजने वाले हमारे पास श्रोता हैं राजेश कुमार मेहरा, नंद किशोर, विनोद, अर्जुन, दुर्गा शंकर, सिकंदर, राहुल, चंदन, देवराज, लक्ष्य एवं समस्त ग्रामवासी। इस गीत को सुनना चाहा था ज्योति मक्कड़, मनत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जलंधर, पंजाब से, वडिंगखेड़ा से जुड़ रहे हमारे श्रोता मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा, और टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। और लिखते हैं हमारे ये श्रोता, गुजारिश है आपसे अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, किसी भी गीत में नाम शामिल कर लेगा। तो देखिए आपका नाम शामिल हो चुका है। हमारे अगले श्रोता हैं ग्राम लसुडिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र। और अगला संदेश हमारे पास है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी हिमांश। तो चलिए आप सभी की फरमाइश को हमने किया इस गीत के माध्यम से पूरा। अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम। तो बढ़ते हैं अपने अगले संदेश की तरफ जो हमारे श्रोता लगातार हमें भेज रहे हैं। अगला संदेश है संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश का। अगला संदेश हमारे पास आया भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार का और साथ ही ईशान छीपा, और लिखते हैं, आपको हार्दिक नमस्कार। बेहतरीन प्रस्तुति के साथ बेहतरीन नगमे आप सुनवा रही हैं। किसी भी गीत में हमारा नाम शामिल करें तो बिल्कुल आपका नाम कार्यक्रम में शामिल हो चुका है। अगला संदेश हमारे पास आया है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से जुड़ रहे हैं हमारे श्रोता अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया का संदेश। रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीन बानो, अलीजा नायाब और लड्डू का संदेश। और हमारे श्रोताओं का अगला संदेश चंडीगढ़ से है TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। और कालका से है शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुन लेते हैं ये गीत।

और आइए बढ़ते हैं अपने अगले संदेश की तरफ जो आया है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ रहे हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविका सिक्का। अगला संदेश है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा का। सनावत से जुड़ रहे हैं हमारे श्रोता शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना। उत्तम नगर दिल्ली से हमारे पसंद देश आया है कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का। गंगानगर राजस्थान से हमारे श्रोता हैं मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। और हमारे पास श्रोताओं के संदेश बहुत ज्यादा हैं और ये संदेश हमारे पास है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत सुनते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, अगला संदेश हमारे पास आया है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान और रघुनाथपुर जिला श्रीगंगानगर से जुड़ रहे हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। सोमनाथ कालिया और भूषण शर्मा जुड़ रहे हैं करनाल से। संदेश हमारे पास आया है बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय और दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर से जुड़ रहे हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। छत्तीसगढ़ पलारी से जुड़ रहे हैं हमारे श्रोता प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया का संदेश हमें प्राप्त हो रहा है बागपत उत्तर प्रदेश से। तो आइए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं इस गीत को।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: ओके सैलरी, अब नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और अगला संदेश हमारे पास आया है जलालाबाद से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित का। कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं दिग्दर्शन गौड़ और कविता गौड़ मेरठ से। अगले संदेश के साथ हैं गांव लोहागढ़ से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल, अविराज पोत्रे, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। अगला संदेश है छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजदास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। अनिल मोहन जुड़ रहे हैं पीटीआई संसद मार्ग से, और इंदिरानगर भवरपुर से राधेश्याम देवागन, चंपा देवागन और राजू देवागन, साथ में नेहा देवागन का संदेश प्राप्त हुआ है और इन्होंने फरमाइश की है कार्यक्रम के इस गीत की।

और आइए कार्यक्रम के अंतिम दौर में अब ले लेते हैं ये संदेश जो हमें भेजा है मुंगीसापुर कानपुर से। और रामेश्वर जी का ये संदेश है। अगले संदेश के साथ एटा से हमारे श्रोता हैं नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम अब्बासी और यशफ का, प्रफुल्ल डोगरे, अनुराग शर्मा, दीपेश गुप्ता, देव जायसवाल जुड़ रहे हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। जाफराबाद से हमारे श्रोता हैं सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सर्वत, सानवी और हर्षद देशमुख का। और उत्तम नगर से दिल्ली से जुड़ रहे हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी और गीतिका खोरवाल, साथ भानु प्रकाश। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं पर समाप्त होता है। मुझे यानी विजेता चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, छोड़े जाते हैं आपको इस गीत के साथ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया,
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है,
6: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।

इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं, और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है, और इस जनभागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है।

साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ

बनकर बगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें
आपकी महारत होनी चाहिए।

दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, स्त्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्य शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं।

इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको वृक्ष में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको वृक्ष का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय

0: लोग मूर्तियां खरीदते हैं, वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मिलित्वा अहमत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। 26,000 वर्षस्य अर्धवर्षं प्रायः समाप्तमेव। एतेषु षण्मासेषु वयं मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिनां नैकासाम् उपलब्धीनां चर्चां कृतवन्तः। जून मासेपि देशेन एतादृश्यः उपलब्धयः प्राप्ताः याः प्रत्येकं देशवासिनं गर्वेण पूरयन्ति। एताः सफलताः देशस्य सुरक्षया आत्मनिर्भरतया च सह सम्बद्धाः सन्ति। अचिरादेव अहं कोलकातायां नौसेना सम्बद्धे एकस्मिन् कार्यक्रमे सहभागस्य अवसरं प्राप्तवान्। तत्र INS दूनागिरि, INS संशोधक, INS अग्रय इत्येते पोताः भारतीय नौसेनायाः रक्षक दले सम्मिलिताः। एतेषां पोतानां संरचना निर्माणं चापि सर्वं स्वदेशीयमस्ति। सखायः जून मासे एव विमाननक्षेत्रे अपि देशेन एका महती सफलता अर्जिता। C-295 इति विमानं भारते निर्मितमस्ति, अपि च C295 इति

0: इति संकल्पं सुदृढं कुर्मः। मम विश्वासः अस्ति यत् अस्मिन् गणेशोत्सवे सर्वेषु च एतेषु उत्सवेषु वयम् एतादृशेषु सर्वेषु विषयेषु अवश्यमेव गंभीरतया चिन्तयिष्यामः, राष्ट्रहिताय च पदानि नूनं उत्थापयिष्यामः। सखायः, अस्माकं देशस्य महत्तमा शक्तिः अस्माकं देशवासिनः एव सन्ति। राष्ट्रस्य विविधेषु भागेषु प्रवर्तमानाः लघवो महन्तश्च उपक्रमाः अस्मान् बहु किमपि शिक्षयन्ति। एते प्रयत्नाः अस्मान् बोधयन्ति यत् यदा मनसि दृढः संकल्पो भवति, समाजस्य च सहयोगः लभ्यते, तदा किमपि महत् परिवर्तनं साधयितुं शक्यते। भवन्तः स्वपरिसरेषु प्रचलतां प्रेरणादायकानां उपक्रमाणां विषये माम् अवश्यं प्रेषयन्तु। स्वविचारान् स्वपरामर्शान् च निरन्तरं प्रेषयन्तु। सम्भवमेतत् यत् भवतां समीपे आरब्धः कश्चन लघुः उपक्रमः सम्पूर्णस्य राष्ट्रस्य प्रेरणा भवेत्। आगामिनि मासे वयं पुनर्मिलिष्यामः। देशवासिनां केषाञ्चन नवीनानां प्रयत्नानां चर्चां करिष्यामः। तावत् भवन्तः स्वस्य स्वपरिवारस्य च परिचर्यां कुर्वन्तु। आम्, जलसञ्चयः तु करणीय एव। वर्षा जलस्य एकः एकः अपि बिन्दुः अस्माभिः रक्षणीयः। कैच द रेन इति अभियाने शैथिल्यं न कदापि आनेतव्यम्। अतः मम विशेषः आग्रहः अस्ति यत् वर्षा जलस्य बिन्दुं बिन्दुं संरक्षामः। बहुधन्यवादाः, नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
3: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
3: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
2: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
3: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्री मोदी आज सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को भी संबोधित करेंगे।

0: और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकमन में राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे। समारोह में भारतीय रक्षा बलों का दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी हैं। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि श्री राव ने देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। रक्षा मंत्री ने उन्हें दूरदर्शी नेता और प्रख्यात राजनेता बताया। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। उधर बेलफास्ट में पुरुष टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with a Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
2: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: Mr. Modi exuded pride that India achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. The Prime Minister was pleased to note that everything is indigenous from the design to the manufacturing of these ships. The Prime Minister stated that in the month of June, the DRDO also successfully tested an indigenous long-range land attack cruise missile. This was developed jointly by DRDO laboratories and Indian industry partners. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies. The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold.
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन

0: बहनों, हमारा राम
1: राम और
0: नमस्कार गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी दोस्त और मेरे साथ मेरी सह साथी
1: यमुना। तो पहली रेनू मैं आपको भी राम राम कह दूँ और बहनों से तो हो गया राम राम,
0: बिल्कुल लेकिन राम राम
1: तो एक दूसरे से राम राम करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मुलाकात तो इस कार्यक्रम के जरिए होती है और हम दोनों आकर के मिलते हैं और बातें करते हैं।
0: हाँ, और बातों के साथ साथ अपनी ग्रामीण महिलाओं के साथ भी जुड़ जाते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। हाँ? मनोरंजन होता है। और आज जो धूप थी उसमें जो मनोरंजन, मत बोल पूछो, हाथ हालत खराब हो गई हमारी।
1: मतलब किसी तरीके से धूप में बचते बचाते यहाँ तक आए,
0: बिल्कुल,
1: और सूती कपड़े से मुंह को खूब ढके हुए थे, पीने के लिए ठंडा पानी भी साथ में लिए थे, मतलब कुल मिला के अपनी कुछ न कुछ हिफाजत करते हुए यहाँ तक हम पहुंचे।
0: मुझे लगा आज इतना झोला उठाकर कैसे आई हैं।
1: अरे सत्तू का घोल रख लिए, कुछ ऐसी चीजें, तासीर चीजें, अब ठंडी चीजें रखे थे जिससे थोड़ा सा आराम मिले। तो ये चीजें तो सबको करनी चाहिए,
0: सबको करनी चाहिए। बहुत गर्मी है तो शरीर स्वास्थ्य है, हर चीज का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अब जैसे हम पानी ना पिए तो डिहाइड्रेशन, मतलब अपने शरीर को पूरी तरीके से पानी पीना चाहिए। पानी के साथ साथ ठंडा, मतलब नींबू पानी पीजिए और साथ में सत्तू का पानी पीजिए। तो ये सत्तू का जो जूस होता है बहुत ही फायदेमंद होता है, अंदर शरीर को ठंडक देता है और साथ साथ हमारी जो स्किन है यानी कि हमारी जो सुंदरता है वो भी ढीली पड़ जाती है, क्योंकि गर्मी इतनी तेज है कि हमारी जो स्किन है वो काली होती चली जाती है। तो महिलाओं को तो खास तौर पर ध्यान रखना है, भाई वो इतनी खूबसूरत हैं तो और खूबसूरत बनी रहे।
1: और उनकी खूबसूरती का हम ध्यान रखते हैं, तभी तो गृह लक्ष्मी कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है इसके जरिए हम उनको बहुत सी जानकारी भी देते हैं और पोषण से संबंधित भी बात बताते हैं। योग करने से

0: क्या फायदे हैं, इस पर भी हम चर्चा करते हैं और उनके मनोरंजन का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं।
1: बिल्कुल। और आज मैंने भाई बता दूं अपने महिलाओं को कि आज मैंने अच्छा से लेप लगाया, यानी कि एलोवेरा जो बहुत अच्छा होता है, तो मैंने आज सुबह बिल्कुल घर में रहता है, आपको कोई खर्चा पानी कुछ नहीं करना है, पौधा लगाना है और उसकी जो अंदर की जो जेल होती है वो निकालो और स्किन पर लगाओ और काम भी करो, आपको बैठना नहीं है।
0: अब मुल्तानी मिट्टी अगर घर में है तो उसे थोड़ा सा बारीक सा पीस ले, पाउडर बना के रख ले, उसका भी घोल करके अपने चेहरे पे लगा ले।
1: हाँ,
0: स्किन अच्छा रहेगा,
1: स्किन अच्छा रहेगा। और हम अलोम विलोम योगा तो करते ही हैं, उससे हमारी स्किन और अच्छी रहती है। तो ये सारी चीजें तो हमें ख्याल रखनी पड़ेंगी और पानी खूब पीते रहे, जितना पानी पियेंगे उतनी आपकी जो सुंदरता है निखरती चली जाएगी।
0: और सबसे बड़ी बात है जो बच्चे हैं साथ में उनको लेकर चल रही है तो उनका भी पूरा पूरा ख्याल रखे, सूती कपड़े पहनाए, खुद भी सूती कपड़े पहने, ऐसे कपड़े ना लें कि जो गर्मी और बर्दाश्त न करने लायक बना।
1: बिल्कुल। और कहते हैं ना खादी सूती ये जो तो है हमारे बहुत सही रहते हैं, स्किन के लिए अच्छे रहते हैं, शरीर के लिए अच्छे रहते हैं। और मुंह पर पूरा कपड़ा अच्छे से ढककर जाएं, अपने शरीर को पूरे तन को ढककर रखें, क्योंकि ये जो धूप है ना ये नुकसान पहुंचाती है और आप चक्कर खा के भी गिर सकते हैं भाई, इतना ध्यान रखें, छाता भी लेकर चले अपने साथ।
0: बिल्कुल, शरीर को ढके रखें और अपना पूरा ख्याल रखें और धूप की सफर को
1: एक सुहाना सा बनाते हैं इस गीत के साथ।
0: बिल्कुल।

0: अरे आजकल बहुत सारी महंगाई बढ़ गई है, और महंगाई बढ़ते बढ़ते हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम महिलाएं तो वैसे भी खास तौर पर बहुत
1: बिल्कुल
0: ध्यान
1: रेनू।
0: रखती हैं कि हमें बचत करनी है ना, और हर जगह काम आता है। और महिलाओं को ये बड़ा अच्छा तरीका है कि कहीं ना कहीं छुपा छुपू के अपना अपने पैसे ना संभाल कर रख लेती हैं, और वो काम आता है जब जरूरत होती है।
1: कुल मिला के महिलाएं जो भी पैसे इधर उधर से दाएं बाएं कहीं से निकालती हैं, या पति से पाती हैं या रिश्तेदारों से पाती हैं, बच्चों के पैसे भी इकट्ठा करके रख लेती हैं, तो सारे पैसों का सच बताएं ना, बहुत बड़ा यूज होता है उनके लिए, क्योंकि वो कहीं ना
0: बिल्कुल,
1: कहीं जमा कर देती हैं। जमा नहीं करती हैं, अगर नहीं बैंक तक जा रही तो घर में ही
0: घर में ही
1: इकट्ठा
0: कर
1: करके
0: रही
1: रखती
0: हैं,
1: है। लेकिन अब तो बहुत समझदार हो
0: बहुत
1: चुकी महिलाएं।
0: समझदार।
1: और देखो सबसे बड़ी बात ये रेनू की, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में देखा जाए तो बीमा भी होना बहुत
0: बहुत
1: जरूरी है।
0: जरूरी है। और आज तो बहुत खास दिन है, पता है, तो बीमा पर अगर हम बात करें तो आज है अंतर्राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस। और इस पर ये कहते हैं ना, आपदाएं इतनी आने लगी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा आ गई, चिकित्सा पर आपातकालीन कुछ ऐसा आ गया, अनहोनी हो जाती है, तो इन सब चीजों पर बीमा होना बेहद जरूरी है। और इसी पर आधारित आज का ये दिवस मनाया जा रहा है।
1: 28 जून।
0: हाँ
1: और जब बीमा सुरक्षा की बात होती है तो जैसे
0: हाँ
1: आपने कहा अनहोनी हो जाती है, तो मैंने वही कहा ना कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कुछ
0: नहीं
1: भी हो
0: है।
1: सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि बीमा की बहुत सी पॉलिसियां आई हैं, बहुत तरीके की सरकार द्वारा भी चलाई गई हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि आप जो भी पैसा इकट्ठा करें उसे सही जगह लगाएं, सही
0: बिल्कुल,
1: तरीके से पता करके लगाएं, कभी भी ऐसा ना हो कि आप ठगी का शिकार हो जाएं। तो कोशिश ये करनी चाहिए जो भी आपके पास पैसे आते हैं सही जगह अगर आप लगाती हैं, तो सच कहें
0: सच
1: कभी
0: में
1: जीवन में कोई ऐसी घटना घटती तो आपके लिए वो बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही सहायक साबित हो सकता है, वो जो अमाउंट आपने जमा कर रखा है।
0: बिल्कुल। और हमारी आज की एक और, जैसे हमारे प्रधानमंत्री द्वारा भी एक बीमा योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति
1: बीमा
0: बीमा
1: योजना।
0: योजना। तो ये जो है, जो सरकार द्वारा चलाई गई, वो एक सस्ती सी योजना है, आप इतना घबराएं नहीं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे कि 18 से 50 वर्ष के जो बैंक खाता धारक हैं वो 436 वार्षिक प्रीमियम दर देकर, सिर्फ इतना ही अमाउंट, सिर्फ इतना ही मूल्य देकर 2 लाख का जीवन बीमा कवर प्राप्त कर सकते
1: और
0: हैं।
1: सबसे बड़ी बात ये रेनू कि जो आपका खाता है जहां खुला हुआ है वहां पे सिर्फ ऐड कराना होता है। जैसे आप जीवन बीमा ये योजना की बात, जीवन ज्योति बीमा योजना की बात बैंक में बताएंगे तो 436 रुपए जो कटेंगे वो आपकी जो जमा है धनराशि उसी में से कट
0: उसी
1: के
0: में से
1: ऑटो
0: कटे।
1: डेबिट है, मतलब वो अपने आप कट जाता है, इकट्ठा होता रहता है, और समय आने पर वो अमाउंट आपको मिल
0: मिल
1: जाता
0: जाएगा,
1: है।
0: यानी कि 55 साल तक की एक ही है इसका, आप उसको रिन्यू यानी कि नवीकृत करा सकते हैं। तो
1: हाँ
0: आपको इतने घबराने
1: बिल्कुल,
0: की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा योजनाएं बनाई गई हैं जो आपके भविष्य के लिए लाभदायक रहेंगे।
1: बिल्कुल। और इस पॉलिसी की बात करें तो इसमें 55 वर्ष की आयु तक रिन्यू कराया जा
0: बिल्कुल,
1: सकता है, जमा करने का तो 18 से 50 वर्ष का है, लेकिन उसमें रिन्यू ऐसे किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है योजना का लाभ लेने किसी भी बैंक या डाकघर, जो भी बचत खाता आपके
0: आपके आसपास
1: आसपास,
0: हो।
1: हाँ वहां संपर्क आप कर सकते हैं। गांव की महिलाएं हैं तो आंगनबाड़ी वाली की आती है कार्यकर्ती, तो उनसे भी संपर्क करके आप इन सब चीजों का लाभ पा सकते हैं। तो
0: बिल्कुल,
1: जो पैसे आप घर में ऐसे ही डिब्बे में या चावल के पोटली में
0: जो
1: कहीं आप,
0: पहले के जमाने में किया जाता था
1: हाँ
0: वो छोड़ दें,
1: अभी बहुत सी ऐसी
0: बहुत
1: है
0: से
1: रेनू अभी नहीं निकल पा रही हैं, और चुपके से रखी हैं तो बता भी नहीं सकती पति को या किसी को कि मैंने इतने पैसे इकट्ठा कर लिए, मेरा जमा करा दो। तो ऐसे में जो हमारी आशा कार्यकर्ता है या हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है गवर्नमेंट द्वारा जा रही है आसपास, तो उनसे भी सहायता ले सकती है, जानकारी ले सकती है।
0: बिल्कुल। और यमुना ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि, और बहुत सतर्कता से, मतलब आप ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी ने बोला और आपने कर दिया, आप पूरी जानकारी ले पहले और उसके बाद जाकर जमा
1: बैंक जा
0: कराएं,
1: सकती हैं, बिना आपके गए तो काम नहीं हो सकता, एक
0: बिल्कुल
1: बार तो आपको जाना ही
0: जाना ही
1: पड़ेगा, खाता
0: पड़ेगा,
1: खुलाना पड़ेगा, ऑटो डेबिट कराने, चाहे वो हमने बीमा योजना की बात की उसकी हो, चाहे जीवन ज्योति बीमा योजना, दोनों की बात करें, तो आपकी जीवन की सुरक्षा जो

0: आप जो अमाउंट जमा करते हैं उसके जरिए हो सकता है।
1: बिल्कुल। और एक जून को ये अब आपके खाते में ऑटो डेबिट हो जाता है, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि क्या होगा। तो एक बार आप जाइए, घर से बाहर निकलिए और ये
0: बिल्कुल।
1: कदम उठाइए, ये आपके और आपके परिवार के लिए बेहद फायदेमंद होगा।
0: और जब हाथ में पैसा होता है तो कुछ बात ही अलग होती
1: होती
0: है,
1: है,
0: और
1: और
0: ऐसे
1: अगर
0: में
1: महिलाओं के हाथ में हो तो क्या बात है।
0: तो महिलाओं के हाथ में होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जब वो कुछ पहनती हैं, ओढ़ती हैं या कुछ
1: ओढ़ती
0: चाहती
1: है,
0: हैं, तो वो डिमांड भी करती हैं अपने घर की जो घर वाले हैं उनसे, कहती हैं भाई कुछ मेरे लिए बनवा दो ना। और नहीं तो फिर
1: हाँ
0: वही है ना कि उनके हाथ में जब कोई चीज देखता है तो हस्बैंड भी कुछ बोल पड़ता है, तो पति देव भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं, इस गीत के
1: क्या
0: जरिए सुनते हैं
1: सुनते
0: ना।
1: हैं।

0: हैं, आजकल तो फास्ट फूड का जमाना हो गया है, नहीं कभी कुछ खा रहे कभी कुछ खा रहे, बीमारी अपने अंदर खुद ही हम निमंत्रण दे रहे हैं, आओ जी बीमारी हमें ले लो फटाफट, क्योंकि हम खान पीन पे ध्यान ही नहीं दे रहे। गर्मी भी है, मौसम भी ऐसा है, और खाने पीने पे ध्यान ना देंगे तो बीमार तो होंगे ही। अब आप बताओ, मैं तो आजकल ना, मैंने सच में ना मोटे अनाज खाने शुरू कर दिए।
1: मैं आपकी बातों को सुन रही हूँ, ध्यान से ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब फास्ट फूड का जमाना है।
0: हाँ।
1: लेकिन हम कहते हैं फास्ट फूड का जो वो जमाना नहीं, जमाने में हम अपने आप को ढालते जा रहे हैं। तो जरूरत ये है कि हम फास्ट फूड की तरफ ध्यान न दे।
0: हाँ।
1: अपने श्री अन्न की तरफ हम ध्यान दे, अपनी थाली में वो सारी चीजें हम पोषक तत्वों को शामिल करके खाएं। तो और वैरायटी भी है कि किस किस तरीके से बनाया जा सकता है, इसे लज्जतदार कैसे बनाया जा सकता है। और इसकी क्या क्या चीजें, जो आप चीज खा रहे हो बाहर, चाहे कुछ भी रख लो फास्ट फूड में, वो सारी चीजें हमारे श्री अन्न से बन सकता है। लेकिन कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है, अभी बाद भी ये प्रश्न आता है, लाजमी है। तो बन ऐसे सकता है क्योंकि इसको बनाने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आ चुकी हैं।
0: बिल्कुल, पोषण सुरक्षा हेतु श्री अन्न पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर शुभांगी सिंह, जो कि फाउंडर गोल्डन मिलेट्स की नई दिल्ली से हैं, और उनसे बातचीत कर रहे हैं शिव नंदन लाल।
1: तो चलिए सुनते हैं कि वैरायटी कैसे कैसे श्री अन्न की हम ले सकते हैं अपने भोजन की थाली में।
0: बिल्कुल,
2: किसान भाइयों नमस्कार। सभी लोगों को चिंता रहती है अपने स्वास्थ्य के, और स्वस्थ रहने के लिए निश्चित तौर पर आपको जिस तरीके से खाना पानी हवा की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से अगर खाने में बात की जाए तो आपको सभी पोषक तत्वों की भी जरूरत पड़ती है जो आपके खाने में होने चाहिए। और पोषक तत्व जब ही होंगे जब वो हम अनाज खाएंगे, वो उत्पाद खाएंगे जिनके अंदर उनकी मात्रा भरपूर पाई जाती है। और हमारे देश में पहले अगर हम देखें तो जो हमारे मोटे अनाज जिनको कहते हैं, उनका सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था और सभी लोग स्वस्थ रहते थे, उनको कोई किसी तरीके की ज़्यादा परेशानी या दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब से चलन मोटे अनाज का कम हुआ है और दूसरे खाद्य पदार्थों का बढ़ावा हुआ है, तब से सभी लोगों में कुछ न कुछ परेशानी देखने को मिलती है। तो जो हमारे मोटे अनाज हैं जिन्हें हम श्री अन्न कहते हैं, उनका हमारी पोषण सुरक्षा में क्या महत्व है, ये किस तरीके से दूसरे विकल्प के रूप में हो सकते हैं, इसकी विस्तार से जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शुभांगी सिंह जी को, जो कि गोल्डन मिलेट नई दिल्ली में उसके फाउंडर हैं। शुभांगी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो मैं जानना चाहूंगा कि जैसे जो मिलेट हैं, तो ये पहली बात तो कौन कौन से हैं जो हमारे रोजमर्रा में प्रयोग किए जा सकते हैं?
3: मिलेट बहुत तरीके के होते हैं। लोगों को लगता है कुछ दालें भी हैं जो मिलेट्स में आती हैं, बट ऐसा नहीं है। ये मिथ मैं सबको बता दूं कि 12-15 तरीके के मिलेट्स होते हैं जो हमारे भारत में पाए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा ज्वार, बाजरा, रागी, ये सबको पता होता है। उसके बाद आता है चौलाई, जिसको राजगिरा कहा जाता है, जिसको हम फोड़ के पॉपकॉर्न की तरह लड्डू भी बना के हम व्रतों में खाया जाता है। उसके बाद आते हैं सामक के चावल, स्पेशली नॉर्थ साइड में उसको सामक के चावल कहते हैं, साउथ में उसको भगर कहते हैं। उसके बाद आता है कुटकी। कुटकी बहुत छोटा दाना होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और आयरन की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद आता है कोडो। कोडो को कुछ क्षेत्रों में हमारे भारत के कोदा भी कहा जाता है, एंड इसके अंदर जिंक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो हमारे ब्लड के लिए भी जरूरत होती है और हमारे गट के लिए भी बहुत जरूरत होती है। उसके बाद आते हैं कंगनी। कंगनी में कैल्शियम बहुत होता है, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। उसके बाद आता है, दो ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा जाने नहीं जाते मगर हमारी बॉडी के लिए एंटी कैंसरस का काम करते हैं, उनका नाम है प्रोसो, जिसको बिहार साइड में चीना भी कहा जाता है, और लास्ट है ब्राउन टॉप। ब्राउन टॉप को हरी कंगनी का नाम दिया गया है क्योंकि इसका जो चावल है, मिलेट का चावल है, वो हरे रंग का होता है। तो ये कुछ लगभग हैं जो ज्यादा जाने गए हैं। इसके साथ और भी हैं बट वो कुछ ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बहुत लार्ज मात्रा में पाए नहीं जाते। तो ये लगभग, अगर सबको नाम और वैसे देखना हो, सब मार्केट में भी अवेलेबल है और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप जाके इन्हें देख भी सकते हैं। हमारे जो भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर एक क्षेत्र बनाया गया है जहाँ पे मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर है, वहाँ पे आप जाके इसको देख भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप टेस्ट भी कर सकते हैं।
2: जी बिल्कुल, आपने कई जो हमारे मिलेट हैं उनका जिक्र किया, लेकिन इतने मिलेट हमारे देश में हैं और इनका उत्पादन भी होता है, लेकिन इसकी तरफ लोगों का

0: रुझान क्यों कम हुआ है?
1: जब हम इतना ज्यादा एक ही अनाज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे हम अगर लंच की बात करें, हमारे यहाँ चावल या गेहूं की रोटी यही सबसे ज्यादा फेमस है। अब इसके अंदर मोटे अनाज को डालें कैसे, ये हमारी पहले के पीढ़ियों को सबको पता था और बहुत अच्छी अच्छी व्यंजन बनाए जाते थे इससे। बट आज के टाइम पे एक तो समय की पाबंदी है लोगों के पास, दूसरा इसको बनाने के लिए लोगों को लगता है बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा या कुछ अलग तरीके का प्रक्रिया होगा।
0: तो जब बनाने की बात आए तो इनसे कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं?
1: जी, सबसे ज्यादा तो अगर हम ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक बात करें, ब्रेकफास्ट से अगर हम शुरू करते हैं तो आप सबसे पहले जो मिलेट के पोहे आते हैं आप उसे स्मूदीज बना सकते हैं। बच्चों के लिए शेक इतना अच्छा वो है, उसमें डेट्स डालिए, उसके अंदर किशमिश डालिए असली मिठास के लिए, फ्रूट्स डालिए असली मिठास के लिए, उसमें भीगे हुए पोहे डालिए, इससे आपकी स्मूदी बन सकती है। फिर आपके चीला हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया, उत्तपम हो गया, जितना साउथ इंडियन व्यंजन है वो बनाए जा सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसके दलिया ले सकते हैं, ज्वार का दलिया, बाजरे का दलिया, इनसे आप दलिया बना सकते हैं सुबह। ये आपके ब्रेकफास्ट को इतना हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, जो आजकल इतना सब लोग चल रहा है कि इंडिया में प्रोटीन की कमी रहती है, वो हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट आपका इसी से ही कम्प्लीट हो सकता है। मगर बनाने का तरीका बहुत आसान है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, सीखना चाहें तो लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। फिर आते हैं हम लंच पे। देखो, वैसे तो मिलेट खाने के बाद लंच तक भूख नहीं लगती, मगर फिर भी अगर किसी को भूख लगती है तो आप रोटी या चावल को इसमें एड ऑन भी कर सकते हैं अपने रोटी के अंदर, जैसे कुटकी का आटा या कंगनी का आटा या ज्वार का आटा आप एड कर सकते हैं, उसको मल्टीग्रेन बना सकते हैं। अगर वो नहीं तो मैं चार तरीके की आपको रोटियां बनाती हूँ। अगर मैं रोटियां आपको बताती हूँ तो सबसे पहले आता है सामक की रोटी। सामक की रोटी आपके डायबिटीज को कंट्रोल करती है और बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपके ब्लड में जाके आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैंडल करती है, आपके शुगर स्पाइक को हैंडल करती है। दूसरी आती है रागी की रोटी। रागी की रोटी अगर आप खाते हैं तो आपको नेचुरल विटामिन डी और कैल्शियम मिलता है। 98% आपका लिवर यहाँ पे कैल्शियम अब्सॉर्ब करता है। इसका मतलब है आपके दूध से ज्यादा, आपके पनीर से ज्यादा, आपके हर चीज से ज्यादा कैल्शियम आपके रागी के अंदर एब्सॉर्प्शन लेवल, बच्चों के लिए तो सुपर ग्रेन है ये। तीसरी रोटी जो आती है बाजरे की रोटी। सबको लगता है बाजरे की रोटी बहुत गर्म होती है, बट ऐसा नहीं है। तासीर उसकी अगर आप खाएं तो वो शरीर के अंदर से गर्मी निकालती है, इसका मतलब शरीर को ठंडा रखती है। तो आपके फाइबर इश्यूज, अगर आपके पेट में दिक्कत है या कुछ भी है, आप जो भी जब भी बनाए तो बाजरे की रोटी में थोड़ा सा जो हमारा इसबगोल होता है वो डाल लीजिए, आपका पेट इतने अच्छे से रहेगा कि ना आपको इश्यूज होंगे ना ही आपको कोई भी गर्मी जैसा लोग बोलते हैं वैसा होगा। और आखिरी रोटी जो आती है वो है ज्वार की रोटी। अगर किसी को भी खून को साफ करने की या हाइपरटेंशन, बीपी, डाइजेस्टिव इश्यूज, एसिड इश्यूज अगर किसी को भी है, पेट से रिलेटेड अगर इश्यूज है, अगर वो ज्वार की रोटी एक भी दिन दो भी दिन अगर साथ में खा लें तो उनको तीसरे दिन से फर्क दिखने लग जाएगा कि हमारा पेट आज बहुत बेटर है पिछले दो दिन से। तो ये तीन चार तरीके की रोटियां हैं, अगर हम इन्हें बनाना सीख लें, बहुत इजीली गर्म पानी में बनती हैं ये, अगर सीख लें तो बहुत ही ज्यादा आपका लंच बेटर हो सकता है।
0: और दूसरी बात, क्योंकि सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं उस समय समय कम होता है
1: जी,
0: तो क्या ये कुछ चीजें बनी हुई भी मार्केट में उपलब्ध होती हैं जिनको बहुत जल्दी से बनाया जा सकता है?
1: बिल्कुल सही है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शेक मिक्स हो गया, प्रीमिक्सेस, चीला के प्रीमिक्स हो गए, आपको इसमें सिर्फ पानी या दही मिलाना है और आपको घोलना है और फिर बना सकते हैं। ऐसे प्रीमिक्सेस अवेलेबल है मार्केट के अंदर और बहुत इजीली इनको आई थिंक 5-10 मिनट्स के अंदर अंदर ही बनाया जा सकता है। एक तो बच्चों को मैंने देखा है आजकल मीठा या चटपटा बहुत अच्छा लगता है, आजकल जैसे चिप्स वगैरह खाते हैं तो वो चिप्स की, क्योंकि उसमें चटपटा एक फ्लेवर होता है, उनको वो पसंद होता है, या एक पैनकेक या मिठास की तरफ जाते हैं, केक की तरफ, पेस्ट्री की तरफ। तो ये सारी चीज ना आप मिलेट से अगर बनाएंगे ना, तो एक तो आपको नेचुरल कोई भी स्वीटनर डाल सकते हैं आप, जैसे जैगरी हो गया या डेट्स हो गए या फिर आपने किशमिश डाल के कर दिया, तो इससे आप पैनकेक बना दीजिए। चीला भी बना रहे हैं तो चटपटा चीला बनाइए, उसमें मसाले वगैरह डाल के बनाइए, जीरा डालिए, चाट मसाला डालिए, इससे बच्चे बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। और दूसरा, अगर आपको उनकी स्नैकिंग, जैसे हमने चिप्स वगैरह की बात करी, अगर इसे रिप्लेस करना है तो मिलेट के वो भी अवेलेबल है। आप घर में तो बना ही सकते हैं, जो लोग बनाते हैं वो बना सकते हैं, बट मार्केट के अंदर भी अवेलेबल है, वो भी ट्राई कर सकते हैं, बच्चों के लिए रिप्लेसमेंट में बहुत अच्छा काम करते हैं।
0: कहते हैं कि हमारा एक बाजरा है या कुछ ऐसे और भी मिलेट हैं जिसका आटा बनाने के बाद वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता, वो खराब हो जाता है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो इसको सही रखने के लिए भी कुछ उसमें मिलाया जाता है, क्या है तरीका?
1: जैसे

0: मार्केट के अंदर अगर आप जाते हैं तो एक तो जब भी आप पिसवाएं तो अपने सामने पिसवाएं।
1: मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे श्रीअन्न हैं वो पोषण सुरक्षा के लिए काफी विकल्प हो सकते हैं अगर इनका
0: जी
1: सही तरीके से प्रयोग किया जाए और अपने खाने में सम्मिलित किया जाए। तो हमारे जो श्रोता हैं, कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो अपने खाने में श्री अन्न की मात्रा को बढ़ाएं, उसके लिए आप उन्हें क्या कहना चाहें?
0: मैं ये कहना चाहूंगी कि अपनी सेहत जो है हमारे खुद के एक छोटे से बदलाव से ही शुरू होती है। हम घर में जो स्वादिष्ट हमें बाहर खाना मिलता है, बाहर व्यंजन मिलता है, यह सब कुछ हम घर पे भी बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी कुजीन हो, चाहे वो भारतीय कुजीन हो, चाहे वो जापनीज कुजीन हो, चाहे वो नूडल्स पास्ता हो, चाहे वो मोमोज हो, सब चीज के अंदर मोटे अनाज को आप डाल सकते हैं और बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। रेसिपीज आपको बहुत सारे लोग हैं जो आजकल इंटरनेट पे सिखा रहे हैं, तो आप उनसे भी सीखिए, वीडियोस देखिए। हम अपने ही पोषण के लिए, अपने परिवार के पोषण के लिए अगर एक दो वीडियो से कुछ सीख के अगर कुछ अच्छा बना सकें 5-10 मिनट के अंदर अंदर, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, चाहे बच्चे हो, इसे कोई भी बना सकता है और बहुत टेस्टी बन सकता है।
1: जी बिल्कुल, हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप एकदम मत शुरुआत कीजिए, थोड़े थोड़े करके आप उसको
0: जी
1: शुरू करिए, जिससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और दूसरे कि जो हमारे मोटे अनाज हैं या श्री अन्न हैं, अगर हमारे किसान भाई इनकी खेती भी करते हैं, इनमें कोई ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं होती है,
0: जी
1: न इनको ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है, कम
0: जी
1: लागत में हो सकते हैं और दूसरी फसलों के साथ भी इनको उगाया जा सकता है।
0: श्री अन्न के लिए आप अगर फार्मिंग साइड में हैं तो वहां पे भी इसके अंदर सब्सिडीज हैं। अगर कोई उद्यमी है, अगर ब्रांड बनाना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं, तो बहुत सारी अलग अलग विकल्प हैं। मशीन खरीदने के विकल्प अलग हैं, जो स्कीम्स अलग हैं। अगर लोन लेना है वर्किंग कैपिटल के लिए वो अलग है। उद्यमी को अगर शुरू करना है पैकेजिंग साइड में, अगर इसको पैक करके कुछ सामान आगे भेजना है, तो उसके लिए भी एजुकेशन साइड में भी बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम्स खोले हुए हैं, उन्होंने एजुकेशन के लिए वीडियोस बनाई हुई हैं। तो सीखने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ है, मगर बस एक जज्बा चाहिए। आप घर से भी छोटे लेवल पर शुरू कर सकते हैं, मशीन्स भी बहुत छोटी छोटी अवेलेबल हैं आजकल, और उसको करने के बाद आप मार्केट अगर ढूंढे तो मार्केट के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत जगह स्टॉल देती है, उसके
1: मेले
0: साथ
1: लगाते
0: मेले
1: हैं।
0: भी लगाते हैं, और आपको हो सकता है गवर्नमेंट्स के अंदर खरीदारी भी होती है, प्लेटफॉर्म जैसे ONDC वगैरह प्लेटफॉर्म्स
1: जी
0: हैं वो भी बनाए हुए हैं। तो करने के लिए बहुत कुछ है, बस एक
1: आपको जागरूक
0: आइडिया।
1: होने की जरूरत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी बिल्कुल, शुभांगी सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और
0: जी
1: निश्चित तौर पे आपने श्री अन्न के बारे में काफी कुछ बताया कि किस तरीके से इससे पोषण सुरक्षा की जा सकती है। आपका
0: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्री अन्न से कैसे पोषक तत्वों को शामिल करके कैसे बेहतरीन तरीके से हर चीज हम बना सकते हैं, खा सकते हैं, इसी विषय पर श्री अन्न से जुड़ी बहुत सी बातों पर बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी डॉक्टर शुभांगी सिंह, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल। और थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और श्री अन्न की ही बात हम कर रहे हैं, तो श्री अन्न को कैसे लोकगीत के जरिए ब्रजपाल चरौरा अब बताना चाह रहे हैं, चलते हैं सुनते हैं
3: ये वाली लोकगीत।

0: तो यमुना, अभी हमने सब को सुनाया और खुद भी सुना, क्योंकि ये है ब्रजपाल कलाकार की आवाज में, ब्रजपाल चौरसिया जी की आवाज में मोटे अनाज पर जो हमने लोकगीत सुना, बेहद ही खूबसूरत था। और एक बात, यहाँ आज ना मैं सोच रही थी, खूब भागदौड़ तो मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो, इतना भागते हैं हम सारी महिलाएं, घर का भी करती हैं, बाहर का भी करती हैं, अपना ख्याल रखती हैं? आप
1: बिल्कुल नहीं
0: अपना
1: रख
0: बताओ,
1: पाते
0: आप कितना करती हो?
1: देखो, सबका ख्याल रखते रखते ना अपना ख्याल रखना ही हम भूल जाते हैं। सच तो ये है, जो सच्चाई है उसे बता रही
0: सच्चाई
1: हूँ,
0: है ना।
1: अपनी ही सच्चाई नहीं, हमारी जितनी बहनें हैं सबके साथ
0: हाँ,
1: ऐसा होता ही है।
0: हम पूरे परिवार के सबके ख्याल रखें, लेकिन अपना नहीं रखते हैं। हमें लगता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं कल कर लूंगी। आज मैंने, पता, सच में मैंने खुद सोचा था कि अब तो मैं रोज योगा करूंगी, लेकिन मैं सोचती रह गई, कल किया था आज रह गया। सोचा अरे ये काम कर लेती हूँ, पहले वो कर लेती हूँ, लेकिन वो भूल गई जो मेरे लिए जरूरी था।
1: एक बात और है, ये बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि
0: हाँ
1: बहनें कहती मैं सारा दिन तो दौड़ दौड़ के काम करती हूँ, योगा करने
0: हाँ
1: की क्या बात है, लेकिन सच कहें योगा सिर्फ अगर देखा जाए तो ये नहीं कि भाग दौड़ आपने कर लिया तो योगा हो गया आपका। वो शारीरिक जो एक फिजिकल जो हमारा वर्क होता है, जो शारीरिक भाग दौड़ हम करते हैं, चलो ठीक है आप फिट बनाए रखें अपने आप को, लेकिन जब आप थक के बैठती है ना तो सुकून का जो पल होता है ना, तो योगा में जब हम बैठते हैं
0: हाँ
1: तो शांति, वो सुकून और वो प्रकृति से जुड़ने का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया उसे आप खो देती हैं अगर आप योगा नहीं करती हैं तो।
0: बिल्कुल। और शरीर से ज्यादा ना मानसिक रोगी हो गए हैं हम लोग। हम बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम क्यों हो रहे हैं। लेकिन ये सच में ये एक तनाव ही है, जो हमें छुपा हुआ तनाव, एक मानसिक तनाव, और इसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, आप योग करें
1: और थोड़ा सा पल अपने लिए
0: अपने लिए।
1: सुबह का निकालिए और प्रकृति के साथ बैठिए। नहीं आप दूर दराज जा पा रही, जैसे खेत खलियान के पास ही जा रही हैं, तो आप कुछ नहीं, एक टाट पट्टी बिछाइए, वहां सुकून से अपने खेत के पास ही बैठ जाइए,
0: बस
1: वहां भी सुकून से आप करती हैं आपको।

0: तो हरा भरा मौसम मिला है। अगर शहर की हमारी बहनें कार्यक्रम सुन रही हैं तो वो भी अपने जो उन्होंने बागवानी थोड़ी सी कर रखी है लगा रखे उसी के बीच बैठ जाइए, तो थोड़ा जब हम प्रकृति से तालमेल बैठाते हैं, उनसे कहते हैं ना जो पत्तियां हैं उनमें भी जीव है, पेड़ पौधों में भी जीव है, तो एक तरीके से हम उनसे जब जुड़ते हैं, बात करते हैं, जब हम उनसे जुड़ते हैं एक शांति ये सुकून के पल को जीने की कोशिश करते हैं प्रकृति के साथ, तो कहीं ना कहीं वो प्रकृति हमसे बातें करती है और हम उससे जुड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम ऐसे जुड़ेंगे तो हमारा मन भी स्वस्थ होगा, तो तन भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा और जो हमारी ये काया है ये निरोगी रहेगी हमेशा के लिए,
1: हमेशा के लिए। और बिल्कुल ये कहते हैं कि इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है और जो महिलाएं हैं जो गुस्सा करती हैं उनकी और जो भूल जाती हैं उनकी एकाग्रता भी बढ़ जाती है, तो ये जो भावनाएं हैं हम कई कई बार होता है ना महिलाएं रोने लग जाती हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता वो रो किस वजह से रही हैं, तो ये एक मानसिक रोग ही है जो हम अपने अंदर बैठा रहे हैं, लेकिन इनको दूर करने का एक सबसे आसान तरीका यही है कि आप प्रकृति से जुड़े, प्रकृति के साथ साथ जुड़ने का मतलब वहां बैठे आलोम विलोम, श्वास तो हम लेते ही हैं तो थोड़ा खुलकर ले लें और इस बाग बगीचे के साथ प्रकृति के साथ, तो और गर्भावस्था में तो खास तौर पर ध्यान रखें कि इस अवस्था में हम कहते हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन योगा करना बेहद जरूरी है और वो डॉक्टर की सलाह से जो वो बताएं उस तरह के योगा करें, जैसे कि अलोम विलोम करें, आराम से बैठ के श्वास ले सकें, इस तरह के करें तो आपके बच्चे के लिए भी और आपके लिए दोनों के लिए फायदा।
0: बिल्कुल, तो फिर मैं यही कहना चाहूंगी कि तन हो सुंदर, मन हो सुंदर, सुंदर हो स्वास्थ्य हमारा और योग बिना कुछ संभव ना हो जीवन की ये धारा,
1: क्या
0: तो चलिए जुड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि जब कोई खूबसूरत लगता है तो फिर यह लगती है, तो फिर कैसे और क्या कहते हैं इस गीत के जरिए।

यमुना, आज खास दिन है, जैसे कि हर महीने के रविवार खास दिन होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कही जाती है। और मन की बात के इस कार्यक्रम में आज जो था वो 135वां एपिसोड था, जिसमें कुछ खास बातें उन्होंने कही, जैसे कि समुद्र से आकाश तक भारत जो है सुरक्षित, यानी कि ऐसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हाल ही में सफल हुए मिसाइल प्रशिक्षणों का जिक्र किया और कहा कि देश के सैन्य शक्ति और रक्षा क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहे हैं। और आत्मनिर्भर नौसेना का विस्तार भी इस तरह से हुआ कि कोलकाता में आयोजित नौसेना कार्यक्रम का जिक्र किया, जहां INS डूनागिरी और INS शशधक और INS आगरे जैसे पूरी तरह से स्वदेशी युद्ध पोतों को नौ

0: सेना में शामिल किया
1: और
0: गया।
1: सबसे बड़ी बात ये भी कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो भी हाल ही में संपन्न हुआ है, योग दिवस के भव्य आयोजन की उन्होंने सराहना भी की और नागरिकों से योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जैसा कि हम भी रेडियो के जरिए बार बार आपसे कह रहे हैं। और सकारात्मकता की बात करें और सामूहिक प्रयास की हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली प्रयासों, जैसे पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की हम बात करें तो उसकी भी उन्होंने प्रशंसा की और साथ साथ ये भी कहा कि आप भी ऐसा प्रयास करते रहे।
0: बिल्कुल, तो ये थी हमारी प्रधानमंत्री द्वारा कही मन की बातें। और इसी के साथ कुछ बातें कहते हैं ना कि गीतों से भी हम जोड़ सकते हैं इस बात को, क्यों नहीं?
1: बिल्कुल, अगर हम जीवन में कुछ करते हैं तो उसमें बड़ी खुशी भी होती है कि हाँ हम इस उपलब्धि को पा लिया। तो ऐसे भी अगर कुछ काम मन की बात के जरिए अगर कोई गुजारिश कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, या हम भी अपने से कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसमें जो खुशी मिलती है इस गीत के जरिए हम बयां कर सकते हैं।

0: और अगर यमुना पद्मश्री अवार्ड की बात की जाए तो यहाँ 19 महिलाओं को मिला, जिसमें कि महिला क्रिकेट टीम कप्तान हरमनप्रीत कौर और भारत की हॉकी टीम के दिग्गज गोलकीपर सविता पुनिया को दिया गया।
1: और सुश्री लिविया लोबो सरदेसाई 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी है, इनको भी अवार्ड दिया गया। और पार्श्व गायिका अलका याग्निक भी पद्मश्री अवार्ड प्राप्त की।
0: बिल्कुल, और आज कल एक खास बात की जाए तो ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे जिसमें से एक हैं राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त, जिनका जन्म 1883 में हुआ था बनारस में। और उन्होंने कहते हैं ना, महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे, स्वतंत्रता आंदोलन को आर्थिक और नैतिक समर्थन भी दिया। 1920 में हिंदी दैनिक आज की स्थापना की और 1921 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना भी की, भारत माता मंदिर का निर्माण कराया और BHU की स्थापना आर्थिक सहयोग दिया, और महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र रत्न की उपाधि दी।
1: और वीरांगना क्रम में आज हम अहिल्याबाई होलकर की हम बात करेंगे। तो मालवा साम्राज्य की महान महाराठा जो महारानी थी, 18वीं शताब्दी में एक कुशल शासक और न्यायप्रिय प्रशासक के रूप में प्रसिद्धि हुई, और उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाकर पूरे भारत में अनगिनत मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और जन कल्याणकारी कार्य किए। और चलते चलते सुझाव शिकायत की हम बात करेंगे। कार्यक्रम हमारा गृह लक्ष्मी चल रहा है तो बहनों के विचार भी लेने बहुत जरूरी है, तो पता बता दें।
0: बिल्कुल, और हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नया प्रसारण भवन, नई दिल्ली 110001। और ईमेल भी कर सकते हैं feedback@gmail.com।
1: और साथ साथ आपको भी बता दें कि हमारा जो अगला कार्यक्रम शाम को होगा ग्राम संसार होगा, और लोक रंजनी भी होगा और कृषि जगत भी होगा। लोक रंजनी 5:10 पर

0: का 5:30 तक, और जो हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम होगा 6:30 से लेकर के 7 बजे तक, और 7:05 से लेकर के 7:30 तक आप सुन सकेंगे कृषि जगत कार्यक्रम।
1: तो सुनना ना भूलें।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ बताना चाहेंगे आज के हमारे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पारसर
1: और संयोजक हैं शिवनंदन लाल।
0: तो बहनों करते हैं राम
1: राम, राम।

0: अभी हमारी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजने को है, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी व अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की

0: आज तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India. Mr. Modi exuded pride that India achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dunagiri, INS Sanchodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. The Prime Minister was pleased to note that everything is indigenous from the design to the manufacturing of these ships. The Prime Minister stated that the DRDO also successfully tested an indigenous long-range land attack cruise missile. He noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies. The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. This time, diverse yoga events were held at over 2,500 locations across the globe. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India topped the medals tally.
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते। इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: The Prime Minister also spoke about the importance of the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, which provides an insurance cover of 2 lakh rupees to a person's family in the event of an unfortunate death. On the subject of cleanliness, Mr. Modi gave the example of some women from Byabara in Rajgarh district of Madhya Pradesh who resolved to remove plastic waste scattered around the area. Gradually, this effort expanded and the collected plastic began to be converted into eco bricks. Today, these eco bricks are being used to beautify public spaces. Concluding his address, the Prime Minister stressed on water conservation, saying that every single drop of rainwater must be saved. He said the momentum of Catch the Rain campaign should not slacken. In some other news, bilateral talks are underway between Prime Minister Narendra Modi and President of Seychelles, Patrick Hermione, in Victoria, the capital city of Seychelles. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Earlier, he was given a guard of honor at the State House with President Hermione. Prime Minister Modi's

0: scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Later, he will attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honor. The security situation in West Asia has deteriorated sharply after the fragile US-Iran ceasefire effectively collapsed, with both sides launching fresh military strikes over the past several hours. US said it carried out airstrikes against 10 Iranian military targets near the Strait of Hormuz after accusing Tehran of attacking a commercial oil tanker with a drone. US President Donald Trump warned that further violations could trigger a much broader military response. And Lionel Messi becomes the first to score in seventh consecutive FIFA World Cup match as Argentina beat Jordan 3-1 in its Group J finale today. It means Messi has been scoring at least one goal in each of his last seven World Cup matches he played. The Jordan goal was the seventh straight match in that scoring streak. Messi came off the bench to score from a free kick in the 80th minute, extending his men's World Cup record to 19 goals. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। समय हुआ है दोपहर के 1:10 और 15 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है एक ही फिल्म से। आज के कार्यक्रम में आपकी दोस्त तृप्ति जौहरी लेकर आई है एक बेहद खूबसूरत एक्शन ड्रामा फिल्म कारण अर्जुन। 1995 में इस फिल्म ने जो कमाल किया वो तो आप सभी जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी आज जान जाएंगे और जो जानते हैं उनकी यादें ताजा हो जाएंगी। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन राकेश रोशन ने किया। इस फिल्म में सलमान खान, शाहरुख खान, राखी गुलजार, ममता कुलकर्णी और काजोल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। अमरीश पुरी ने मुख्य खलनायक का किरदार निभाया है, जबकि जॉनी लिवर, अर्जुन, जैक गौर, रणजीत और आसिफ शेख जैसे सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। फिल्म दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपने लालची चाचा के हाथों मारे जाते हैं और फिर बदला पूरा करने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। भाइयों के इस प्यारे से रिश्ते के बंधन से सजी आज की फिल्म है करण अर्जुन।

माँ बेटे के बंधन से सजी ये प्यारी सी डोर के सजी ये कहानी आज की फिल्म करण अर्जुन और इससे सुंदर ये गाना आज का ये बंधन तो प्यार का बंधन है। साथियों ऐसे ही प्यारे से बंधन से बंधा हमारा और आपका रिश्ता इंद्रप्रस्थ चैनल के माध्यम से और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज की फिल्म करण अर्जुन। दोस्तों करण अर्जुन फिल्म 13 जनवरी 1995 को भारत के सिनेमा घरों में जब रिलीज हुई तब उसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इससे भी बड़ी बात इसने 450 मिलियन यानी 20 मिलियन डॉलर की कमाई की उस समय में, जिससे ये एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक फिल्म के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। इसके साथ ही ये उस दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। तो ऐसी फिल्म का गीत सुनना तो यहां बनता है ना।

भाई भंगड़ा ही पाते रहेंगे या उससे भी बड़ी खुशखबरी सुनेंगे आज से, आज की फिल्म से जुड़ी और भी दिलचस्प बातों की, क्योंकि आज की फिल्म है ही ऐसी, क्योंकि वो रही है अपने समय की ब्लॉकबस्टर फिल्म। आज की फिल्म करण अर्जुन, जिसे आप सुन रहे हैं अपने मन पसंद चैनल इंद्रप्रस्थ से, और आज की फिल्म लेकर आई है आपकी दोस्त तृप्ति चौहरी। तो आज की फिल्म करण अर्जुन को 41वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में करण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में सलमान खान और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में राखी सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए भी जीते। तो हमारे किस किस श्रोता को याद आ गए इस फिल्म के चर्चित संवाद, जैसे मेरे बेटे आएंगे जमीन की छाती फाड़ कर आएंगे, करण अर्जुन आएंगे आसमान का सीना चीर के आएंगे। याद आया ना राखी गुलजार का ये डायलॉग? वैसे कौन कौन से डायलॉग्स और सॉन्ग्स आपको आज की फिल्म करण अर्जुन के पसंद है, हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर ipradiodelhi@gmail.com पर। तब तक यहाँ हम एक गीत तो सुन ही लेते हैं।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो श्रोताओं, यहाँ मैं माफ करना बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि समय समय पर आपको जानकारी देना बिल्कुल जरूरी है। जी हाँ, आपके मनपसंद कार्यक्रम एक ही फिल्म से में, जिसे आप सुनते हैं अपने मनपसंद चैनल इंद्रप्रस्थ से। तो आपका कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज की फिल्म है करण अर्जुन। तो

0: मार देते हैं। जब उनके दादा गुजर जाते हैं तो दुर्जन सिंह पैतृक संपत्ति में उन्हें हिस्सा लेने से रोकने के लिए अपने सालों यानी नाहर जो अर्जुन की भूमिका निभाते हैं और शमशेर जो जय गौड़ जिसकी भूमिका निभाते हैं वो करण और अर्जुन को भी मरवा देता है। दुर्गा को सदमा लगता है और वो काली माँ से अपने बेटों को वापस लाने के लिए कहती है। करण और अर्जुन तभी दोबारा पुनर्जन्म लेते हैं। अर्जुन का विजय के रूप में पुनर्जन्म होता है और वो अमीर लड़की सोनिया काजोल से प्यार करने लगता है। उसके पिता सक्सेना यानी रंजीत दुर्जन सिंह के साथ गैर कानूनी कार्य में लिप्त है और साथ ही उसकी शादी उसके बेटे सूरज यानी आसिफ शेख से तय कर दी जाती है, जबकि करण का पुनर्जन्म अजय के रूप में होता है जो सक्सेना के लिए काम करना शुरू कर देता है। करण और अर्जुन को अभी भी पिछले जन्मों में उनकी मौत के बारे में कुछ सपने आते हैं, दुस्वप्न आते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ कुछ उनके साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। सोनिया और सूरज की सगाई की पार्टी में विजय आता है और सूरज पर हमला करता है। अजय को विजय को मारने के लिए भेजा जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है बताऊंगी इस गीत के बाद, क्योंकि काली माँ की कृपा से ही उन दोनों का पुनर्जन्म होता है।
1: खड़गम चक्र गदेषु चाप परिदान शूलं शुण्डे शिर शङ्खं दन्दति करैस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषा।

साथियों, काली माँ की कृपा से उनका पुनर्जन्म तो होता है। आज की फिल्म करण अर्जुन में फिल्म की कहानी हम आपको बता रहे थे, साथ ही उसमें आगे क्लाइमेक्स पर क्या होता है। तो सक्सेना विजय को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन अजय ने अर्जुन को अर्जुन भाग चिल्लाते हुए उसे रोक दिया। ये ऐसा कुछ है जिसे अजय ने अपने पिछले जन्म में विजय से कुछ कहा था। अजय को जेल भेजा जाता है, जबकि विजय बच निकलता है। सूरज से शादी करने के लिए सोनिया को जबरन दुर्जंत के घर ले जाया जाता है। विजय अपने दोस्त जॉनी लीवर के साथ उसे बचाने जाता है। वहाँ सब उसे अर्जुन कहकर बुलाते हैं। वो दुर्गा से मिलता है और उसे अपनी पहली जिंदगी का सब याद आ जाता है। वो अजय को बचाता है और उसे सब बताता है, लेकिन वो उस कहानी को मानने से इनकार कर देता है। लेकिन जब दुर्जन के साले फिर दुर्गा पर हमला करते हैं, उसे भी सब याद आ जाता है। आखिर में अजय और विजय सब गुंडों को मार देते हैं और अपनी माँ

सामने दुर्जन सिंह का कत्ल कर देते हैं। करण अपनी प्रेमिका बिंदिया यानी ममता कुलकर्णी और अर्जुन सोनिया से विवाह कर लेता है। तो ये थी आज की फिल्म करण अर्जुन की कहानी। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ आज की फिल्म की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप कहानी के साथ साथ आज के गाने भी आपको पसंद आ रहे हैं, ये हम आपकी ईमेल से देख रहे हैं। तो साथ में अब शामिल करते हैं आपकी ईमेल्स भी। तो आज की सबसे पहली ईमेल आई है भाई, ये है राधेश्याम देवांगन जी जो लिख रहे हैं इंदिरा नगर भवरपुर से। राधेश्याम देवांगन राधेश्याम देवांगन जी, चंपा देवांगन, आपने सिर्फ इतना ही लिखा है कि हमें एक ही फिल्म के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, आपको ये भी बताना था कि आज आप कौन सी फिल्म सुन रहे हैं तो हमें और अच्छा लगता। तो अगली जो हम ईमेल शामिल करने जा रहे हैं आज के कार्यक्रम में, वो ईमेल हमारी आई है, वो आई है हमारी गुरमीत सिंह जी की। ये लिखते हैं खुशनुमा नमस्ते। तो भाई आपको भी हमारी खुशनुमा नमस्ते। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से आप लिखने वाले हैं हमारे साथ ही। यह अगली ईमेल है पता पलारी छत्तीसगढ़ से, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पूना राम देवांगन, कृष्ण देवांगन, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है एक ही फिल्म से। तो धन्यवाद साथी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और अगले जो हमारे साथी हैं, गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज और पुतरे गुरनेर सिंह, माफ कीजिएगा, और शुभदीप सिंह। फिल्म कभी कभी के गीत के बोल तो माफ कीजिएगा, ये फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम नहीं है। आज हम एक ही फिल्म से में जो फिल्म लेते हैं उसी के गीत सुनवाते हैं। तो ये आप शाम की फिल्म में भेज सकते हैं, शाम के कार्यक्रम में भेज सकते हैं। प्रोग्राम प्रस्तुतकर्ता जी हार्दिक अभिनंदन, ये हमारे साथी हैं अगले एक ही फिल्म से की सुनील पाठक जी। तो ये सुनील पाठक जी, स्थान है अनारकली बाजार जगराव पंजाब से, के तहत फिल्म करण अर्जुन के गीत और कहानी सुन रहे हैं। ये फिल्म अपने जमाने की खूबसूरत फिल्म थी। सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्या मल्होत्रा और दीपिका मल्होत्रा जी। तो धन्यवाद साथी। अगले साथी हैं दिगंबर जैन जी, दिगंबर दर्शन गौड़, माफ कीजिएगा, नमस्कार, शुभ दोपहर, एक ही फिल्म से कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, गाने, जानकारी और रोचक किस्से बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, उत्तम और बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो आपका इस तरह का जो हमें फीडबैक मिला इसके लिए भी धन्यवाद। तो अगली जो ईमेल आई है, ये आई है वीरम गांव गुजरात से, अजीत भावसार, प्रमिला बेन भावसार, और ये लिखते हैं प्रिय आरजे जी, नमस्कार दीदी, फिल्म करण अर्जुन है लाजवाब प्रस्तुति, लाजवाब गीत, धन्यवाद, आपको पसंद आया कार्यक्रम। और ये है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बाटा, नीलम बाटा, निहारिका और वंश बाटा जी। इसके साथ ही है फिल्म करण अर्जुन के साथ जुड़े हुए हमारे साथी हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा जी। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीप, प्रेमजिम गुप्ता और समडील, वहां से हमारे साथी जुड़े हैं समडील नावा पारा से, मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक, श्रीमती अंकुर राघव। नमस्कार दीप्ति जी, तो माफ कीजिएगा साथी, मेरा नाम दीप्ति जी नहीं तृप्ति है, तृप्ति जौहरी है। एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम फिल्म करण अर्जुन के गीत सुन रहे हैं, शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए आप हमारे बधाई अवश्य स्वीकार करें। तो हमने स्वीकार कर लिया। आप हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, धन्यवाद साथी। और अगली जो ईमेल है, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जसवी, सीता और गीता, अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें। तो भाई सुनवा दिए हमने अपनी पसंद के, क्या इस फिल्म के लगभग सभी गीत सुनवा दिए। वडिंग खेड़ा से पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। और इसी के साथ हम एक और मेल शामिल कर लेते हैं क्योंकि अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। नमस्कार मैडम, आज की फिल्म करण अर्जुन पुनर्जन्म पर आधारित, इसके गीत लाजवाब है। सुरेश यादव, अनित यादव और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसके साथ ही हमें और भी जो ईमेल आई हैं,

0: धर्मेंद्र छिपा, क्योंकि समय नहीं है मैं जल्दी जल्दी नाम ले लेती हूँ, सुदर्शन मुखी, दिगंबर गौड़, धर्मेंद्र छिपा क्योंकि आप लोगों ने ईमेल रिपीट की है, स्वर्ण सिंह, सुधाकर यादव, संजय साहू और फरगुन यादव, संतोष मक्कार। तो इन्हीं के साथ आज का कार्यक्रम हमारा यहीं पर समाप्त होता है कि फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे पंजाबी में समाचार।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपड़े मन की बात प्रोग्राम विच भारत दे मेड इन इंडिया C-295 जहाज की पहली उड़ान पूरी होने नाल हवाबाजी खेतर विच वड्डी सफलता हासिल करन दे मान प्रकट कीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते सेशल्स दे राष्ट्रपति पैट्रिक हरमानी विचकार सेशल्स विच दवली गलबात जारी है। देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अज विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण नूं साकार करन विच पिंडां दी केंद्री भूमिका ते जोर दित्ता है। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने मेडिकल उपकरण नेम 2017 विच सोधां दी तजवीज रखी है। ते औरतां दे ICC 2020 क्रिकेट विश्व कप विच अज लंडन च भारत दा मुकाबला आस्ट्रेलिया नाल होएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत ने जून विच हवाबाजी खेतर विच वड्डी सफलता हासिल की थी है, जिस विच मेड इन इंडिया C-295 जहाज ने अपनी पहली उड़ान पूरी की थी है। श्री मोदी ने मान प्रकट किया कि भारत ने इस महीने देश की सुरक्षा ते स्वनिर्भरता नाल जुड़ी सफलता हासिल की थी है। आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम विच राष्ट्र नूं संबोधन करदिआं उन्हां दस्सिआ कि भारत विच अजिहे 40 जहाज बनाए जा रहे ने।
2: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री हाल ही विच कोलकाता विच एक समागम विच शामिल हुए, जिथे INS दुनागिरी, INS संशोधक अते INS अग्रे नूं भारतीय समुद्री फौज दे बेड़े विच शामिल कीता गया सी। उन्हां कहा कि उन्हां नूं इस दी खुशी हुई है कि इन्हां जहाजां दे डिजाइन तों लैके निर्माण तक सब कुछ स्वदेशी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में DRDO ने एक स्वदेशी लंबी दूरी वाली जमीन ते हमला करने वाली क्रूज मिसाइल का सफलता नाल परीक्षण भी किया। इस नूं DRDO प्रयोगशालावां ते भारतीय सनती भाईवाला वालों सांझे तौर ते विकसित किया गया सी। प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बारे भी गल की थी, जिस विच पूरी दुनिया भारत के यत्नां नाल शामिल हुंदी दिखाई दित्ती। उन्होंने अहमदाबाद विच हुई विश्व योगासन चैंपियनशिप का जिक्र किया, जिथे भारत ने समागम विच कुल 114 तमगे जीते, जिस विच सोने के 102 तमगे शामिल ने।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई, इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण विच जनतक हिस्सेदारी दी शक्ति भारत लई एक बहुत वड्डी ताकत है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया विच मौजूदा युद्ध वर्गी स्थिति के मद्देनजर देशवासियों नूं कुछ नुक्तियां ते अपील करन तों बाद जनतक हिस्सेदारी दोबारा दिखाई दित्ती।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की महत्ता बारे भी गल की थी। उन्होंने कहा कि योजना किसी व्यक्ति के परिवार को उसकी बदकिस्मती नाल मौत होने पर 2 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करती।

0: रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स से राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी विचकार सेशल्स विच दवली गलबात जारी है। देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण नु साकार करन विच पिंडां दी केंद्रीय भूमिका ते जोर दिता है। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने मेडिकल उपकरण नियम 2017 विच सोधा दी तजवीज रखी है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंदरूने मुल्क के दिफाई सामान की तैयारी पर तवज्जो मरकूज करते हुए समुंदर से लेकर आसमान तक तेजी के साथ महफूज और खुदकफील बनता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में ही तैयार किए गए हवाई जहाज C-295 की पहली परवाज मुकम्मल होने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने और गैर मुल्की सफर करने से गुरेज करने, नीस कार पूलिंग को फरोग देने की अपनी हालिया अपील के सिलसिले में सरगर्मी के साथ हिमायत करने पर मुल्क के शहरियों के तहत तशक्कुर का इजहार किया। विक्टोरिया में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के सदर पैट्रिक हरमाइनी के साथ दो तरफा बातचीत की है ताकि बाहमी इश्तराक का जायजा लिया जा सके। सरकार ने भारतीय शहरियों से कहा है कि वो सफर से मुतालिक जरूरी दस्तावेजात के बगैर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर न जाएं। मगरबी एशिया में सिक्योरिटी की सूरत हाल बिगड़ गई है। अमरीका और ईरान की अफवाज ने एक दूसरे के खिलाफ फिर से हमले किए हैं और ख्वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप में आज लंदन में ग्रुप ए के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया है कि भारत में बनाए गए C-295 तर्ज के हवाई जहाज की पहली परवाज मुकम्मल होने के साथ ही भारत ने जून के महीने में एविएशन के शोबे में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए वजीर आजम ने बताया कि इस तरह के 40 हवाई जहाज भारत में तैयार किए जा रहे हैं।
2: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: जनाब मोदी ने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि भारत ने इस महीने मुल्क की सिक्योरिटी और खुदकफालत से वाबस्ता कामयाबी हासिल की है। वजीर आजम ने हाल ही में कोलकाता में बहरिया की एक तकरीब में शिरकत की थी जिसमें INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को भारतीय बहरिया के बेड़े में शामिल किया गया। वजीर आजम ने इस बात पर मुसर्रत का इजहार किया कि इन बहरी जहाजों के डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर चीज अंदरून मुल्क तैयार की गई है। वजीर आजम ने कहा कि जून के महीने में ही दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने भी मुल्क में ही तैयार किए गए तवील दूरी के जमीनी हमले से मुतालिक क्रूज मिसाइल की कामयाब आजमाइश की। इसे DRDO की तजर्बागाहों और भारतीय सनत के साझेदार इदारों ने मिलकर तैयार किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत समुन्दर से लेकर आसमान तक तेजी के साथ महफूज और खुदकफील बनता जा रहा है। वजीर आजम ने योग के बैन अलाक्वामी दिन का भी तस्किरा किया जिसमें पूरी दुनिया के लोगों ने भारत की कोशिशों के साथ मिलकर कदम बढ़ाया। जनाब मोदी ने अहमदाबाद में मुनक़िदा आलमी योग आसन चैंपियनशिप का भी जिक्र किया जहां भारत ने सोने के 102 तमगों समेत मजमुई तौर पर 114 तमगे जीते।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की तामीर में अवाम की शमूलियत की ताकत भारत के लिए एक बड़ा असासा है। जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में जंग जैसी सूरत हाल के तनाजुर में कुछ निकात के सिलसिले में जब उन्होंने हम वतनों से अपील की तो ये अवामी शमूलियत फिर से देखी गई। जनाब मोदी ने लोगों से कहा था कि वो कुछ वक्त के लिए सोना खरीद

0: से गुरेज करें, गैर मुल्की सफर पर न जाएं और कारपूल का इस्तेमाल करें। वजीर आजम ने किसानों से भी ये दरख्वास्त की थी कि वो बगैर केमिकल वाली खेती अख्तियार करें, अपने खेतों का तहफ्फुज करें और कुदरती खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जनाब मोदी ने अपनी अपील के सिलसिले में लोगों की हिमायत और हर तरह से सरगर्मी के साथ ताउन करने पर मुल्क के हर शहरी के तई तशक्कुर का इजहार किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: वजीर आजम ने कहा कि सरकार मुल्क भर के करोड़ों कुंबों को तहफ़ुज़ाती ढाल फराहम कर रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुतालिका शख्स को हादसा होने की सूरत में 2 लाख रुपए तक के बीमे की सहूलत मिलती है, जबकि इसका सालाना प्रीमियम सिर्फ 20 रुपए है। मन की बात के इस नशरिये में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तवहुम परस्ती या अंधविश्वास के मौजू पर भी बात की। जनाब मोदी ने बताया कि आसाम में पाए जाने वाले नायाब परिंदे हरगिला को रियासत के बाज़ हिस्सों में किस तरह अशुभ माना जाता था। उन्होंने कहा कि यह हरगिला परिंदा फितरत को साफ रखने में अहम रोल अदा करता है। जनाब मोदी ने कहा कि अंधविश्वास की वजह से उन दरख्तों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगिला के घोंसले होते थे। वजीर आजम ने कहा कि हयातियात उलूम की माहिर पूर्णिमा देवी बर्मन ने अवाम के जहन में पैवस्त इस गलत तासुर को बदलने का अहद किया और ख्वातीन को साइंस पर मबनी हकाइक से वाकिफ कराया। रफ्ता रफ्ता ख्वातीन उनकी मुहिम में शामिल होती गईं और एक बड़ी काया पलट का आगाज हुआ। अपने खिताब के आखिर में वजीर आजम ने पानी की बचत पर जोर देते हुए कहा कि बारिश के पानी के हर कतरे को बचा कर रखना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि कैच द रेन मुहिम की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। विक्टोरिया में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के सदर पैट्रिक हरमेने के साथ 2 तरफा बातचीत की है ताकि बाहमी इश्तराक का जायजा लिया जा सके। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने इलाकाई और बाहमी मफाद के बैन अलाक्वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी को स्टेट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर सदर हरमेने भी मौजूद थे। जनाब मोदी सेशेल्स की कौमी असेंबली से भी करेंगे और वहां रहने वाली भारतीय बिरादरी के लोगों से मिलेंगे। बाद में वजीर आजम एजाजी मेहमान की हैसियत से सेशेल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। मगरबी एशिया में सिक्योरिटी की सूरत हाल बिगड़ गई है। अमरीका और ईरान के दरमियान पहले से ही कमजोर जंगबंदी टूट गई है। दोनों ही मुल्कों की अफवाज एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज के नज़दीक ईरान के 10 फौजी ठिकानों पर फिजाई हमले किए हैं। इससे कबल अमरीका ने ईरान पर एक कमर्शियल तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला करने का इल्ज़ाम लगाया था। उधर ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिका के फौजी ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ चंद घंटों में ही जवाबी कार्रवाई की। ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भेजी गई भारतीय इमदाद वेनेजुएला पहुंच गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस एतमाद का इजहार किया है कि फील्ड अस्पताल यूनिट इमदादी रसद दवाओं और तिब्बी साजो सामान से वहां जलजले से मुतासर इलाकों में इमदादी कोशिशों को तकवीत मिलेगी। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वह कैलाश मानसरोवर यात्रा उस वक्त तक शुरू न करें जब तक कि उन्हें पूरे सफर के लिए तमाम जरूरी दस्तावेजात हासिल न हो जाएं। वजारत ने यह हिदायत नेपाल में फंसे उन भारतीय यात्रियों की जानिब से मदद की दरख्वास्तें मौसूल होने के बाद जारी की है जो निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रवाना हुए थे। आईसीसी खवातीन के T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में आज भारत ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। यह मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اندرون ملک دفاعی سامان کی تیاری پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سمندر سے لے کر آسمان تک تیزی کے ساتھ محفوظ اور خود کفیل بنتا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نے ملک میں ہی تیار کیے گئے ہوائی جہاز C-295 کی پہلی پرواز مکمل ہونے کو اجاگر کیا۔

0: आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने और गैर मुल्की सफर करने से गुरेज करने, नीज कार पूलिंग को फरोग देने की अपनी हालिया अपील के सिलसिले में सरगर्मी के साथ हिमायत करने पर मुल्क के शहरियों के तई तशक्कुर का इजहार किया। और ख्वातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज लंदन में ग्रुप ए के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies. With focus on indigenous defense production, highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft manufactured in the country. In his Man Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asked Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in their final Group A match in London today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Man Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
2: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: मिस्टर मोदी एक्सूडेड प्राइड दैट इंडिया हैज अचीव्ड सक्सेस लिंक्ड टू द कंट्रीज सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस दिस मंथ। ही अटेंडेड एन इवेंट इन कोलकाता रिसेंटली वेयर आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक एंड आईएनएस अग्रे वर इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवीज फ्लीट। Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
2: Kolkata mein INS Dunagiri, INS Samshodak aur INS Agra ko Bharatiya Navsena ke beede mein shamil kiya gaya. In ships ki design aur manufacturing tak sab kuch swadeshi hai. Isi mahine DRDO ne swadeshi long range land attack cruise missile ka bhi सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nandher, Maharashtra, who arranged

0: Asia signed agreements on various subjects, including health, agriculture, finance and space, following delegation-level talks in Victoria. Government asked Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply, with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And an ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in the final Group A match in London today. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
2: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
2: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की, जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय

0: छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
0: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
1: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
1: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
0: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
0: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
1: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है।

0: जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
1: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशेल के संबंधों को सींचा है।
0: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 2:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, रविवार की इस प्यारी दोपहर में चाहे आप घर पर आराम कर रहे हों, परिवार के साथ समय बिता रहे हों या फिर चाय की चुस्कियों के साथ रेडियो में मुझे सुन रहे हों, हम उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बेहद खुशनुमा गुजर रहा होगा। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सबका आज के एक ही कलाकार प्रोग्राम में।

श्रोताओं, आज हम हिंदी सिनेमा की उस खूबसूरत अदाकारा की बात करेंगे जिन्होंने 80 और 90 के दशक में हर किसी को अपना दीवाना बना लिया था। इनकी दिलकश मुस्कुराहट, मासूम चेहरा और शानदार एक्टिंग ने इनको बॉलीवुड में बहुत नेम और फेम दिया। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पद्मिनी कोल्हापुरी की। इनकी लाइफ और करियर की हर बातों से आपको हम रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इनकी फिल्म साजन बिना सुहागन का ये खूबसूरत सा गीत, जिसमें इन्होंने जुबली कुमार यानी लीजेंडरी राजेंद्र कुमार के साथ स्क्रीन शेयर किया था। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

जी हाँ श्रोताओं, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं पद्मिनी कोल्हापुरी, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी, और आप जुड़े हुए हैं इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। श्रोताओं, पद्मिनी कोल्हापुरी का जन्म मुंबई में 1 नवंबर 1965 में हुआ था। इनके पिता पद्मीनाथ कोल्हापुरी एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, और माँ निरुपमा कोल्हापुरी एयर इंडिया एयरलाइंस में काम करती थी। पद्मिनी कोल्हापुरी की दो बहनें हैं, बड़ी बहन शिवांगी कोल्हापुरी और छोटी बहन तेजस्विनी कोल्हापुरी। बड़ी बहन शिवांगी कोल्हापुरी भी एक एक्ट्रेस हैं जो फेमस एक्ट्रेस शक्ति कपूर की वाइफ हैं। वहीं छोटी बहन तेजस्वी कोल्हापुरी भी एक एक्ट्रेस हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की मौसी हैं। शायद आप नहीं जानते होंगे कि पद्मिनी कोल्हापुरी लीजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर और आशा भोसले की भतीजी जी भी हैं। आगे हम बात करेंगे इनके करियर से जुड़ी कुछ दिलचस्प किस्सों की, पर वक्त हो गया है फिल्म प्यार झुकता नहीं है का ये दिल को छू लेने वाला सॉन्ग सुनने का।

दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पद्मिनी कोल्हापुरी ने जब फिल्मों की दुनिया में पहला कदम रखा उस वक्त वो महज 7 साल की थी। इसके बाद इन्होंने कामयाबी का ऐसा रास्ता चुना जिसका हर कोई कायल हो गया। महज इस छोटी सी उम्र में पद्मिनी वो कमाल कर रही थी जो आज तक कोई नहीं कर पाया। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने फिल्म एक खिलाड़ी 52 पत्ते से शुरुआत की और 7 फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया। फिल्म ड्रीम गर्ल, साजन बिना सुहागन और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी हिट फिल्मों से इनके करियर का आगाज हुआ। आगे चलकर महज 15 साल की उम्र में पद्मिनी कोल्हापुरी को रिवेंज ड्रामा फिल्म इंसाफ का तराजू के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। वहीं 17 साल की उम्र में ऋषि कपूर के साथ रोमांटिक ड्रामा फिल्म प्रेम रोग के लिए इन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। दोस्तों, साथ ही फिल्म आहिस्ता आहिस्ता के लिए इनको फिल्म फेयर का स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिल चुका है। पद्मिनी कोल्हापुरी को अपने शुरुआती करियर में ऐसी कामयाबी मिलना सचमुच काबिले तारीफ है। आगे आपको इनकी फिल्मों से जुड़े और भी कई किस्से सुनाएंगे। फिलहाल फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का ये एवरग्रीन सॉन्ग हम आपको सुनवाते हैं।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी? नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके?
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: आकाशवाणी दिल्ली के इन द प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं पद्मिनी कोल्हापुरी, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, अपने टैलेंट के बलबूते पद्मिनी कोल्हापुरी 80 के उस दशक में टॉप की हीरोइनों में शुमार हो गई थी। अपने 40 साल के लंबे करियर में इन्होंने करीब 75 फिल्मों में काम किया और 3 फिल्मफेयर अवार्ड भी जीते। पद्मिनी कोल्हापुरी ने एक से बढ़कर एक एक्ट्रेस के साथ काम किया। राजेश खन्ना के साथ फिल्म सौतन, अनिल कपूर के साथ फिल्म वो 7 दिन, ऋषि कपूर के साथ फिल्म ये इश्क नहीं आसान जैसे शानदार फिल्मों में इनको एक स्टेबलिश एक्ट्रेस बनाया। आज भी पद्मिनी कोल्हापुरी बहुत सी फिल्मों में बतौर सहायक भूमिका निभा रही हैं। फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में इन्होंने शाहिद कपूर की मां का किरदार निभाया था। वहीं पीरियड ड्रामा फिल्म पानीपत में भी इन्होंने एक मजबूत महिला की मजबूत भूमिका निभाई थी। आगे आपको पद्मिनी कोल्हापुरी जी के हिडन टैलेंट के बारे में भी बताएंगे, उससे पहले सुनिए इनके फिल्म सौतन का ये शानदार सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इन द प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं खूबसूरत अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरी। श्रोताओं, आपके बहुत सारे मेल आ गए हैं और आखिरी सेगमेंट में बढ़ने के पहले मैं पढ़ लेती हूँ आपका मेल। ये पहला मेल आया है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष, चैतन्य मेघा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना का। और ये है साहजी, श्रीमती नंदा, हनुमान बोटले, उत्तम जमदई से, हिंगोली महाराष्ट्र से। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला मेल, जो कि है गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजाबाद से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप गुलराल, अभिराज और गुन्नूर सिंह, शुभदीप सिंह। और आगे बढ़ते हैं, ये हैं हमारे श्रोतागण, ये लिखते हैं कि कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम फिल्म अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी की फिल्मों के गीते सुन रहे हैं। शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए हमारी बधाई अवश्य ही स्वीकार करें। जरूर धन्यवाद आपका। और आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं उसके लिए आप सबका धन्यवाद। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी का है मेल ये। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा और पूजा परिहार है, ये लिखते हैं बेहतरीन जानकारी हमें मिल रही है, बेहतरीन प्रस्तुति भी है, धन्यवाद। नलेश्वर नगर से महाराष्ट्र से पीएस और निर्मला और विशाल जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। और साउथ एक्सटेंशन से गुरमीत सिंह और मीता जी हैं हमारे साथ। और ये हैं वेरी हैप्पी एंड हेल्दी संडे, गुड आफ्टरनून, वी आर लिसनिंग प्रोग्राम एक ही कलाकार, टुडे यू आर डिस्कस ऑन एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी, सॉफ्ट स्वीट प्रेजेंटेशन, रेयर एंड वैल्यूएबल फिल्म इन्फॉर्मेशन, सुपर सॉन्ग सिलेक्शन, थैंक यू सो मच। ये हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। और ये है पद्मिनी कोल्हापुरी एक अच्छी कलाकार है, बिल्कुल सही बात। ये है नवी हसन जी और

हम आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलियारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा का, और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, और ये हैं पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पद्मिनी कोल्हापुरी जी की। हिंदी फिल्मों के अलावा पद्मिनी ने मराठी सिनेमा में भी काफी काम किया है। कुछ साल कैमरे से दूर रहने के बाद 2004 में पद्मिनी एक्टिंग में वापस लौटी और कई मराठी और हिंदी फिल्मों में काम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं पद्मिनी कोल्हापुरी एक्टिंग के अलावा सिंगिंग भी करती हैं। पद्मिनी ने बचपन से ही संगीत सीखा था। इन्होंने 1973 में फिल्म यादों की बारात में अपनी बहन शिवांगी के साथ कोरस गाया था। इसके अलावा फिल्म किताब, दुश्मन, विधाता, सात सहेलियां, हम इंतजार करेंगे जैसी फिल्मों में भी आवाज दी थी। बहुत कम लोग को ये पता होगा कि पद्मिनी कोल्हापुरी फेमस सिंगर बप्पी लहरी के साथ म्यूजिक लवर्स नाम की म्यूजिक एल्बम भी बना चुकी हैं। बचपन से ही संगीत में माहौल में पली बड़ी पद्मिनी कोल्हापुरी का संगीत के प्रति प्यार होना लाजमी है। श्रोताओं, पद्मिनी कोल्हापुरी ने मात्र 21 साल की उम्र में शादी कर ली थी। दरअसल फिल्म ऐसा प्यार कहाँ की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता प्रदीप शर्मा से हुई और चंद मुलाकातों के बाद 1986 में इन्होंने शादी कर ली। फिर 1990 में इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम प्रियांक शर्मा है, जो कि एक एक्टर है और फिल्म सब कुशल मंगल नाम की फिल्म में काम कर चुका है। 2022 में पद्मिनी कोल्हापुरी को आउटलुक इंडिया की 75 बेस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस की लिस्ट में रखा गया था। अपनी मासूमियत से दर्शकों को दीवाना बनाने वाली पद्मिनी कोल्हापुरी वाकई एक सच्ची और सशक्त अभिनेत्री हैं। इनकी एक्टिंग के जुनून ने अब तक इनको बॉलीवुड में एक्टिव रखा है। बहुत से रियलिटी शोज में और वेब सीरीज में भी ये काम कर चुकी हैं। तो चलिए चलते हैं और कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं।

0: दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगले शो में आपके साथ ऐसी ही किसी शानदार आर्टिस्ट की लाइफ से जुड़ी दिलचस्प बातें शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिएगा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। सुनते रहिएगा गीत और गुनगुनाते रहिएगा संगीत सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।
1: और फिर क्या होगा?
2: पार्टियां, दावतें,

0: ब्रजमात्री कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदना जोहरी को
1: और वंदना को
0: प्रेम भरो अभिवंदन। बहना,
2: हाँ सखी,
0: जरा बताओ तो कि आज के कार्यक्रम में हम कहाँ लेके आए हैं।
2: सखी, आज हम अपने श्रोतान को कवि गोष्ठी सुनवाएंगे।
0: बहना, परमोई कवि गोष्ठी थे, एक बात याद आई है।
2: कहा?
0: कल 29 जून को संत कबीर दास जयंती हूँ तो मनाई जाएगी। और संत कबीर तो हिंदी साहित्य में अपने गूढ़ दोहे और गीत के काजे व्यापक रूप से प्रसिद्ध भये।
2: सखी, संत कबीर को उन महान संतन में गिनो जाए जिन्होंने कर्म कांड को घोर विरोध कियो और सर्व धर्मन को सम्मान करत भये अपने को राम और अल्लाह को पुत्र बतायो।
0: बिल्कुल, बिनन ने कहो है कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। बिनन ने कबीर पंथ की स्थापना करी और याको अनुकरण अनेक समुदाय ने कियो। सिख समुदाय के पांचवे गुरु गुरु अर्जुन देव ने संत कबीर के लेखन को संकलित करके अपने धर्म ग्रंथ में शामिल करियो।
2: हाँ सखी, संत कबीर की विरासत कबीर पंथ के माध्यम से सदैव जीवित रहेगी और लोगन को प्रेरणा देती रहेगी।
0: बिल्कुल,
2: संत कबीर की सभी कविताएं और गीत कई भाषाओं में मौजूद हैं, जिन्हें दोहे, श्लोक और साखी कहो जाए।
0: और ब्रज भाषा में बिनन ने शब्द रची जामे आध्यात्मिक और दार्शनिक पद हैं, जो भक्ति, ज्ञान और प्रेम को संदेश देवे बारे हैं। बहना,
2: हाँ सखी,
0: जैसो भगवत गीता में कहो गयो है ना कि जो सुख दुख में, मान अपमान में, सब परिस्थिति में समान है, इंद्रिय विषंते मुक्त है, सबको संभाव दृष्टि ते देखे, वही मोक्ष को अधिकारी है और याई भाव को मोक्ष कहो गयो है। तो संत कबीर दास की एक ऐसी ही रचना मोए याद आ रही है जो कछु ऐसो ही भाव प्रकट कर रही है।
2: तो सखी सुनवाओ अपने श्रोतान को।
0: बिल्कुल, तो श्रोताओ, रविंद्र साठे के स्वर में लियो सुनो कबीर दास जी की जे भावपूर्ण रचना।

0: सोजन।
1: सखी, कबीर की या रचना के बाद अब हम अपने श्रोतान को काव्य गोष्ठी सुनवा रहे हैं।
2: या मैं प्रतिभागी कौन कौन है जेहू तो बता दियो श्रोतान को।
1: हाँ सखी, या मैं प्रतिभागी कवि हैं डॉक्टर ठाकुर दास शर्मा दिनकर, श्री नवाब केसर, श्री किशोर कुमार कौशल, श्री दरियाब सिंह राजपूत और श्री कुमार दत्त शर्मा। तो आओ श्रोताओ, या कवि गोष्ठी को आनंद लियो।
3: राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भैया आज जा ब्रजमाधवी कार्यक्रम में कवि गोष्ठी को आयोजन कियो जा रहे हो है, तो सर्वप्रथम जा गोष्ठी को प्रारंभ में एक छंद सो कर रहे हूँ।
4: स्वागत है भैया।
3: गणपति वंदना को छंद देखो,
5: बहुत बढ़िया,
4: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
3: देव न के देव महादेव के सपूत आप, गौरी के दुलारे प्यारे गज मुखवारे हो।
4: क्या बात है।
3: गेहूं वरन पे अरुण है बसन धा।

0: श्वेत पटका में आप लागो सुकुमारे हो।
1: क्या बात है, क्या बात है भैया, क्या बात है
2: डॉक्टर साहब,
0: क्या ऊंचो है ललाट वापे मुकुट विराट बंदियो,
1: बहुत
0: माथे पे तिलक गले मोती माल डारे हो। गणपति वंदना के प्रारंभ कियो है जो हमारी गोष्ठी सफल होए गणपति के पासों। और मैं सर्वप्रथम आवाज दे रहे हूँ कुमार दत्त कुंवर जी को, आपको स्वागत है कुमार दत्त कुंवर जी।
1: स्वागत है भैया।
3: सुने वालन को राम राम। आप सबने ब्रज भाषा में बहुत से गीत सुने होंगे, भजन सुने होंगे। ये ब्रज भाषा इतनी मीठी भाषा क्यों है, याई के ऊपर एक मैंने गीत लिखो है।
1: स्वागत है भैया।
3: कि ब्रज को मीठो मीठो बोल, ब्रज को मीठो मीठो बोल, जैसे शहद दियो घोर, भाषा ऐसी दुनिया में नाए कौ और। ब्रज को मीठो मीठो बोल, जैसे शहद दियो घोर, भाषा ऐसी दुनिया में नाए कौ और। कान्हा ने ब्रज भूमि पे गैया चराई हैं, ब्रज की मीठी धुन पे बांसुरी बजाई है। जैसे लगे सुहानी भोर, जैसे वन में नाचे मोर, जैसे पवन मचावे शोर, जैसे मिस्री दई घोर, भाषा ऐसी दुनिया में नाए कौ और।

0: है जैसे दुल्हन करे श्रृंगार, जैसे रस की उड़े फुहार, जैसे गर्मी में सीरी ब्यार, जैसे माँ बेटी को
1: प्यार,
0: प्यार।
1: बहुत
0: भाषा
1: बढ़िया।
0: ऐसी दुनिया में नाए कऊ और
1: और
0: बांके बिहारी को ऐसो रंग छावे है, जो भी आवे ब्रज में ऊ राधे राधे गावे है। जैसे चिड़ियन को हो
1: शोर,
0: शोर, जैसे मन में
1: हाय
0: उठे
1: हाय, क्या
0: हिलोर,
1: बात है, क्या
0: जैसे
1: बात है
0: पतंग
1: भैया
0: में
1: जी,
0: छोड़ी डोर,
1: डोर बहुत
0: जैसे
1: सुंदर, बहुत
0: डोर को
1: सुंदर,
0: ना हो
1: छोर,
0: छोर।
1: क्या बात है
0: भाषा
1: भैया जी, ऐसी
0: ऐसी दुनिया में
1: क्या बात है,
0: नाए
1: वाह
0: कऊ
1: वाह
0: और।
1: बहुत
0: वाह
1: सुंदर,
0: वाह
1: बहुत
0: वाह वाह,
1: सुंदर, क्या
0: धन्यवाद
1: बात,
0: जी।
1: कमा
0: ऐसी मिठलोनी
1: हाँ,
0: भाषा, माखन टपका दियो साहब कुमार
1: बहुत
0: दत्त कुंवर जी ने,
1: बहुत सुंदर,
0: बड़ा
1: धन्यवाद जी,
0: आनंद कर
1: आनंद
0: दियो
1: आया
0: कुंवर जी।
1: भैया
0: इन
1: जी,
0: 4 पंक्तियों से आवाज दे रहे हूँ।
1: स्वागत है, वाह
0: सखियां
1: हाँ
0: अखियां
1: हाँ
0: ऐसी अटकी,
1: या
0: जा
1: माखन,
0: माखन चोर चकारे थे, माथे पे मुकुट कानन कुंडल, नैना विशाल कजरा देते। समझाई बहुत,
1: प्लीज,
0: समझाई बहुत
1: और
0: और
1: बचाएं
0: बचाई
1: बहुत,
0: बहुत, समझ ही नहीं नेक संहारे थे, अब
1: हाँ
0: लागी रहो दिन रात प्रिय वृंदावन बंसी वाले।
1: बात,
0: अब जा गोष्ठी में नवाब केसर जी को, केसर की महक आवेगी
1: स्वागत है,
0: जिनके
1: स्वागत है भैया
0: इनके
1: जी,
0: गीतन में, इनके चंदन में। तो एक बार कुमार नवाब केसर जी स्वागत है जी।
1: सब भैयन को राम राम।
0: राम राम जी, राम
1: आज
0: राम,
1: तो भैयाओ आपकी सेवा में एक लोकगीत लायो हूं,
0: वाह
1: बहुत
0: स्वागत,
1: बढ़िया,
0: बहुत
1: बहुत
0: बढ़िया,
1: स्वागत है भैया।
0: ले
1: आ गए हो बदराकारो, ब्यार चले पुरवाई सनासन,

0: झरझर मेहा झरे चुमासो बाड़े बिल जराए जवासो अंगड़ाई ले मोरा नाचे लागे प्यारो प्यारो लियो आ गयो बदिरा कारो लियो आ गयो बदिरा कारो अरे घोर घटा अंबर पे छाई झूला झूले धिया बहुरिया ले ले झोटा भारो
1: कमाल का
2: बहुत बढ़िया।

0: चल,
1: जय जय जय जय,
0: हरो हरो धरती को आंचल बरसाने कर डारो,
2: कारो
0: अरे प्यार चले पुरवाई सनासन हाले जिया हमारो लिवागे बदे।

0: कारो।
1: और अभी आए गयो बदरा कारो, सुनारे नवाब केसर जी। रस परिवर्तन करवे के लिए मैं आवाज दे रहे हूँ हमारे बहुत ही मधुर कवि किशोर कुमार कौशल जी को।
2: स्वागत है
1: इनके शब्दन में कौशलता है, भावन में कौशलता है। स्वागत है कौशल।
3: स्वागत है।
4: ये जेठ को महीना है और जेठ के महीना के आखिर में संत कबीर की जयंती आ रही है। सो इतने बड़े संत की याद में मैंने एक पद रचो है।
3: स्वागत है जी।
4: के

0: और सूत कपास को तानो बानो, सूत कपास को तानो बानो, जे बिन की जागी
1: बाबा
0: संत कबीर भये एक

0: निर्मल संत कबीर।
1: ये है किशोर कुमार कौशल। कबीरदास जी की वाणी, कबीरदास जी के सिद्धांत, अंधविश्वासन की काठ, सबे इनके पदन में सुनी।
2: क्या बात है।
1: पदन की बात आई तो मेरे हूँ मन में प्रेरणा मिली मोए किशोर जी से, तो मैं एक पद सुनाऊं।
3: स्वागत है, स्वागत है।
1: संतन की बात आई कबीर की तो संतन में मीरा हुआ आवे
3: जी।
2: बिल्कुल।
1: तो मीरा की बात या पद में देखो।
3: बिल्कुल, स्वागत है साहब।
1: मीरा

0: बन उपवन में करत कीर्तन ठिठुरत रात बितानी, हिंसक पशु दूर लख भाजे चाटत पामृग रानी, चाटत पामृग रानी, मीरा गिरधर की दीवानी।
1: बहुत सुंदर जी।
0: तन मन कियो कृष्ण को अर्पण, तनक नहीं घबरानी, भोग विलास ठकुराई राना की रजधानी, राणा की रजधानी मीरा।
1: बहुत बढ़िया।
0: गिरधर।

संगत संतन की भावत है, जय संगत संतन की भावत है, दो कुल लाज दीवानी मीरा गिरधर की दीवानी मीरा गिरधर।

0: विष को प्यालो राना भेजो तनक नहीं सकुचानी। हरी अरे पन कर पी गई मीरा जैसे घट घट पानी, मीरा गिरधर की दीवानी। धन्य गुरु रैदास आपको ज्ञान भक्ति रस खानी, चरण परो ब्रज कन सतगुरु की तारों में अज्ञानी। मीरा गिरधर की दीवानी,
1: जितनी मीरा गिरधर की दीवानी ऐसी हमारे राजपूत जी भी गिरधर के दीवाने।
0: और मैं वरिष्ठ कवि भागवताचार्य हूँ वो
2: जी जी।
0: आज स्टूडियो में आए भैया हमारा सौभाग्य, ब्रजमंडल वासियों उनको सौभाग्य। तो मैं डॉक्टर ठाकुरदास शर्मा दिनकर जी को आवाज दे रहा हूँ, स्वागत है।
3: ब्रज भाषा के प्रेमी सब भैया बहनों को हमारी राधे राधे राधे
1: राधे राधे राधे राधे
0: स्वागत है।
3: भैया इन तीन कवि महोदय ने आपके समक्ष अलग अलग भाव के या तो गीत प्रस्तुत करे या पद प्रस्तुत करे। मैं सोच रहा हूँ कि एक नई विधा तो आप दोहन को आनंद ले और दोहन को शीर्षक रखो है मैंने दोहन में सुभाषतानी। हाँ कछु नीति प्रद बातें हैं दोहन के माध्यम से आप लोगों को सुना रहे हूँ। प्रथम ज्ञान गुरु शास्त्र सो
2: जी
3: और दूजो सखा बताए
2: जी,
3: तीजे सीख समाज की अनुभव शेष
1: शिकार।
3: अब गहनों का है शरीर को क्या चीज कहाँ शोभा दे या को वर्णन करने की कोशिश करी है
2: जी।
3: कर को भूषण दान है और मुख को भूषण ज्ञान, शास्त्र कर्ण भूषण कहें, शास्त्र कर्ण भूषण कहें, मन को भूषण ध्यान,
1: मन को भूषण ध्यान,
2: मन को भूषण ध्यान
4: लिखा है। बात कही
1: है।
3: अब तन और मन के स्वस्थ रखने के खातिर हमें कहा करना चाहिए या दिशा में कभी को विचार है। तन जितनो घूमत फिरे, तन जितनो घूमत फिरे और सेहत को अनुकूल, स्वास्थ्य सही रहेगा, सेहत को अनुकूल, मन ठहरो अनुकूल है, चंचल होए प्रतिकूल, चंचल होए प्रतिकूल।
4: बहुत सुंदर
1: क्या बात है।
3: अगले दुहा में देखो बंधुओं के कठिन परिश्रम और जीवन में आने वाले दुख दोनों को आपस में सामने दिखाए हुए। कठिन परिश्रम और दुख जीवन भर है खास, कठिन परिश्रम और दुख जीवन भर है खास, दुख मन को निर्मल करत श्रम सो होत विकास, दुख मन को निर्मल करत श्रम सो होत विकास। अब जीवन हम कैसे सफल बना रहे अपनों या विषय में विचार सुनो कवि के जीवन सफल बनाए बे और मंत्र एक गहले, कदम भले ही फिसलिए जुबान फिसल, कदम भले ही फिसलिए जुबान फिसलन देव।
2: क्या बात है।
3: जीवन में लोग मांगते हैं, मंगताओं को कछु न कछु देना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। जो मांगे ताई दीजिए और मेटो उर संताप, मेहर भई दातार की और मंगता करे न आप, मेहर भई दातार की मंगता करे न आप।
4: बहुत सुंदर।
3: जीवन और बांसुरी की समानता को वर्णन किया है एक दुआ में। जीवन तो एक बांसुरी और तामे छेदन एक, जीवन सरगम साधके और पावहु राग अनेक, जीवन सरगम साधके पावहु राग अनेक। और भगवान शंकर जी के विषय में, मथत सिंधु विष जब मिल्यो और पियो न देव अदेव
2: जी,
3: न तो सुर न पियो न असुर न पियो, मथत सिंधु विष जब मिल्यो पियो न देव अदेव, काल कूट विष पियत ही शंभु भये महादेव, काल कूट विष पियत ही
2: शंभु भये।

0: महादेव
1: और हमारी आपकी सवन की एक जैसी अवस्था है
0: जी।
1: धन जोड़त जीवन गयो और धन धन जप्यो अधीर जिन जोड़ो हरि भजन धन ओ कृपा करी रघुवीर कृपा करी रघुवीर। अब परमार्थ को विशेषता सुनो पर हित मेघा बरसते ओ वृक्ष करें फलदान पर हित गिर नदिया बहे ओ पर हित सो
2: कल्याण।
1: अब क्षमा
3: बड़ी
1: महत्ता पे क्षमा धर्म तप यज्ञ सी ओ क्षमा सत्य अरुदान क्षमा धरा गौरव अटल क्षमा करति कल्याण क्षमा।

0: कहत संसार गाने वाले युवती कहत संसार। राधे अब भाई लोगों आप सब प्रार्थना करें कि हमारे बीच जो जैसे तुलसीदास जी कहें नट मरकत एव समय नचावत राम खगेश वेद असगावत। हम सब कवि बंधुन को जोड़े वारे हमारे भैया जो कवि हम संचालन कर रहे हैं निवेदन दरियाव सिंह जी सो कि दरियाव सिंह जी अपनी सुंदर मधुर रचना सुनावे। स्वागत है
1: आप सबन को नमन करते भाई। आज हमारे संतति बुजुर्गन को बड़ा सम्मान कर रही है साहब।
0: कैसे
1: सम्मान ऐसा कर रही है कि वृद्धाश्रम मन में भेज रही है।
2: सही है।
1: सम्मान है रो साहब। एक गीत में प्रयास देखो
3: बहुत बढ़िया बहुत अच्छा।
1: मात पिता की करी न सेवा संबंधन को तोड़ गयो।
0: क्या बात है।
1: कलयुग को मेरो सरवन बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ गयो। कलयुग को मेरो सरवन बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ गयो। बड़े प्यार ते बहु बेटा ने अपनो फर्ज निभायो है। बड़े प्यार ते बहु बेटा ने अपनो फर्ज निभायो है। दो जोड़ी कपड़ा धर मेरे तीर्थ कराए वे लायो है। भूख प्यास की बात न पूछी भूख प्यास की बात न पूछी सांझ भई मुंह मोड़ गयो। कलयुग को मेरो सरवन बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ गयो। लाड़ प्यार ते पाल पोस के या को खूब पढ़ायो। सोनो चांदी गिरवी धर के या को ब्याह रचायो। ऐसे दारुण दुख दिए मुए ऐसे दारुण दुख दे मुए तन सो प्राण छोड़ गयो। कलयुग को मेरो सरवन बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ गयो। वृद्धाश्रम में छोड़ गयो। झर झर आंसू झरे आंखों होठ तरस रहे पानी को। झर झर आंसू झरे आंखों होठ तरस रहे पानी को। बूढ़ो बाबा वृद्धाश्रम को पूछे मेरी कहानी को। माथो धुन धुन रात बीत गई आप चैन सो पड़ गयो। कलयुग को मेरो सरवन बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ गयो। वृद्धाश्रम में छोड़ मात पिता की करी न सेवा संबंधन को तोड़ गयो। भूख प्यास की बात न पूछी सांझ भई मोह मोड़ गयो। सांझ भई मोह
3: मोड़।
1: और भैया अभी आप ब्रज माधुरी कार्यक्रम में सुन रहे कवि गोष्ठी जहाँ कवि गोष्ठी में भाग लेवे वाले कवि है डॉक्टर ठाकुरदास शर्मा दिनकर नवाब केसर जी कुमार दत्त कुमार जी किशोर कुमार कौशल जी। यह गोष्ठी को हम यही विराम दे हैं। राधे राधे जय श्री कृष्णा
3: जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा।
4: श्रोताओ अभी आपने यह कवि गोष्ठी को आनंद लिया और यह गोष्ठी को संचालन कर रहे थे दरियाब सिंह राजपूत ब्रजकर्ण। अब यही के संग ही हमारो आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम यही सम्पन्न हो गए है। मोको यानी के वंदना को
5: और मोको यानी वंदना जौहरी को जाए वे की अनुमति देव। नमस्कार।
4: कार्यक्रम प्रस्तुत

0: नमस्कार प्यारे बच्चों और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारा प्यार भरा शो जिसका नाम है रेडियो किड्स और मैं हूँ आपकी दोस्त अंजलि। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत सारी मौज मस्ती इस कार्यक्रम में और मेरे साथ हैं प्यारे प्यारे और छोटे छोटे बच्चे। तो एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम जैनब है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ।
2: मेरा नाम पंचल गुप्ता है, मैं 3री कक्षा में पढ़ता हूँ।
3: मेरा नाम अलीशा यादव है और मैं 2nd D में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम आयुष तिवारी है, मैं 2री क्लास में पढ़ता हूँ।
0: तो हमने इनका नाम तो जान लिया, लेकिन इससे पहले कि हम आज का ये मजेदार सफर शुरू करें, चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: क्राफ्ट में क्या क्या बनाते हो आप?
1: जैसे कोई ग्रीटिंग कार्ड या और भी बहुत वगैरह चीजें।
0: हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो चलो मैं ना आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ गुड्डू की। तो एक बच्चा था गुड्डू, उसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। एक दिन जब वो पतंग उड़ाने लगा तो उसकी पतंग फट गई और वो रोने लगा। जब वो अपनी दादी माँ के पास गया तो उसकी दादी माँ ने कहा, इसमें रोने की बात नहीं है क्योंकि हमारे हाथों में होता है
2: जादू
0: और हम इन हाथों की मदद से अब एक नई पतंग बना लेंगे। जैसे ही उसने अपनी दादी माँ के साथ नई पतंग बनाने की कोशिश की तो उसने नई पतंग बना ली और उसे बहुत मजा आया क्योंकि उसने अपने हाथों के इस्तेमाल से क्या बनाई,
2: पतंग।
0: तो जब भी हमारा कोई सामान टूट जाए या खो जाए तो हमें कभी भी दुखी नहीं होना, रोना नहीं, करना क्या है,
1: उसे फिर से बनाना।
0: तो अब आप घर जाके क्या क्या बनाओगे?
1: ग्रीटिंग कार्ड
0: और
1: एरोप्लेन।

0: ये गीत सुनकर तो बहुत ही मजा आया। अच्छा तो ये बताओ बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हाथों में कितना जादू होता है?
1: कैसे?
2: वो कैसे?
0: क्योंकि इन हाथों की मदद से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। आप क्या क्या बनाते हो हाथों की मदद से? जैसे कि गुड़िया, नाव और
2: ड्राइंग, पैटर्न क्राफ्ट,
0: आर्ट एंड क्राफ्ट।

0: सुनाओगे?
1: आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ, बिल्ली। म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ, किसको छोड़ू किसको खाऊं, एक तरफ है दूध मलाई एक तरफ है चुईया आई, म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ। धन्यवाद।
0: जोरदार तालियां। आपने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई। और आप पंशुल, आप हमें क्या सुनाने वाले हो?
2: मैं आपको चींटी की कविता सुनाऊंगा। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम कर आग सुनाती चींटी, कड़ी धूप या वर्षा दाना चुनकर लाती चींटी, सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी, छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी, नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, काम बड़े करके दिखलाती जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी, मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी।
0: पंशुल और जैनब दोनों ने ही हमें जानवरों पे कविता सुनाई, तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है आपसे पूछने के लिए। क्या मैं पूछूं?
3: हाँ दीदी।
0: तो बताओ, ऐसा कौन सा जानवर है या ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि दिन में सोता है और रात में जागता है?
3: उल्लू।
4: उल्लू।
0: उल्लू। चलो, हमारे सभी बच्चों को इसका जवाब पता था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के। आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 MHz पर हमारा शो रेडियो किड्स, जिसमें मैं हूँ आपकी दोस्त अंजलि, और आज आए हैं हमारे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि आज हमारे इस कार्यक्रम को और ज्यादा मजेदार बना रहे हैं अपनी कविताओं से। तो चलिए अब चलते हैं हमारे दोस्त आयुष के पास। आयुष, आज आप हमें क्या सुनाओगे?
5: बादल के ऊपर।
0: तो सुनाइए।
5: काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, कैसे बादल आकर छाए, हवा पकड़कर लाती सरसर जाए, जैसे काले कंबल लगते कितने सुंदर बादल, पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े बन जाते, हाथी के जोड़े नन्हे जलकर गए, भाप उस भाप से ठंडक पाई, बादल बढ़ से बरखा आई।
0: अच्छा आयुष, ये बताओ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है स्कूल में?
5: मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश।
0: अच्छा, इंग्लिश पसंद है, ऐसा क्यों?
5: उसमें अलग अलग वर्ड सीखते हैं और मजा भी आता
0: है। यानी बच्चों को हर चीज में मजा चाहिए, है कि नहीं?
5: हाँ दीदी।
0: तो मजे से मुझे याद आया कि मजे करने के लिए और आप लोग क्या क्या करते हो?
3: खेलते हैं।
0: अच्छा, खेलते हो, कौन कौन से खेल खेलते हो?
1: बर्फ पानी,
2: पकड़न पड़ाई,
6: चैंटोर, छुपन छुपाई।
0: अच्छा, तो आप किसके साथ खेल खेलते हो? दोस्तों के साथ खेलते हो या अपने मम्मी पापा के साथ खेलते हो या भाई बहन के साथ खेलते हो?
2: भाई बहन।
7: दोस्तों के साथ।
0: अच्छा, तो आप में से कोई है जो अपने मम्मी पापा के साथ भी कोई गेम खेलता हो?
2: मैं खेलता हूँ।
0: अच्छा, आप कौन सा गेम खेलते हो?
2: छुपन छुपाई।
0: छुपन छुपाई, और कैसे खेलते हो बताओ थोड़ा सा।
2: पापा गिनती करते मैं छुपता हूँ।
0: अच्छा, तो मम्मी पापा के साथ खेलने में ज्यादा मजा आता है या दोस्तों के साथ?
2: मम्मी पापा।
1: दीदी, मैं एक गेम जानती हूँ जिसमें हम खेल खेल में पढ़ाई भी सीख सकते हैं।
0: अरे वाह, इससे ज्यादा मजेदार बात क्या होगी बच्चों के लिए कि अगर वो खेल खेल में पढ़ाई सीख सके। तो आप मुझे बताओ वो कौन सी गेम है?
1: जैसे कि हमने तीन कटोरी ली है, उसमें हमने एक गिलास जोड़ा तो तीन से वो चार हो जाएगा, यानी जमा हो जाएगा।
0: अरे वाह, जोरदार तालियां हो जाए। आप में से कोई और बच्चा भी ऐसा है जो कि ऐसे खेल खेल में पढ़ाई भी करता हो? आप भी करते हो, आप क्या करते हो?
2: दीदी, मेरी मम्मी पूछती है दीवार पे कलर कौन से, मैं बताता हूँ, रेड है, ब्लैक है, ये बताता हूँ मैं।
0: अरे वाह, आज के इस कार्यक्रम में तो मुझे एक नई बात जानने को मिली कि बच्चे खेल खेल में भी पढ़ाई सीख रहे हैं। अच्छा, और भी कोई खेलता है?
5: दीदी मैं।
0: क्या खेलते हो?
5: लेकिन मैं पढ़ाई में खेलता हूँ।
0: अच्छा, वो कैसे?
5: क्योंकि हम टीचर टीचर खेलते हैं।
0: टीचर टीचर तो मैं भी बचपन में बहुत ज्यादा खेलती थी।
1: दीदी, हमें इसमें स्टूडेंट वाली फीलिंग आती है, जैसे कि हम असलियत में कोई स्टूडेंट और हमारे सामने असलियत में कोई टीचर खड़ी है और हम उससे पढ़ाई का भी कुछ सीखते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही मैं उम्मीद करूंगी कि आप खेल खेल में और पढ़ाई सीख के आना जब हम मिलेंगे, ठीक है? पक्का वादा?
7: हाँ दीदी।
6: हाँ दीदी।
0: चलो ठीक है।
8: मेरा नाम अलीशा यादव है। मेरी कविता का शीर्षक है भारतीय सैनिक। बर्फीली चोटियों पर गूंजती वीरता की गाथा, भारतीय सैनिकों की साहस की परिभाषा, कृत्रिम संकटों में फंसे ये भक्त, सिपाहियों की मानवता ने किया उन्हें मुक्त, प्राकृतिक आपदा

0: विकराल छाया, हर दिशा में मची थी हाहाकार की माया। पर सैनिकों ने बढ़ाया मदद का हाथ, निर्भीकता से दिया एक दूसरे का साथ। हर जवान बना देवदूत का सिपाही, मची थी चारों ओर भयंकर तबाही। आशीर्वादों की गूंजों ने बढ़ाया सिपाहियों का मान, वीर सपूतों ने बचाए अंगिनत जनों के प्राण। कृपाल का गौरव, हृदय का स्वाभिमान, सैनिकों की वीरता का अमित यशगान। ना देखे कोई जीव ऐसा दृश्य द्वारा, भारत के रक्षक तुम्हें सलाम हमारा, तुम्हें सलाम हमारा। धन्यवाद, जय हिंद।
1: तो अब समय हो चुका है एक गीत का, तो चलिए सुनते हैं ये।

0: अरे वाह, ये गीत सुन के ऐसा लगा मानो कि इस गीत के जरिए हमने रेडियो पर ही पहाड़ों की सैर कर ली हो, है ना?
1: दीदी।
0: तो आप में से कोई कभी पहाड़ों पर घूमने गया है?
2: हाँ दीदी, मैं गया।
0: अच्छा, आप गए हो तो आप कहाँ गए थे?
2: मैं मसूरी।
0: मसूरी गए थे, तो आपने क्या क्या देखा वहाँ पर?
2: मैम, मैंने वहाँ पे पहाड़ देखे और मैंने बर्फ भी देखी वहाँ पे।
0: अच्छा, और आपने क्या?

0: क्या क्या किया वहाँ जाकर? मौसम कैसा था वहाँ का?
1: मैं वहाँ पे ठंड थी बहुत।
0: क्योंकि पहाड़ का नज़ारा होता ही इतना सुंदर है ना, चारों तरफ हरियाली और बहुत अच्छी हवा, नदियाँ, पानी। अरे वाह, और कौन कौन जाना चाहता है पहाड़ों पर?
1: दीदी मैं।
0: आप जाना चाहते हो और वहाँ जाकर क्या करना चाहते हो?
1: दीदी बहुत सारा खेल, और हम वहाँ जान के भी आएंगे कि वहाँ क्या क्या होता है।
0: तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी पहाड़ों की सैर करने जरूर जाएंगे, है ना?
1: हाँ दीदी।
0: पहाड़ों से आपको सीखने को क्या मिलता है? कुछ सीखने को मिलता है पहाड़ों को देखकर?
1: हाँ दीदी।
0: अच्छा ठीक है प्रीति, आप बताओ सबसे पहले कि पहाड़ों से हमें क्या सीखने को मिलता है?
1: मजबूती।
0: वाह प्रीति, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई। पहाड़ हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हमेशा ऊपर उठना चाहिए। आज तो इन नन्हे मुन्ने बच्चों से बातें करके, इनकी कविताएं सुन के बहुत मजा आया, आया कि नहीं?
2: हाँ दीदी, बहुत मजा आया।
0: और उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को भी मजा आया होगा। तो अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और हमारा ईमेल एड्रेस है fmgradiokids@gmail.com। हमें उम्मीद है कि आप हमें ढेर सारे मैसेज करेंगे और अपना प्यार देंगे। लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखना कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है, प्रकृति का ख्याल रखना है और हमेशा मुस्कुराते रहना है। तो चलिए अब हम फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे यानी कि अंजलि को दीजिए इजाजत। बाय
2: बाय दीदी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो किड्स।
1: राजनीति की चाल से
2: दुनिया के हाल तक,
3: खेल के मैदान से किसान के खलिहान तक,
2: दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे,
1: खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम,
3: सटीक और भरोसेमंद खबरें।
2: खबर ही नहीं, खबर का विश्लेषण भी।
1: देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 4 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वांग किस्सा राजा मोर ध्वज का।
1: नमस्कार, संगीतमय कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमियों का स्वागत अभिनंदन। आज इस कार्यक्रम में महाभारत काल के महादानी राजा मोर ध्वज की दानवीरता का किस्सा यह है कि आज की स्वांग में कि धनुर्धारी अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में जब जब विजय प्राप्त की, तब तब श्री कृष्ण से कहा कि आपके भक्तों में मुझसे बड़ा कोई योद्धा नहीं और भ्राता युधिष्ठिर से बड़ा कोई दानी नहीं। अश्वमेध यज्ञ

0: के उपरांत पांडवों ने दिग्विजयी घोड़ा को छोड़ा। घोड़े की सुरक्षा में विश्व विजेता अर्जुन को भेज दिया गया। जैसे ही घोड़ा अवधपुरी की सीमा में पहुंचा, राजा मौरध्वज के इकलौते पुत्र तामरध्वज ने घोड़े को पकड़कर रोक लिया और प्रतिद्वंदिता में अर्जुन को पराजित कर दिया। अर्जुन लौटकर श्री कृष्ण को सारा हाल बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें तुमसे बड़ा योद्धा मिल गया है, चलो उनकी परीक्षा लेते हैं। एक बनावटी शेर लेकर उसी राजकुंवर के महल में पहुंचकर उस भूखे शेर का बहाना बनाकर लेकर उसे उस नादान बालक को उसी के माता पिता के हाथों पैनी धार के आरे से चिरवाएंगे। तो ये एक कहानी है और आज के इस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और ये एक बहुत ही भावुक करने वाला क्षण होगा। और इन सब किस्सा को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ऋषिपाल सिंह जी, राजा मोरध्वज की भूमिका में होंगे। विद्याधर रानी का किरदार निभाएंगी पूजा शर्मा, साधु के रूप में अमित खदान जी, प्रमोद गिरी जी तामरध्वज की भूमिका में होंगे और कुंज बिहारी बाड़ी के रूप में। आज के लोकगीत स्वांग को संगीत से सजाएंगे हारमोनियम पर बब्बर भारती। जी हाँ, ढोलक पर होंगे देवेंद्र जी, नगाड़े पर कुल्लू और ऑक्टोपैड पर सुभाष जी। बहुत ही खूबसूरत, तो आइए सुनते हैं स्वांग किस्सा राजा मौरध्वज।
1: महाराज
2: जी, महारानी,
1: ये बताइए कि आज आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, चिंतित का कारण क्या है?
2: महारानी, गजब हो गया।
1: क्या कारण?
2: रात बड़ा अजीब सपना दिखाई दिया है।
1: सपना? कैसा सपना दिखाई दिया महाराज?
2: सुनोगी तो कांप उठोगी महारानी, कांप उठोगी।
1: अपने सपने का हाल बताइए महाराज।

0: मुझे झूठा नहीं लग रहा है महारानी।
1: महाराज घबराने की कोई भी बात नहीं है।
0: वो सपना मेरी आंखों के सामने तस्वीर बनकर आ रहा है महारानी।

0: पहाड़ टूट पड़ा काल सनिश्चर सर पे चढ़ता दिखा। महारानी
1: कहिए महाराज।
0: महारानी दिमाग घूम रहा है,
1: क्या हो गया महाराज?
0: संतों ने पहला में

0: महारानी।
1: कहिए महाराज।
0: मुझे आभास हो रहा है
2: कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है महारानी।
1: महाराज मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आज आपको हो क्या गया है।
0: क्या हो गया है महाराज, क्या बताऊं? साधु महाराज।
3: महाराज प्रणाम।
4: प्रणाम महाराज।
0: आज दानी राजा मोरध्वज के राज दरबार में आपका हृदय से स्वागत है महाराज, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि आप मेरे राज दरबार में कुछ मांगने के लिए आए हो।
4: जी हाँ राजन।
0: कहिए।

0: महाराज
1: कहिए राजन।
0: मैं क्या देख रहा हूँ? कभी मैंने साधु संतों के साथ कोई जंगली जानवर को नहीं देखा, ये पीछे क्या दिखाई दे रहा है?
1: ये 30 रोज का भूखा हमारा शेर है, सभी पता चल जाएगा, अभी सुनिएगा।

0: महाराज। कहिए राजन।
1: मेरा नाम दानी राजा मोरध्वज के नाम से जाना जाता है।
2: मैं उस वंश से पैदा हूँ जिस कुल में
1: सतयुग में दानी राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए थे और जिन्हें सतवादी के नाम से ये संसार जानता था। महाराज अब चिंता ना करिए।
0: तो राजन हमारे आदेश के अनुसार जाइए, किसी बाली के यहाँ से पैनी धार का आरा लेकर के आइए और अपने बेटे को अपने हाथों से चीरने की तैयारी कीजिए।
1: जैसा आदेश महाराज, आपके प्रत्येक आदेश का पालन किया जाएगा।
3: बाड़ी
0: अवधपुरी।

0: नरेश को मेरा करवद प्रणाम।
1: बाढ़ी।
0: कहिए महाराज।
1: मैं राजा मोरध्वज आज तेरे दरवाजे पर भिखारी बन के आया हूँ।
0: कहिए महाराज, आज मुझे अदना गरीब की टूटी फूटी झोंपड़ी पर आपका कैसे आना हुआ?
1: मुझे एक आरा चाहिए।
0: वो किस लिए?
1: बुझोगे
0: जरूर
1: तो बताऊंगा।

0: ये आरा मुझे दो।
1: ठीक है महाराज,
0: ये आज मेरी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज इस त्रिवाचा के संकट में तो अदना गरीब का ये आरा बहुत बड़ा काम करेगा।
1: ठीक है राजन,
0: साधुओं को ये आरा पकड़ाऊंगा, बड़े खुश होंगे। मैंने उनके आदेश का पालन कर लिया।
2: दानी राजा मोरध्वज, ऐसा प्रतीत होता है कि आरा लेकर के आ गए हो।
0: जी महाराज, दानी राजा मोरध्वज, आपके आदेशों का पालन करता हुआ आपकी सेवा में उपस्थित है। महाराज, कोई आदेश है, आरा लीजिए।

0: हे महाराज,
1: कहिए।
0: ये पैनी धार का आ रहा मेरे बेटे की काया पर चलेगा ये कलेजा।
2: कांप उठेगा लेकिन तुमने
0: एक शर्त और लगा दी।

0: आज मुझे
1: तुमने मेरे पुरखों की याद दिला दी।
0: मेरे वो पुरखे
1: सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी थे और उन्हें
0: सत्यवादी होने के कारण
1: बड़ा दुख भरना पड़ा था, इसलिए

0: साधु महाराज।
1: कहिए राजन।
0: मैंने 3 वचन भरे हैं और मैं तिरवाचा हूं। मैं वचन हार नहीं हो सकता, मैं वचनबद्ध हूं। इसलिए मेरा एक अनुरोध है, मेरी एक प्रार्थना है।
1: कहिए राजन।
0: जो आपका आदेश है, मुझे अपनी पतवर तारानी विद्याधरनी को बताना चाहिए।
1: बिल्कुल महाराज।
2: और मुझे आदेश दीजिए
0: कि मैं अपनी महारानी से ये सारी बातें बता सकूं।
1: आदेश है महाराज, आप जा सकते हैं।
0: महारानी विद्याधरनी।
3: कहिए महाराज।
0: आज हमारे ऊपर एक संकट का पहाड़ टूट रहा है महाराज।
3: कैसा संकट महाराज?
0: दो साधु महारानी, वो सपना साचा साबित होने जा रहा है।
3: साचा सपना?
0: हाँ, जो मैंने तुझे बताया था, जो मुझे राज दिखाई दिया।
3: लेकिन ऐसा क्या हो गया महाराज?
0: दो साधु एक भूखा शेर लेकर के हमारे राजमहल में बैठे हैं महारानी। उन्होंने दान मांगा है, दान में हमारे इकलौते पुत्र को मांग लिया है महारानी।
3: नहीं नहीं महाराज नहीं, आप ये क्या कह रहे हो महाराज?
0: इतना ही नहीं महारानी, वो 3 रोज का मांसाहारी भूखा शेर हमारे इकलौते पुत्र के मांस का भोजन करेगा।
3: नहीं महाराज, ये आपने क्या कर दिया महाराज, क्या कर दिया?
0: महारानी मैं तिरवाचा हूँ।
3: लेकिन महाराज हमारा इकलौता,
0: मैं दानी हूँ महारानी।
3: नहीं महाराज,
0: तुम पतवरता स्त्री हो और पतवरता स्त्री का
3: नहीं महाराज
0: धर्म बनता है महारानी, कर्तव्य बनता है कि अपने पति के संकट में जैसा भी दुख हो उसके साथ उसमें साथी हो जाना चाहिए, वो दुख बांट लेना चाहिए महारानी।
3: तो कहिए महाराज, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ
0: महारानी?
3: जी,
0: पैनीधार कारा मंगाया है, यह है मेरे पास महारानी, और मैंने अभी राजकुमार से पूछा नहीं।
3: तो महाराज पहले आप राजकुमार से तो पूछ लीजिए।
0: महारानी विद्याधरनी, हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वही हमारे इष्ट देव हैं।
3: वो बात तो ठीक है महाराज, लेकिन हमारा इकलौता पुत्र है, पहले आप मेरे पुत्र से पूछ लीजिए एक बार।
0: धर्म के अखाड़े में न कोई पुत्र होता है, न कोई पिता होता है, न कोई स्त्री होती है, धर्म सबसे बड़ा होता है महारानी। कलेजा थामो और मुझे कहो कि मैं अपने पुत्र से साधुओं के आदेश के बारे में कहूं। ये कहो, थामो कलेजा अपना।
3: थाम लिया कलेजा महाराज, थाम लिया। जैसा आप करना चाहो ऐसे आप कर सकते।

0: सुनो मेरी बात को, मैंने तुम्हें दान में दे दिया है और दान में भी एक भूखे शेर का भोजन तुम्हारी मां से होगा।
1: कहिए पिताश्री,

0: मेरे बचनों का उद्धार।
1: यदि तने मेरे आदेश का पालन कर लिया तो मैं तिर जाऊंगा राजकुमार।
0: तामा धज, मैं तिर जाऊंगा।
2: कहिए पिताश्री।
3: मेरे कमर तेरे ऊपर होनी है,

0: मैं धन हो गया बेटे, तेरे जैसा पुत्र कुल और वंश की मर्यादा को हमेशा हमेशा रखाए। अब मैं महारानी को ये कहूंगा, बेटे
1: बैठ जाओ, ये आरा तुम्हारे पिता और माता दोनों पत्थर का दिल करके।
0: बेटे तेरी काया को छेड़ेंगे। महारानी
2: कहिए महाराज।
0: तुम्हें एक छोर से पकड़ना होगा महारानी।
2: लेकिन महाराज मैं ये कैसे कर सकती हूँ?
1: ये साधुओं का आदेश है महारानी।
2: लेकिन महाराज
1: तुम्हारे पतिव्रता धर्म का।
2: लेकिन महाराज वो मेरा एक लौता पुत्र है, मैं उसकी माता हूँ, मैं ऐसा अन्याय नहीं कर सकती महाराज।
1: विद्याधरणी यदि तुम उस पुत्र की माता हो तो मैं भी उसका एक पिता हूँ, इसलिए पतिव्रता स्त्री का जो फर्ज और कर्तव्य होता है यदि वो तुमने नहीं निभाया तो मैं कुल कलंकित भी हो जाऊंगा।
2: नहीं,
1: और तिरवाचा नहीं रह पाऊंगा,
2: वचनहार
1: भी हो जाऊंगा।
2: नहीं महाराज नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
0: इसलिए भगवान कृष्ण को याद करते हुए आरा तोरणी खींचना ही पड़ेगा।
2: दीजिए महाराज।
0: लेकिन महारानी
2: कहिए महाराज।
0: आरे को थामने से पहले मेरी कुछ बातें हैं।
2: कहिए आप क्या कहना चाहते हैं महाराज।
0: पत्थर का कलेजा करना पड़ेगा महारानी। ये ममता कहां चल, इसमें बड़ा स्नेह होता है।
1: तेरी आँखियाँ में
0: महारानी।
2: कहिए महाराज।
1: तेरी आँखियाँ में

0: कहिए महाराज।
1: साधु हमारे दाएं बाएं घूम रहे हैं और वो सुन रहे हैं, रह रह कर सुन रहे हैं।
0: तो मुझे क्या करना होगा?
2: आँखों में आंसू आ गए तो मांस

0: शुक्रिया महाराज।
1: अब आरे को एक छुर से पकड़िए, बेटे पर यारा चले,
2: खींच धर्म के आरे नर, खींच धर्म के आरे नर, मत खींच।

0: महारानी।
1: कहिए महाराज।
0: तुमने मेरी उम्मीद और भरोसे को कायम रखा है, इसलिए मैं धन्य हो गया महारानी।
1: ठीक है महाराज।
0: ये हमने अपने इकलौते राजकुमार तामर ध्वज को दो फाड़ों में चीर दिया है। अब मैं साधुओं के पास जाता हूँ।
1: जय
0: साधु महाराज।
2: कहिए राजन।
0: मैंने आपके आदेश का पालन कर लिया है। अपने राजकुमार को मैंने और मेरी पतवर तारानी विद्याधरनी ने दो हिस्सों में चीर दिया है। क्या आदेश है महाराज?
2: हे दानी राजा मोरध्वज, अपने बेटे के शरीर के आधे हिस्से को ले जा करके महलों में डाल लीजिए।
0: जो आदेश है महाराज, आता हूं। हे साधु महाराज।
2: कहिए राजन।
0: आपके आदेश का ये भी पालन हो गया। मैंने अपने बेटे के अपने हाथों से चीरा हुआ आधा हिस्सा महलों में डाल दिया है। महाराज, जो ये आधा हिस्सा राजकुमार की काया का तुम्हारे शेर के भूखे के सामने था, अब वो नहीं। लगता है तुम्हारे भूखे शेर

हे साधु महाराज, जो पांच तत्वों में काया विलीन हो चुकी हो, तुम्हारी आंखों के सामने जिसे दो हिस्सों में चीर दिया गया हो और दुनिया में अब वो है नहीं, वो वापस कैसे हो सकता है।

दशा बदल देगा, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पत्थर पानी में तैरने लगेंगे। महाराज, क्या विधि का विधान बदल सकता है?

0: महाराज।
1: हे साधु महाराज।
0: कहिए राजन।
1: मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ
0: महाराज।
1: क्या आदेश है?
0: हम तो आपके बेटे के साथ ही भोजन करेंगे। आप अपने बेटे को आवाज लगाइए।
1: क्या ये संभव हो सकता है?
0: हाँ राजन, आज हर वो चीज संभव होगी जो आज तक नहीं हुई होगी।
1: परंतु महाराज, आज तक कोई असंभव कार्य मैंने अपने जीवन में संभव होते नहीं देखा है।
0: लेकिन ये होगा महाराज, अवश्य होगा।
1: पुत्र तामरध्वज, राजकुमार, यदि विधि के विधान बदल गए हैं, प्रकृति ने अपना स्वरूप ही बदल दिया है, यदि इन दो साधुओं की भगवान वाणी में यदि वाणी सत्य हो रही है, तो अपने अभागी पिताश्री दानी राजा मोरध्वज की आवाज तुम्हारे कानों में जा रही हो, तो पुत्र राज दरबार में उपस्थित हो।
0: देखा राजा मोरध्वज, ये आपका बेटा सकुशल आपके सामने है।
1: महाराज, बड़ा चंबित हूं, बड़ा भ्रमित हूं, विडंबनाओं ने मेरे मन को घेर रखा है। मैं पहले भी कह रहा था, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? हे महाराज,
0: कहिए।
1: मेरे हृदय के उद्गार कुछ प्रश्न बनकर तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं महाराज।
0: पूछिए महाराज।

0: महायोगी। आप देवकी नंदन कृष्ण हैं?
1: जी हाँ महाराज।
0: ये महाभारत के विश्व विजेता आचार्य द्रोण के परम शिष्य और कुंती के पुत्र हैं?
1: जी हाँ महाराज।

0: आज कार्यक्रम में आपने सुनी ये सुंदर प्रस्तुति स्वांग किस्सा राजा मोरध्वज। ऋषिपाल सिंह जी ने राजा मोरध्वज का किरदार निभाया। विद्याधरणी रानी की भूमिका में थी पूजा शर्मा, साधु के रूप में अमित खदाना जी, प्रमोद गिरी जी ताम्रध्वज की भूमिका में थे और कुंज बिहारी बाड़ी के रूप में। हारमोनियम पर संगत कर रहे थे बब्बर भारती, ढोलक पर देवेंद्र, नगाड़ा पर कुल्लू और ऑक्टोपैड पर थे सुभाष जी। प्रस्तुति सहयोग दिया दिनेश कुमार मीना, विशाल कुमार और दिव्या ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 5 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी में और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के दृष्टिकोण में सेशल्स का एक विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
3: आई केम हियर बिकॉज आई बिलीव दैट सेशल ऑक्यूपाइड अ स्पेशल प्लेस इन इंडियाज विजन फॉर द इंडियन ओशन। टुडे एज आई रिटर्न हियर आफ्टर अ डेकेड दैट कन्विक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन एवर एंड आई एम डिलाइटेड टू ज्वाइन यू एज यू सेलिब्रेट 50 years of your independence. Congratulations to you and the people.

0: पीपल ऑफ सेशल ऑन दिस स्पेशल ओकेजन।
1: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के एक समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत इसे एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
0: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्माइनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू हॉराइजन से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल, जितेंद्र सिंह और अन्य मंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वो आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के अनुरोध के बाद जारी किया गया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। अमरीका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को होर्मुज जलडब्रू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच दो T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच आज बेलफास्ट में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। शुक्रवार को पहले मैच में भारत को आयरलैंड से 34 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi today stated that climate action must be guided by fairness, responsibility and equity. In his special address to the National Assembly of Seychelles, Prime Minister said this is the essence of climate justice. He emphasized that Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive and where international institutions reflect contemporary realities.
0: Climate action must be guided by fairness, responsibility and equity. This is the essence of climate justice. India has sought to lead by example. Over the last decade, we have undertaken one of the world's largest expansions of renewable energy. We have championed sustainable lifestyle through Mission Life. Lifestyle for environment. Through our initiatives like International Solar Alliance, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, Global Biofuel Alliance and Ek Ped Maa Ke Naam, a tree.

0: लोक रंजनी के सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: अश्वनी
1: जी
0: भाई, आज की लोक रंजनी कार्यक्रम में हमारे पास दोस्तों के लिए बहुत सारे लोकगीत हैं और जो हमारी संस्कृति से जुड़े गीत हैं उनको हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और जो जैसे हमारे घर के ताने बाने हैं, महिलाएं हैं, उनके आपसी संबंध हैं, पारिवारिक या फिर उनके अपने

0: पहनावे हैं, श्रृंगार है, विवाह शादी है, उन सभी को हम इसमें शामिल करते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए ना, ये जो सब बातें हैं जो ना ही किताबों में पढ़ाई जाती हैं और ना ही किताबों में मिलती हैं, ये हमारी परंपराएं, संस्कृति है, हमारी बोलचाल की आम भाषा है, जिसमें इन सब गीतों, ये जो गीतों का जो मुख्य स्रोत है हमारे आसपास का समाज ही है, जिस समाज में हम, हमारे जो कवि हैं, हमें गीत हैं, गीतकार हैं, वो चुन चुन के उन सभी शब्दों को बुन कर एक मोतियों की माला बनाकर एक एक लोकगीत के रूप में शामिल कर लेते हैं। यही हमारा लोक रंजनी कार्यक्रम जिसमें जिसमें लोगों द्वारा रचित कार्यक्रम जो बोल होते हैं उनको लेकर आते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा मन भी शहरों से गांव की पगडंडियों पे झूलता हुआ नजर आता है।
0: और अश्वनी, ये मानना पड़ेगा कि जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनमें सजने धजने की बहुत ही अलग ही समझ होती है। और ये प्रियंका शर्मा कह रही हैं कि मेरी पतली कमर है इसलिए नाड़ा झुब्बेदार चाहिए।
1: क्या बात है,
0: तो सुनते हैं।

0: तो मेरी पतली कमर नाड़ा झुब्बेदार लइयो, ये लोकगीत सुन रहे थे हमारे दोस्त प्रियंका शर्मा
1: शर्मा की
0: की
1: आवाज
0: आवाज में।
1: में।
0: और जो अगला लोकगीत है वो
1: जी
0: किन से सुनवा रहे हो?
1: जी सुनीता, ये हमारे
0: ऋषिपाल
1: तानावर
0: खदाना
1: सिंह
0: और
1: मीनाक्षी
0: मीनाक्षी पांचाल
1: पांचाल
0: की
1: की
0: आवाज
1: आवाज
0: में।
1: में। जी
0: और ये भी कह रहे हैं कि मेरी नाजुक नरम शरीर है, तो सुनते हैं दो गाने के रूप में ये लोकगीत।

0: तो ऋषिपाल खदाना और मीनाक्षी पांचाल के बाद में ये तो कह रहे हैं भाई थक गए चलते चलते। और ये जो प्रियंका चौधरी है ना, ये भी बता रही है कि गर्मी बहुत पड़ रही है,
1: प्रचंड गर्मी पड़ रही है अभी भी,
0: इसलिए एसी की जरूरत है।
1: अभी आप जब कार्यक्रम शुरू होने के दौर पर था और आप चले आए स्टूडियो में, तो देख रहा हूँ कि पसीने लगातार आपको बह रहे हैं, तो गर्मी बहुत ज्यादा है। तो ले लेते हैं इस गाने, ऐसे लोकगीत का आनंद।
0: कह रही है कि एसी लगवा दो।

0: तो इस लोकगीत के बाद अब सुनते हैं एक और लोकगीत, किनकी आवाज में?
1: रेणु बर्मन की आवाज में ये लोकगीत है और
0: शादी विवाह का गीत है।
1: जी।

0: रेणु बर्मन की गाइस लोकगीत के साथ ही हमारा आज का लोकरंजनी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सभी सुनने वालों को नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम लोक रंजनी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम, जी हाँ, रविवार की शाम और आज के इस अंक में है बहुत कुछ। लेकिन कार्यक्रम में आज आपके साथ आपका दोस्त अतुल
3: और शिवांश।
2: जी हाँ, रविवार की शाम जैसा हमने कहा, और फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है शिवांश, तो उसकी बहुत सारी जानकारी हम अपने श्रोताओं को देंगे क्योंकि राउंड ऑफ 32 के मैच भी शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा विमेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आज एक मैच खेला जाने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा सेमीफाइनल की दौड़ में भारत को बने रहने के लिए। राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो चल रही है 65वीं भुवनेश्वर में, वहां से बहुत कुछ है, नेशनल रिकॉर्ड टूटे हैं और आज शाम भी बहुत कुछ वहां पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा बैडमिंटन चल रहा है, यूएस बैडमिंटन, जहां पे सेमीफाइनल के मैच खेले गए। वॉलीबॉल से कुछ खबरें हैं और उसके अलावा वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग से भी बहुत कुछ है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो फुटबॉल यानी कि फीफा 2026 वर्ल्ड कप से क्या खबर है, आइए सुनते हैं मेरे साथी शिवांश की ये रिपोर्ट।

इस रोमांचक फुटबॉल रात के सफर में। सबसे पहले रुख करते हैं डलास स्टेडियम का, जहां अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराकर ग्रुप चरण का समापन जीत के साथ किया। 24वें मिनट में जियोवानी लो सेल्सो ने शानदार गोल कर अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। इसके बाद मिले पेनल्टी अवसर को लाउतारो मार्टिनेज ने गोल में बदलकर अंतर 2 गुना कर दिया। दूसरे हाफ में जॉर्डन के कप्तान मूसा अल तमारी ने गोल कर मुकाबले में रोमांच लौटाने की कोशिश की, लेकिन 80वें मिनट में लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 6ठा गोल दागते हुए अर्जेंटीना की जीत पर मुहर लगा दिया। अब चलते हैं न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम, जहां इंग्लैंड ने पेनामा को 2-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। पहले हाफ में दोनों टीमें गोल नहीं कर सकी। दूसरे हाफ में जूड बेलिंगहम ने बुकायो साका के कॉर्नर पर शानदार हेडर लगाकर गतिरोध तोड़ा। इसके बाद हैरी केन ने बेलिंगहम के सटीक क्रॉस को गोल में बदलते हुए विश्व कप में अपना 11वां गोल दर्ज किया और इंग्लैंड के लिए विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। ग्रुप एल के दूसरे मुकाबले में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित कर अगले दौर का टिकट हासिल किया। लुका ने पहले हाफ में बेहतरीन गोल से शुरुआत की। घाना ने डेरेक लुकासेन के गोल से बराबरी हासिल की, लेकिन 83वीं मिनट में कप्तान लुका के कॉर्नर पर निकोला के शानदार हेडर ने क्रोएशिया को जीत दिला दी। उधर अटलांटा के मर्सिडीज बेंस स्टेडियम में डीआर कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर इतिहास रच दिया। शुरुआती झटके के बाद टीम ने शानदार वापसी की। योआने विस्सा ने 2 गोल किए, जबकि फिस्टन माइले ने 1 गोल जोड़कर जीत सुनिश्चित की। इस जीत के साथ डीआर कांगो पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंच गया। मियामी के हॉर्ड रॉक स्टेडियम में कोलंबिया और पुर्तगाल के बीच खेला गया मुकाबला भले ही गोल रहित रहा, लेकिन खेल की गति और दोनों टीमों की रक्षा पंक्ति ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। कोलंबिया ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खुलकर खेलने का अवसर नहीं दिया। इस परिणाम के साथ दोनों टीम अगले दौर में पहुंचने में सफल रही, जबकि कोलंबिया ग्रुप में शीर्ष स्थान पर रहा। और अब बात करते हैं उस मुकाबले की जिसने आखिरी क्षण तक रोमांच बनाए रखा। कैंसस सिटी में अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया के बीच खेला गया मैच 3-3 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इंजरी टाइम में 90+3वें मिनट पर रियाद महरेज ने गोल कर अल्जीरिया को बढ़त दिला दी, लेकिन मैच समाप्त होने से ठीक पहले 90+6वें मिनट में साशा ने बराबरी का गोल दाग कर ऑस्ट्रिया को हार से बचा लिया। रोमांच परिणाम के साथ दोनों टीमों ने नॉकआउट चरण में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। इसके साथ ही फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप चरण का समापन हो गया है। अब प्रतियोगिता अपने सबसे रोमांचक दौर में प्रवेश करेगी, जहां हर मुकाबला नॉकआउट होगा और हर जीत टीम को विश्व चैंपियन बनने के सपने के एक कदम और करीब ले जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप फेज के मैच खत्म हो गए हैं। इसके बाद अब राउंड 32 के मैच खेले जाएंगे। इन मैचों के लिए सभी 32 टीमों का ऐलान हो चुका है, जबकि 16 टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। यह टूर्नामेंट 48 टीमों के साथ शुरू हुआ था, जिन्हें 12 ग्रुप में बांटा गया था। हर ग्रुप में 4-4 टीमों को जगह दी गई थी। हर एक ग्रुप से टॉप 2 टीमों को राउंड 32 का टिकट मिला, जबकि कुछ नंबर 3 की टीमों को भी आगे जाने का मौका मिला है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए से मैक्सिको और साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी है, जबकि ग्रुप बी से 3 टीमों की किस्मत चमकी है। स्विट्जरलैंड, कनाडा और बोस्निया टीम ने भी राउंड 32 में जगह बनाई है। ग्रुप सी से ब्राजील और मोरक्को की टीम आगे जाने वाली है। ग्रुप डी की बात करें तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और पैराग्वे की टीम आगे के मैचों में खेलने वाली है। ग्रुप ई से जर्मनी, कोट
कोटे डिलवोयरे और इक्वेडोर टीम ने राउंड 32 के लिए क्वालिफाई किया है। ग्रुप एफ से नेदरलैंड्स, जापान और स्वीडन की टीम राउंड 32 में पहुंची है, जबकि ग्रुप जी से बेल्जियम, इजिप्ट और ईरान को एंट्री मिली है। ग्रुप एच से स्पेन और कोप

वर्दे को की टीम आगे खेलेगी। वही ग्रुप आई से फ्रांस, नॉर्वे और सेनेगल की टीम आगे जाएगी। ग्रुप जे से अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया ने बाजी मारी है। के ग्रुप से कोलंबिया, पोर्चुगल और कोंगो डीआर राउंड 32 में होगी। ग्रुप एल से इंग्लैंड, क्रोएशिया और घाना की टीम राउंड 32 के लिए क्वालिफाई कर गई है। आइए अब आपको बताते हैं राउंड 32 के मुकाबलों के बारे में। साउथ अफ्रीका बनाम कनाडा का मैच होगा, नेदरलैंड्स और मोरक्को के बीच में मैच होना है, जर्मनी और पेरेगुए के बीच मैच होगा, फ्रांस और स्वीडन के बीच, बेल्जियम और सेनेगल के बीच, यूएसए और बोस्निया के बीच और स्पेन ऑस्ट्रिया के बीच। इसके बाद पोर्चुगल और क्रोएशिया के बीच होगा मैच और ब्राजील और जापान के बीच में, फिर कोटे दी आइवोरे और नॉर्वे के बीच में मैच होगा, उसके बाद मेक्सिको और इक्वेडोर के बीच, फिर इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच और होगा इसके बाद स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया के बीच मुकाबला, उसके बाद कोलंबिया और घाना के बीच मुकाबला होगा और फिर ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट और आखिर में अर्जेंटीना कैबो वेर्दे के बीच।

0: तो दोस्तों, ये तो बात हुई फीफा वर्ल्ड कप की। इसके बाद आपको ले चलते हैं क्रिकेट की दुनिया की ओर। बताइए अतुल, क्या कुछ खास है आपके पास?
1: आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो सबसे पहले बात आज शाम के सबसे बड़े मुकाबले की, जहां भारत और 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में आमने सामने होंगी।
2: The rivalry between India and Australia has kind of blossomed over the last few years.
1: यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल की दौड़ के लिहाज से बेहद अहम है। भारत के लिए समीकरण साफ है, जीत से सेमीफाइनल का टिकट लगभग तय हो जाएगा, जबकि हार की स्थिति में टीम को अन्य मैचों के परिणामों और नेट रन रेट पर निर्भर रहना पड़ सकता है। भारतीय टीम की बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। वहीं गेंदबाजी में रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा और अरुंधति रेड्डी पर अहम जिम्मेदारी रहेगी।
2: द फैक्टर दैट विल डिसाइड इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गेम वुड बी इन द मिडिल ऑर्डर ऑफ इंडिया। हरमन कैन एक्चुअली प्ले अ मेजर रोल इन दैट मिडिल ओवर्स, बट शी इज कमिंग लोअर इन द ऑर्डर।
1: दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम बेथ मूनी, एशले गार्डनर और मेगन शूट जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के दम पर एक बार फिर जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है।
2: I think ending the round game with such a big match is actually really exciting.
1: बात करें कल खेले गए अन्य मुकाबलों के नतीजों की तो आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 128 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड ने ओरला प्रेंडरगास्ट के शानदार 63 रन की बदौलत 18.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। हालांकि इस हार के बावजूद वेस्टइंडीज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। एक अन्य मुकाबले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 9 विकेट से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 रन बनाए, लेकिन इंग्लैंड ने डेनी वाइट हाउस और सोफिया डंकली की नाबाद 128 रन की साझेदारी की बदौलत 17.2 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इस हार के साथ मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड का टूर्नामेंट में सफर भी यहीं समाप्त हो गया। वहीं पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 37 रन से हराकर टूर्नामेंट का समापन जीत के साथ किया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 126 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से गुल फिरोजा ने 52 गेंदों में 63 रन की पारी खेली। जवाब में नीदरलैंड्स की पूरी टीम 89 रन पर सिमट गई। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी थीं, लेकिन पाकिस्तान ने जीत के साथ अपना अभियान समाप्त किया। जी हाँ, ये तो हुई कल के मैचों की बात। और आज भी एक मैच खेला जा रहा है T20 वर्ल्ड कप में शिवांश, जहां पे बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की महिला टीमें आमने सामने हैं। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 117 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पर, और साउथ अफ्रीका, जी हाँ, यानी कि दक्षिण अफ्रीका 13.1 ओवर में 82 रन बना चुकी है 3 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 41 बॉलों में 36 रन बनाने हैं और मैच काफी हद तक दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में नजर आ रहा है। और ये तो बात हुई महिला क्रिकेट की। और बात करें इंडिया और आयरलैंड के मेंस जो T20 मैच है उस सीरीज की, वहां पे 2 मैचों की सीरीज में पहला मैच जो है भारत को हार का सामना करना पड़ा था, जब मेजबान आयरलैंड ने 34 रन से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया था।

0: ये T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत पर आयरलैंड की पहली जीत थी। ऐसे में भारतीय टीम की अगर बात करें तो आज श्रृंखला बराबर करने पर नजरें होंगी। टॉस अगर दूसरे मैच की बात करें तो हो चुका है और आयरलैंड पहले बल्लेबाजी करेगा, लेकिन पहले मैच की अगर बात करें शिवांश, तो अभिषेक शर्मा को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका था, और गेंदबाज भी अगर करें तो आयरलैंड के बल्लेबाजों पर ज़्यादा लगाम नहीं लगा सके थे। आज अगर बात करें तो काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा भारतीय बल्लेबाजी पर, जहां पे अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी अगर आज मैच खेल रहे हैं, या फिर ईशान किशन, कप्तान श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा की भूमिका डिपेंड करेगी, और उसके अलावा ऑलराउंडर शिवम दुबे और अक्षर पटेल पर भी काफ़ी सारी जिम्मेदारी होंगी। आज के मैच की बात करें तो भारत चाहेगा ये मैच जीत कर सीरीज को बराबर करना, और वहीं अगर आयरलैंड ये मैच जीता है तो आज एक इतिहास रच जाएगा।
1: तो दोस्तों ये तो बात हुई क्रिकेट की, इसके बाद आपको ले चलते हैं ट्रैक एंड फील्ड की दुनिया की ओर। बताइए अतुल, क्या कुछ खास है आपके पास?
0: ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में जारी 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के चौथे दिन कई शानदार प्रदर्शन देखने को मिले। दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही महिला लंबी कूद में एनसी सोजन का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, जबकि पुरुष ऊंची कूद में सर्वेश कुशारे ने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतकर एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया। इसके अलावा कई अन्य भारतीय एथलीटों ने भी स्वर्ण पदक जीतने के साथ एशियाई खेलों के क्वालिफिकेशन मानक हासिल किए। सबसे पहले बात करते हैं महिला लंबी कूद की, जहां केरल की एनसी सोजन ने अपने पांचवें प्रयास में 6.88 मीटर की छलांग लगाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड और नया मीट रिकॉर्ड बनाया, और इसी के साथ ही भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में कल का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। एनसी ने वह कर दिखाया जिसका इंतजार भारतीय खेल जगत पिछले 22 वर्षों से कर रहा था। इस अचीवमेंट के बाद एनसी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: Today I think about like that I am competing Asian Games like and I felt like that someone beat her, so I need to grab the medal for our national. So suddenly it felt me and encouraged me. I just did like that. I know this jump can produce gold. I am aiming for a world class performance there. This is a statement that India have also good jumpers. If someone works hard, they can achieve it. Just believe ourselves and be patient. And dedicated to our work. How much you give sacrifice and dedication to your work, it will give. It will take time, but still believe yourself. I know it is a huge jump. 83, obviously Anju ma'am had it. She struggles a lot. And I'm like, I mean to be, she's a legend. Exactly. So I am also aiming like her. I want to become a world class jumper.
0: एनसी ने भारतीय एथलेटिक्स की महान हस्ती अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2004 एथेंस ओलंपिक में 6.83 मीटर की छलांग लगाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था, जो अब तक अटूट बना हुआ था। इस प्रतिस्पर्धा में उत्तर प्रदेश की शैली सिंह ने 6.67 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया। वहीं लक्षद्वीप की मुबासिना मोहम्मद ने भी 6.53 मीटर के साथ कांस्य पदक जीतते हुए एशियाई खेलों का क्वालिफिकेशन हासिल किया। 22 साल पुराना अपना रिकॉर्ड टूटने, मुबासिना मोहम्मद के प्रदर्शन और एशियाई खेलों में भारतीय एथलीटों के संभावित प्रदर्शन पर अंजू बॉबी जॉर्ज ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: I was expecting this record-breaking performance since 2021 when Shaili played from my academy, touched 660 and got a world junior silver medal. This year, they couldn't do. This year I was expecting, because this is especially Asian Games year and all the athletes will be at their peak, that for sure. So I was expecting either from Shaili or Ansi. Yeah. So Ansi could break my record yesterday. And Mufasina, she is a junior athlete. She is from Lakshadweep, reached 650. 53, and hope she will do better. Long jump is such a highly technical event. I cross 7+ jumps many times. Even in Olympics, I cross 7 meters, but I couldn't register a valid jump 7+, though I was capable. So long jump, as I said, highly technical, and getting that right rhythm and right takeoff and reaching up to where we need is really literally difficult. 680+ jump is always world class. Women long jump, we are expecting 2 medals. Men long jump, we are expecting getting medals, triple jump, high jump, especially both high jump men and women we are expecting, and all the events in athletics we are doing perfectly well this time.
0: तो कल की इस स्पर्धा की बात करें तो तीन भारतीय एथलीटों का एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई करना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि रही. वहीं पुरुष ऊंची कूद में कल का दिन नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड का रहा. महाराष्ट्र के सर्वेश कुशारे ने 2.31 मीटर की शानदार छलांग लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. उन्होंने एशियाई खेलों

0: का क्वालिफिकेशन मानक भी हासिल किया। सर्वेश ने तेजस्विन शंकर का 2.29 मीटर का वर्तमान रिकॉर्ड तोड़ा। इस स्पर्धा से भी दो अन्य खिलाड़ियों तमिलनाडु के आदर्श राम और कर्नाटक के जैसे संदेश ने एशियाई गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में तमिलनाडु की विद्या रामराज ने 56.07 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। केरल की अनु आर ने 56.54 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। दोनों धाविकाओं ने एशियाई खेलों का क्वालिफिकेशन समय पार कर लिया। कर्नाटक की सिंचल 58.90 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रही। वहीं अगर पुरुष 400 मीटर बाधा दौड़ की बात करें तो कर्नाटक के यशस और तमिलनाडु के संतोष टी ने क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीतते हुए एशियाई गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। पुरुष गोला फेंक स्पर्धा में पंजाब के करणवीर सिंह ने 20.49 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के समरदीप गिल ने 20.40 मीटर के साथ रजत और अनुभवी तजेंद्र पाल सिंह तूर ने 20.27 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता। खास बात यह रही कि तीनों खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों के क्वालिफिकेशन मानक को पार किया। पुरुष 100 मीटर दौड़ में मेजबान ओडिशा के अनिमेश कुजूर ने 10.28 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। महाराष्ट्र के प्रणव गुरव ने 10.39 सेकंड के साथ रजत और लौकिक मेलगे ने 10.43 सेकंड के साथ कांस्य पदक हासिल किया। महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में अनुभवी अन्नू रानी ने 56.74 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता। कर्नाटक की करिश्मा सानिल और राजस्थान की उमा चौधरी ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुष 1500 मीटर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के यूनुस शाह ने 3:37.55 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता। उत्तर प्रदेश के ही गुलवीर सिंह ने रजत और राजस्थान के राहुल बलोड़ा ने कांस्य पदक हासिल किया। इस स्पर्धा से यूनुस और गुलवीर ने एशियाई गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में उत्तर प्रदेश की पारुल चौधरी ने 4:20.45 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता। उत्तराखंड की अंकिता और हरियाणा की पूजा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। इसके अलावा महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में महाराष्ट्र की सुदेशना शिवशंकर ने 11.59 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि हेप्टाथलोन के पहले दिन केरल की अनामिका ए बढ़त बनाए हुए हैं। बात करें आज सुबह के सत्र की तो महिला 10,000 मीटर दौड़ में हिमाचल प्रदेश की सीमा ने 34:28.75 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं उत्तराखंड की सोनिया और महाराष्ट्र की रवीना गायकवाड़ ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। जहां एक और कल नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने और बहुत सारे खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया, वहीं अनिमेश कुजूर, पारुल चौधरी और महिला भाला फेंक में किसी भी भारतीय खिलाड़ी का एशियन गेम्स में क्वालिफिकेशन ना होना खेल प्रेमियों के लिए निराशाजनक रहा। आज शाम के सत्र में भी नए रिकॉर्ड्स और एशियाई गेम्स क्वालिफिकेशन की उम्मीदें हैं और खेल प्रेमियों की नजर बनी रहेंगी। जी हाँ, खेल प्रेमियों की नजर बनी हुई है 65वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जहां पे इस समय महिलाओं के ऊंची कूद के मुकाबले चल रहे हैं। और श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि अनिमेश कुजूर ने 100 मीटर स्पर्धा में क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन 200 मीटर स्पर्धा में वो एशियन गेम्स में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे भारत की तरफ से। और ये तो बात हुई शिवांश राष्ट्रीय ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स की। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो विश्व एथलेटिक्स की प्रतिष्ठित पेरिस डायमंड लीग आज शाम को फ्रांस के स्टड शार्लेनी में आयोजित होगी। प्रतियोगिता में ओलंपिक 100 मीटर चैंपियन नोआ लायल्स और पोल वॉल्ट के विश्व रिकॉर्डधारी मोंडो डुप्लांटिस समेत कई दिग्गज खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। मोंडो डुप्लांटिस स्कॉटहोम डायमंड लीग में 40 लगातार जीत के बाद मिली अपनी हार के बाद और भी अधिक फोकस और ऊर्जा के साथ पेरिस डायमंड लीग से ट्रैक पर लौट रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद आयोजकों ने सुरक्षा उपायों के साथ प्रतियोगिता कराने का फैसला किया है। तो ये तो बात हुई शिवांश ट्रैक एंड फील्ड की, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की हमने बात करी। और एक और खेल यानी बैडमिंटन की बात कर लेते हैं। यूएस ओपन बैडमिंटन चल रहा है, जहां से भारत के लिए मिक्स खबर है, बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी अतुल जी, सेमीफाइनल जो मेन्स सिंगल्स में खेला गया श्रीकांत किदांबी और युदाई ओकीमोटो के बीच, इस पूरे मैच को श्रीकांत किदांबी द्वारा जीता गया, जिसमें से 22-20 का पहला गेम, उसके बाद 15-21, उसके बाद 21-19 का गेम रहा। इसी के साथ देविका सिहाग और लाइन क्रिस्टोफरसन के बीच विमेन सिंगल्स का मैच हुआ, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा 21-15, 11-21 और 15-21 के साथ।
0: शिवांश, इसके अलावा रौनक चौहान, भारतीय पुरुष खिलाड़ी भी सेमीफाइनल में थे, जिनको हार का सामना करना पड़ा 17-21 और 19-21 से। यानी कि कुल मिलाकर श्रीकांत किदांबी पर नजर रहेंगी टूर्नामेंट में आगे, उनसे उम्मीद रहेंगी। और ये तो बात हुई बैडमिंटन

0: की खबरें काफी हैं, लेकिन फिलहाल वॉलीबॉल की बात कर लेते हैं, जहां पे एवीसी नेशन कप खेला जा रहा है गुजरात में। तो वहां से हमारे साथी शिवांश की ये रिपोर्ट।
1: एवीसी पुरुष वॉलीबॉल कप 2026 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। अहमदाबाद में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमों का फैसला हो गया है। दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया ने अपने अपने मुकाबले जीतकर फाइनल में स्थान सुनिश्चित किया है, जबकि भारत अब तीसरे स्थान के लिए बहरीन का सामना करेगा। आइए डालते हैं एक नजर दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों पर। पहले सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया ने गत चैंपियन बहरीन को 3-1 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। दक्षिण कोरिया ने पहला सेट 25-23 और दूसरा सेट 25-22 से जीत कर बढ़त बनाई। तीसरे सेट में बहरीन ने 25-23 से जीत दर्ज कर मुकाबले में वापसी की कोशिश की, लेकिन चौथे सेट में दक्षिण कोरिया ने 25-20 से जीत हासिल करते हुए मैच अपने नाम कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में इंडोनेशिया ने भारत को 5 सेटों तक चले रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय टीम ने पहला सेट 25-15 से अपने नाम किया, लेकिन इसके बाद इंडोनेशिया ने दूसरे सेट 26-24 और तीसरा सेट 25-20 से जीतकर बढ़त बना ली। चौथे सेट में भारत ने 25-19 से जीत दर्ज कर मुकाबले को निर्णायक पांचवे सेट तक पहुंचा दिया। अंतिम सेट में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला, लेकिन इंडोनेशिया ने 15-13 से जीत दर्ज करते हुए मैच अपने नाम कर लिया। सेमीफाइनल में हार के बावजूद भारत का यह टूर्नामेंट किसी उपलब्धि से कम नहीं रहा। पुल स्टेज में पांचों मैच जीतने वाली और वर्ल्ड रैंकिंग में 42वें नंबर पर पहुंची भारतीय टीम अब ब्रॉन्ज मेडल मैच में बहरीन से भिड़ेगी। ये मैच टीम के लिए टूर्नामेंट को यादगार बनाने का आखिरी मौका होगा। बता दें कि इस हार के साथ भारतीय टीम 43 रैंक पर आ गई है। अब तीसरे स्थान के लिए भारत और बहरीन आमने सामने होंगे, जबकि फाइनल में दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला खेला जाएगा।
0: जी हाँ, अगर इसी टूर्नामेंट की बात करें शिवांश, तो भारत की टीम ने बहरीन को हरा दिया है और मेंस एवीसी वॉलीबॉल कप में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके अलावा अगर बात करें शतरंज की, तो जीवी हर्षवर्धन जो है भारत के 97वें यानी कि 97th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो खेल खिलाड़ी टीम की ओर से शुभकामनाएं। और अगर आगे चलें प्रोग्राम में, तो रेसलिंग की बात कर लेते हैं शिवांश, जहां से कॉमनवेल्थ स्क्वाड यानी कि टीम डिसाइड हो चुकी है और उसके अलावा अंडर 15 चैंपियनशिप भी चल रही है थाईलैंड में। तो पहले कॉमनवेल्थ में कौन सी टीम पार्टिसिपेट करेगी, आइए जानते हैं।
1: अब बात करते हैं वेटलिफ्टिंग की। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम की घोषणा कर दी गई है। अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के संतुलित मिश्रण से सजी इस टीम की कमान ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू संभालेंगी। भारत को एक बार फिर राष्ट्रमंडल खेलों में अपने वेटलिफ्टर्स से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। ग्लासगो में 23 जुलाई से शुरू होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए ओलंपिक रजत पदक विजेता और दो बार की राष्ट्रमंडल खेल चैंपियन मीराबाई चानू को भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम में शामिल किया गया है। 31 वर्षीय मीराबाई महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश करेंगी। वर्ष 2022 में बर्मिंगम में राष्ट्रमंडल खेलों में उन्हें चोट के कारण हिस्सा नहीं मिल पाया था, जबकि इससे पहले ग्लासगो 2014 में उन्होंने रजत और गोल्ड कोस्ट 2018 में स्वर्ण पदक जीता था। इस वर्ष की शुरुआत में कंधे की चोट से उबरने के बाद उन्होंने मोदी नगर में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीतकर शानदार वापसी की। महिलाओं की टीम में मीराबाई के साथ बिंदिया रानी देवी 58 किलोग्राम और हरजिंदर कौर 59 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। दोनों खिलाड़ियों ने बर्मिंगम में राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 में रजत पदक अपने नाम किया था। पुरुष वर्ग में पिछली बार के कांस्य पदक विजेता लवप्रीत सिंह 110 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ ऋषिकांत सिंह 60 किलोग्राम, अजय बाबू 79 किलोग्राम और दिलबाग सिंह 94 किलोग्राम वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों में पदार्पण करेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में वेटलिफ्टिंग स्पर्धाएं 26 से 30 जुलाई तक ग्लासगो के SEC आर्माडिलो परिसर में आयोजित की जाएंगी। हाल के वर्षों में राष्ट्रमंडल खेलों की वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिताओं में भारत का प्रदर्शन लगातार प्रभावशाली रहा है और इस बार भी भारतीय टीम से पदकों की मजबूत उम्मीद की जा रही है।
0: जी हाँ श्रोताओं, ये थी इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम की, जो कि कॉमनवेल्थ गेम में खेलेगी। और शिवांश, इसके अलावा अगर बात करें हॉकी की, तो
1: जी, तो आइए दोस्तों बात करते हैं हॉकी की। बताइए अतुल।

0: क्या कुछ खास है आपके पास?
1: FIH हॉकी प्रो लीग 2025-26 के पुरुष वर्ग का खिताब बेल्जियम ने अपने नाम कर लिया है। रेड लॉयंस ने नीदरलैंड पर शानदार जीत दर्ज कर एक मैच शेष रहते ही खिताब अपने नाम कर लिया। यह बेल्जियम का दूसरा FIH प्रो लीग खिताब है। इससे पहले उसने 2021 में ये उपलब्धि हासिल की थी। इस जीत के साथ बेल्जियम ने 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधा क्वालिफिकेशन भी सुनिश्चित कर लिया है। पूरे सत्र में बेल्जियम ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया और अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। टूर्नामेंट में इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर रहा। बेल्जियम की इस सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह विश्व हॉकी की सबसे मजबूत टीमों में शामिल है। प्रतियोगिता में भारतीय टीम आज अपना अंतिम मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। भारतीय टीम फिलहाल अंक तालिका में सातवें स्थान पर है। भारत की कोशिश रहेगी कि अपना आखिरी मैच जीतकर प्रो लीग के इस सत्र के अभियान का अंत शानदार तरीके से करे, ताकि अगस्त में होने वाले FIH विश्व कप से पहले टीम का मोराल बूस्ट हो। विश्व कप में भारतीय टीम ग्रुप डी का हिस्सा है, जहां इंग्लैंड, वेल्स और पाकिस्तान से मुकाबला होना है। हॉकी के बाद अगर बात करें फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल की, तो आज 79th यानी कि 79वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की थीम रही नशा मुक्त भारत अभियान। और बात करें शिवांश, इसके अलावा जल्दी से अंडर 15 एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की, उससे पहले बता देते हैं इंडिया और आयरलैंड के बीच जो मैच खेला जाने वाला है उसमें आज सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव दोनों ही खिलाड़ी भारत की तरफ से डेब्यू करने वाले हैं। और विमेंस टी20 मैच में जो मैच चल रहा है बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का, वहां पे ताजा स्कोर अगर साउथ अफ्रीका का कहें तो 95 रन 4 विकेट के नुकसान पर 16.3 ओवर में। और अंडर 15 एशियन रेसलिंग की बात करें तो वहां से भारत के लिए अच्छी खबर है। 62 किलो भार वर्ग में दर्पण राजू चौधरी स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। 68 किलोग्राम भार वर्ग में यश ने रजत पदक और 75 किलो भार वर्ग में गौरव पाटिल ने भी रजत पदक जीता है। वहीं 85 किलो भार वर्ग से भी जतिन रजत पदक के साथ भारत की झोली में पदक डाल चुके हैं। धोचक प्रयास ने 57 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ये सभी ग्रीको रोमन वर्ग से पहलवान में जो मेडल हासिल किए हैं भारत ने, उसकी बात करी। और अगर बात करें शिवांश, इसके अलावा ग्रीको रोमन वर्ग में ही टीम चैंपियनशिप की, तो वहां भी 150 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है भारत ने। अंडर 15 महिला पहलवानों की भी बात करें तो वहां से अच्छी खबर आ रही है। भारत की 5 पहलवान जो है वो स्वर्ण पदक के मैच खेलेंगे, और जबकि 39, 54, 68 और 62 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक के मैच भी होंगे। तो शिवांश, खेल की खबरें और भी बहुत कुछ हो सकती हैं, लेकिन आज समय इतनी ही इजाजत देगा। तो आज इस कार्यक्रम से मुझे, अतुल को
0: और शिवांश को
1: हमारे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ दीजिए इजाजत।
2: खेल खिलाड़ी,
3: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
4: आई केम हियर बिकॉज आई बिलीव दैट सेशल ऑक्यूपाइड अ स्पेशल प्लेस इन इंडियाज विजन फॉर द इंडियन ओशन। टुडे एज आई रिटर्न हियर आफ्टर अ डेकेड दैट कन्विक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन एवर एंड आई एम डिलाइटेड टू ज्वाइन यू एज यू सेलिब्रेट 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
3: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
4: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment

0: conservation, I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। ये भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है। भारत ने आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi today stated that climate action must be guided by fairness, responsibility and equity. In his special address to the National Assembly of Seychelles, Prime Minister said, "This is the essence of climate justice." He emphasized that Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive and where international institutions reflect contemporary realities.
0: Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive. We both seek a world where international institutions reflect contemporary realities. We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively, and fairly.
2: Mr. Modi said Seychelles occupies a special place in India's vision for the Indian Ocean and that conviction is stronger than ever. He said the Indian Ocean does not separate India and Seychelles but connects the two countries. He addressed that it will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation.
0: Our vision is captured in the idea of Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar. This vision recognizes that our futures are interconnected and interdependent, and we will continue to work together for a safer and more secure Indian Ocean region.
2: Prime Minister said it is a special honor to stand before everyone as the first Indian Prime Minister to address the National Assembly. He also thanked President and the people of Seychelles for honoring

0: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल। आज के संक में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम, फिक्की द्वारा आयोजित इंडिया इनोवेटिव क्रॉप न्यूट्रिशन कॉन्क्लेव 2026 और संगीत नाटक अकादमी द्वारा विश्व संगीत दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम। 24 जून बुधवार को केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन परिसर में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल की गरिमामय उपस्थिति में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री और विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल ने संवाददाताओं से बातचीत की।
1: ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी, आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर बीच में शिवाजी पार्क स्टेडियम जो है उसका स्टेशन आएगा, ये पूरा लूप बनेगा।
0: 23 जून मंगलवार को तानसेन मार्ग स्थित फिक्की फेडरेशन हाउस सभागार में इंडिया इनोवेटिव क्रॉप न्यूट्रिशन कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रशासकों, नीति निर्धारकों, उद्योगपतियों ने भाग लिया और क्रॉप न्यूट्रिशन के संदर्भ में गहन विचार विमर्श किया। इस आयोजन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि आयुक्त डॉक्टर पी के सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत की और उन्होंने ये जानकारी दी।
2: हम लोग जो खेत बचाओ अभियान कर रहे हैं उसका बेसिक एम यही है कि आप जो है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की ओर बढ़ें किसान, और साथ में अगर ये देखें कि जहां एक्सेस

0: डाइवर्जन हो रहा था फर्टिलाइजर्स का, उसको रोकने की कोशिश हो रही है कि वो किसान भी उसमें आगे आए। जितना जरूरत है, सॉयल हेल्थ कार्ड सबके पास है, उसके आधार पे फर्टिलाइजर का प्रयोग करें तो कमी नहीं है। अगर आप सीरियल से पल्सेस की ओर शिफ्ट करते हैं, अपने आप फर्टिलाइजर का यूटिलाइजेशन कम होता है ना। कहीं अगर 125 केजी नाइट्रोजन की जरूरत होती है मक्के में, तो 12.5 किलो केवल चाहिए तूर में, या 25 केजी चाहिए सोयाबीन में। इन दैट वे अगर डाइवर्जन होता उस तो कोशिश ये है कि श्री अन्ना की ओर, पल्सेस की, हमारे जो मिशन चल रहे हैं तीन ना, दलहन मिशन है, तिलहन मिशन है, और फिर आपका कॉटन मिशन भी शुरू हो गया है, तो कोशिश है कि इनकी ओर डाइवर्ट करें किसान। और जो हैवी न्यूट्रिएंट लेने वाले हैं, जैसे राइस है, उसमें पानी भी ज्यादा चाहिए, न्यूट्रिएंट भी ज्यादा चाहिए, तो उधर से डाइवर्जन हो इन फसलों की ओर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसमें भी ब्लॉक लेवल पे कहां पानी की क्या सुविधा है, उसके हिसाब से फसल का चयन होता है। तो जो कृषि धनधान योजना है, उसमें 100 जिले जो थोड़ा पिछड़े रह गए हैं प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, या क्रेडिट या अन्य चीजों के हिसाब से, तो उनको आगे बढ़ाने की भी कोशिश चल रही है। तो उन सभी के लिए काम किया जा रहा है। IMD से जैसे जैसे सूचना आ रही है, उसके आधार पे कंटीजेंसी प्लान, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंटीजेंसी प्लान बन गए हैं। सबको सेंसिटाइज भी कर दिया गया है, सभी स्टेट्स को, और उसके आधार पे आगे अब जहां जहां जैसे बरसात की स्थिति हो वैसे वो कंटीजेंसी प्लान लागू होंगे। 2015 में जो अल नीनो आया था, ऑलमोस्ट वैसा ही कंडीशन है। तब से हमारे इरिगेशन की सुविधाएं बहुत बढ़ी हुई हैं देश में 10 साल में पिछले, तो जितना जो भी असर होगा उसको देखा जाएगा। राइस स्वीट के तो भंडार बहुत अच्छा है, पल्सेस में भी, चना इस बार बहुत अच्छी फसल थी, उसका भी भंडार बहुत अच्छा है, और बाकी जहां कमी होती है, कहीं इम्पोर्ट करने की जरूरत होगी तो इम्पोर्ट किया जाएगा। तोर में पहले भी इम्पोर्ट होता रहा है, इस बार भी अगर जरूरत पड़ेगी तो होगा। अच्छा ये है कि थोड़ा सा कि अगर सूखा की स्थिति, थोड़ा सा मानसून डिले होता है तो पल्सेस की ओर शिफ्ट होता है किसान, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन कम पानी में होने वाली फसल है। तो श्री अन्ना है, पल्सेस है, इसका एरिया अभी वो थोड़ा बढ़ा हुआ भी दिख रहा है पिछले साल की तुलना में। इस साल इनका एरिया अभी तक बढ़ा हुआ है, खासतौर से मूंग का, जैसे राजस्थान में काफी एरिया बढ़ा हुआ है, ऑयल सीड में भी कुछ एरिया बढ़ा है। तो लेट अस सी, अभी तो अब सेकंड अनुमान अभी आएगा जुलाई के रेनफॉल का, अभी तो ठीक है, अभी 40% कमी है बारिश की पूरे देश के हिसाब से देखें।
1: 21 जून रविवार को मंडी हाउस स्थित संगीत नाटक अकादमी द्वारा विश्व संगीत दिवस के अवसर पर एक सांगीतिक प्रस्तुति का आयोजन किया गया।

0: इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ता। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रत्यपादयत् यत् स्वदेशी प्रतिरक्षोत्पादने सविशेषं बलं विधाय भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना देशस्य नागरिकाणां प्रति कार्तज्ञभावं ज्ञापितम्। यतोहि जनैः स्वर्णक्रयणं विदेशयात्रा च किञ्चित् कालं यावत् स्थगिता। सेशल्स् देशस्य विक्टोरियानगरे आयोजितायाः प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तायाः अनन्तरं भारत सेशल्स् देशयोर्मध्ये स्वास्थ्यं वित्तं समेत्य अन्तरिक्षादि विविध विषयेषु महत्वपूर्ण सहमति पत्रेषु हस्ताक्षराणि अभवन्। प्रशासनेन भारतीय नागरिकाः संचेतिताः यत् ते सर्वेषाम् आवश्यकानां यात्रापत्राणां पूर्तिकया विना कैलाश मानसरोवर यात्रां न आरभेरन्। पश्चिमेशिया देशे सुरक्षा स्थितिः तीव्रगत्या अपक्षीयते, यत्र संयुक्त राज्य अमेरिका ईरानः उभावपि परस्परं नूतनानि सैन्य आक्रमणानि अकुरुताम्। अपि च आईसीसी महिला T20 विश्वकप स्पर्धा मालिकायां भारतीय महिला दलम् अद्य लंडन नगरे ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्ट।

0: वार्ताः विस्तरेण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सविशेषं प्रत्यपादयत् यत् भारतेन जून मासे वैमानिकी क्षेत्रे एका महती सफलता अर्जिता यत्र स्वदेश निर्मितस्य मेक इन इंडिया C-295 सैन्य परिवहन विमानस्य प्रथमं परीक्षण उड्डयनं सफलतापूर्वकं सुसम्पन्नम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे जनान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा इयं सूचना प्रख्यापिता यत् सम्प्रति एतादृशानि चत्वारिंशत् विमानानि भारतदेशे एव विनिर्मीयन्ते।
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदिना गदितं यत् देशे अन्ये केचन महत्वपूर्णाः प्रयासाः विधीयन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे देहल्यां स्थितः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा साइंस इत्यादिषु आधुनिक विषयेषु बीटेक पाठ्यक्रमस्य शुभारंभं विदधाति।
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी सहर्षं न्यगादीत् यत् अद्य भारतीय संस्कृतिः विश्वस्मिन् हि विश्वे प्रसरति। श्री मोदी गौरवान्वितः अस्ति यत् भारतेन अस्मिन् मासे देशस्य सुरक्षायाः आत्मनिर्भरतायाः च क्षेत्रे महती सफलता समर्जिता। सः कोलकाता नगरे आयोजितम् एकं नौसेना सम्बन्धि कार्यक्रमं सम्बोधितवान् यत्र INS दुनागिरि, INS संशोधक, INS अग्रयश्च भारतीय नौसेनायाः क्षेत्रे समाविष्टाः। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति।
1: कोलकाता में INS दुनागिरि, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: मोदिना अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य अपि उल्लेखो विहितः। तेन अहमदाबाद नगरे आयोजितायाः विश्व योगासन प्रतियोगितायाः विषये कथितं यत् अस्यां भारतेन 2,100 स्वर्ण पदकैः सह आहत्य 14,100 पदकानि विजितानि। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यत् राष्ट्रनिर्माणे जनसहभागितायाः शक्तिः भारतस्य कृते एका महती सम्पत्तिः वर्तते।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: अनेन सहैव श्रीमोदिना प्रोदीरितं यत् आगामि गणेशोत्सवाय गणपति बप्पा भगवतः प्रतिमा अनिवार्यरूपेण अस्यैव देशस्य मृत्तिकायाः भवेत्। सा च स्थानीय कुम्भकारैः शिल्पिभिः विनिर्मिता स्यात्। तेन मूर्तिनिर्मातारः अपि अनुरुद्धाः यत् ते मृण्मयमूर्तीणां निर्माणाय एव प्राथमिकतां दद्युः। स्वीय सम्बोधनस्य चरमे सोपाने प्रधानमन्त्रिणा जलसंरक्षणस्य विषये च बलं प्रदत्तम्। तेन कथितं यत् वर्ष

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम राम, राम।
0: अश्वनी भाई
1: जी, ननका भाई,
0: भाई आज तो भाइयों की फरमाइश का दिन है
1: जी।
0: और बहुत सारे संदेश और पत्र हमारे पास आ चुके हैं
1: जी।
0: और लेकिन भाइयों से एक बात जरूरी करनी है भारत माला परियोजना के बारे में
1: जी।
0: और ये जो परियोजना है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, बहुत ही महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास की परियोजना है
1: जी।
0: और इसका उद्देश्य है कि हाईवे का जाल बिछे और बंदरगाहों और सीमाओं को जोड़ा जाए, और इससे क्या होगा कि हमारे जो प्रमुख उद्योग हैं उनके तरफ ध्यान होगा, हमारे खेत जुड़ेंगे और जो दूर दराज के इलाके हैं वो भी जुड़कर मुख्यधारा में आ पाएंगे, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो परिवहन है वो उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाता है ताकि के हमारे खेतों के रास्ते भी सही हों। और जो एक योजना ग्रामीण परिवहन और सड़क सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि इन सड़कों पर हमें नियमों का पालन भी करना चाहिए ताकि हम भी सुरक्षित रहें और उस पर चलने वाले दूसरे लोग भी सुरक्षित रहें। और अश्वनी, अब भाइयों की जो फरमाइश है उनमें सबसे पहले जो फरमाइश हमारे पास है वो है रोमेंद्र नागर और विनय नागर की।

0: और उनका परिवार। ये हैं पुरुषोत्तम कुमार, गांव डंडी, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से, और उंगाला, जिला अंबाला, हरियाणा से, राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और इनका परिवार। ये हैं एकता कॉलोनी रोहतक से, सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, और चौधरीवास से राजू अग्रवाल, केशव, विवेक, प्रियांशी और इनका परिवार। ये है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, लक्ष्मी देवी, कीर्तनपुरी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी और इनका परिवार।
1: जी, ये एक और पत्र हमें मिला है, शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। चंडीगढ़ से पत्र हमें आया है, सतीश अनेजा, बिमला अनेजा और उनका पूरा परिवार। और ये पत्र हमें भेजा है, ये बहरा वाला खुर्द सिरसा से है, बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया हिमानी और उनका पूरा परिवार। और हनुमानगढ़ टाउन से पत्र मिला है, ये सुल्तान सिंह, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव, कांता चौधरी और उनका पूरा परिवार, जिन्होंने सुनना चाहा है रामेंद्र नागर और विनय नागर को।
0: और ये है डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से, राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, तन्मय गजबिये, और ये है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से, राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी और इनका परिवार। ढाणा नरसाना भिवानी हरियाणा से, जंदीश चिंडालिया, राजवीर चिंडालिया, सतीश चिंडालिया और इनका परिवार। ये हैं भोला कॉलोनी घरोंडा आजिला करनाल हरियाणा से, विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और इनका परिवार। और ये सरवर नीर के किस्से की रागनी है अश्वनी भाई
1: जी।
0: जब राजा अपना राजपाट दे देते हैं दान में, और सब जो राजा अम्ब है, इमली रानी है, सरवर और नीर है, जब महल छोड़ के चल पड़ते हैं ना, उस मौके की रागनी है। सुनते हैं भाइयों की पसंद पर रोमेंद्र नागर और विनय नागर की आवाज में।

0: रोमेंद्र नागर और विनय नागर के बाद जो अगली फरमाइश है वो है सतपाल और उषा सेठ को सुनने के लिए।
1: और ये पत्र हमें मिला है, ये पत्र हमें आया है MLB रोड ग्वालियर से, सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लवन्या, आरफ, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज और उनका पूरा परिवार यहीं पर ये पत्र को शामिल कर लेते हैं। ये शिवाजी नगर देशमुख से पत्र लिखा है, राजेश राजेश जी हैं और इनका पूरा परिवार है। ये है खांडी बुलखांडा, ये है दीपाली राम धाड़े और स्वराज राम धाड़े, इनका और इनका पूरा परिवार यहीं पर है। गांव मुरादगढ़, जिला करनाल, हरियाणा से राकेश कुमार कंबोज, पिंकी कंबोज और उनका पूरा परिवार। और बहरवाला खुर्द हिसार से है बलवंत सिंह, ममता, प्रिया और उनका पूरा परिवार। वहीं पर एक और पत्र में शामिल कर लेते हैं, ये संजय ढींगिया और नमन ढींगिया और अपार ढींगिया और उनका पूरा परिवार। पंजाब खेड़ा से पत्र मिला है, ये है मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती और अरोड़ा, उनका पूरा परिवार।
0: गांव सूप, जिला बागपत से कृष्ण कुमार, रमेश कुमार, सुरेश कुमार, मदन मोहन, अश्वनी, आशीष, अभिषेक, शितिन, लक्ष्य, नेहा, निकिता और श्रेयांश, ये है गांव बधेव, जिला शामली से डॉक्टर सहेंद्र पाल शर्मा, हरेंद्र शर्मा, बबीता शर्मा और आशुतोष शर्मा। गांव रठोड़ा, जिला बागपत से पुष्पेंद्र शर्मा, रीता शर्मा, अनमोल और खुशी शर्मा। और जो
1: और ये विक्रम कंडवासरा, सचिन कंडवासरा, सतीश कंडवासरा, योगेश और उनका परिवार, पूरा परिवार, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से पत्र में भेजा है। ये है

0: कोटवाड़ा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से पत्र मिला है। ये है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय और उनका पूरा परिवार। ये दुबैया नेवदवाला जिला गाजियाबाद से पत्र मिला है, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और उनका पूरा परिवार। ये जी
1: और ये अश्वनी
0: जी
1: जो दोगाना है वो
0: जी
1: बहन भाई आपस में बात कर रहे हैं, जब शादी के बाद उषा सेठ सतपाल के यहाँ फिरौती लेके जाती हैं तो क्या दोनों भाई बहन की बात होती है, सुनते हैं भाइयों की पसंद पर।

0: सतपाल और उषा सेठ के बाद अश्विनी भाई अब जो अगली फरमाइश है नरदेव बेनीवाल को सुनना चाहा है और इसके लिए जो पत्र हैं
1: जिसके लिए जो फरमाइश आई है वो गांव लोहागढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दरजीत सिंह, राजदीप गुलगार और उनका पूरा परिवार वहीं गुलाम कुलमाल रोड हर गोविंद नगर नवाशहर पंजाब से है। ये है अनीता सिंधु, रोहित सिंधु, रितेश सिंधु,
0: बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से सुरेश ग्रोवर, बेबी ग्रोवर, गौरव और इनका परिवार। ये है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और इनका परिवार। और ये है दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू और इनका परिवार। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गोड़। ये हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, करण बत्ता और इनका परिवार। ये हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। ये हैं महिपाल श्योरान, नीरू उत्कर्ष और दिव्यांश, गांव बद्दू चैना, जिला भिवानी, हरियाणा से। और अगले जो संदेश है वो है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने और इनका परिवार। नूर महल महसूल सीतामढ़ी से मुसरत जहानाज, तलत जहां और इनका परिवार। तो सुनते हैं इन सबकी पसंद पर राजा हरिश्चंद्र के किस्से में से नरदेव बेनीवाल की गाई है रागिनी।

0: अश्वनी भाई, मैसेज लगातार भाइयों के आ रहे हैं और ये हैं हमारे पास सज्जन जांगड़ा जी। इन्होंने अभी अभी मैसेज भेजा है कि सतपाल उषा सेठ का जो दो गाना है इन्होंने बहुत सालों बाद सुना है, इसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। भाई हमारा तो यही उद्देश्य है कि आपकी पसंद के अनुरूप हम कार्यक्रम दें और सतपाल उषा सेठ को तो हम सुनवाते रहते हैं, हो सकता है इन्होंने काफ़ी दिनों बाद सुना हो। खैर आपने पसंद किया, आपका धन्यवाद। और अगली जो फरमाइश है सुनीता पांचाल के लिए है,
1: उनके लिए पत्र मिला है नगर निगम वार्ड नंबर 28 से, ये उनको लिखने वाले हैं। ये है वसीम अकरम, अरजव वसीम, नदीम शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, उनका पूरा परिवार। ये पत्र में भेजा है नरवेला महाराज से है। ये पीएस नेवाकर, निर्मला और विशाल, उनका पूरा परिवार। ये है मलकापुर महाराष्ट्र से, सोपने तावड़े, नारायण आशीष
0: और अश्वनी भाई। हम नाम कृषि में पढ़ लेंगे, सुन लेते हैं सुनीता पांचाल को जी।

0: और इसी के साथ ही हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम
0: राम, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 है। अब कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुन सकेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चारू सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स के राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान है और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
2: आई केम हियर बिकॉज आई बिलीव दैट सेशल ऑक्यूपाइड अ स्पेशल प्लेस इन इंडियाज विजन फॉर द इंडियन ओशन। टुडे एज आई रिटर्न हियर आफ्टर अ डेकेड दैट कन्विक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन एवर एंड आई एम डिलाइटेड टू ज्वाइन यू एज यू सेलिब्रेट 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
1: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर के द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
2: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमाइनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री

0: राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी मजबूती है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा। श्री मोदी ने लोगों से स्वर्ण खरीद से बचने, गैर जरूरी विदेश यात्रा टालने और कुछ समय के लिए कार पूलिंग की अपील की थी। उन्होंने किसानों से रसायन मुक्त कृषि अपनाने, कृषि भूमि का संरक्षण करने और प्राकृतिक उर्वरकों को अधिकतम उपयोग करने को भी कहा था। प्रधानमंत्री ने अपनी अपील का समर्थन और सहयोग करने के लिए नागरिकों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। ये कार्रवाई शुक्रवार को होर्मुज़ जलडमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। अगले ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का ये अंतिम मुकाबला है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। भारत के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 87 रन बना लिए। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने एबीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम राम, राम। जी रेणुका भाई,
0: अश्वनी, देखिए कि जो हमारा कृषि जगत कार्यक्रम है इसमें हम कृषि की बातें अपने भाइयों से करते हैं और जो जरूरी इस समय की बात है वो है कि बारिश का महीना आने वाला है
1: जी।
0: और मौसम विभाग की तरफ से भी जानकारी मिल रही है कि अभी जुलाई के शुरुआत में कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है, दिल्ली के आसपास भी, क्योंकि जो हमारे दक्षिणी राज्य हैं उनमें अभी बारिश हो रही है और जहाँ पर ज़्यादा बारिश का जब शुरुआत हो जाती है तो हम भाइयों को सलाह देते हैं कि धान की रोपाई का काम उन्हें पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि जब बारिश होती है तो हमारे धान की फसल अच्छी जड़ पकड़ लेती है। इसके अलावा जिस समय जो मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली या तिल की बुआई है उसका भी समय चल रहा है और उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो भाइयों को खेत की तैयारी पहले से रखें और इसके बाद चुनाव करें बीजों का, और बीज अच्छी तरह से जो प्रमाणित जगह है वहाँ से लेना है, भरोसे की जगह से लेना है, और ये ध्यान रखना है कि बीमारियों से फसलें बची रहें, उनको उपचारित करके उसकी बिजाई करनी है। और इस तरह से जब बारिश की हम बात करते हैं, इस बारिश के महीने में बहुत सारे पौधे हमारे ऐसे हैं जो अच्छे चलते हैं, लेकिन जब जल भराव की समस्या होती है, ख़ास तौर पर अगर पौध है, चाहे सब्जी की पौध है या धान की पौध है, धान वाली पौध में तो खैर पानी की मात्रा चल जाएगी, लेकिन सब्जी की फसल की अगर कहीं भी आपकी पौध पानी के अंदर जल भराव में आ जाती है तो ख़राब हो जाती है। तो जल निकासी का प्रबंध भी आपको रखना है।

0: बारिश का मौसम देखते हुए, और इसके साथ साथ जो फसलें आप इस समय बिजाई करेंगे उसके 20-25 दिन के बाद अश्विनी भाई उनमें खरपतवार आने की समस्या दिखाई देने लगती है, तो उनको आप निकालते रहें। अच्छा है कि लाइन में अगर आपने फसल बोई है तो उसमें खरपतवारों को आप फावड़े या खुरपी से आराम से निकालें, रसायनों का प्रयोग ना करें तो अच्छा है, क्योंकि खाद्यान्न की फसलों में कुछ ना कुछ असर फिर रसायनों का रह जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और दूसरी बात यह है जमीन के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, और फिर खर्चा तो आपका उनमें आता ही है।
1: बिल्कुल
0: इसके साथ साथ जब बारिश होती है तो जब नाइट्रोजन की मात्रा किसान भाइयों को देने की सलाह होती है, जब आप टॉप ड्रेसिंग करते हैं यानी छिड़काव करते हैं, तो छिड़काव में सीधी पौधों को एकदम मिलती है, और यूरिया की मात्रा भी आपको कम देनी पड़ती है, उसका असर सीधा होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो जिस समय आप छिड़काव कर रहे हैं उसके तुरंत बाद बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश बंद होने के बाद में आपको ये छिड़काव करना चाहिए। और जो धान की फसल है या फिर हमारी सब्जियों की फसल है, अगर किसी भी फसल के अंदर आपको किसी तरह की भी समस्या कीटों की आती है, बीमारी की आती है, तो उसका तुरंत नियंत्रण किया जाना जरूरी है, क्योंकि इस मौसम में उमस ज़्यादा होती है, जब बारिश होती है तो बीमारियां भी ज़्यादा आने का डर रहता है। अगर उनका नियंत्रण आप नहीं करते हैं तो आपकी फसल के उत्पादन पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और गुणवत्ता भी खराब होती है। इसीलिए समय समय पर अपने फसल की निगरानी करते रहें और कीटों और बीमारियों से इन फसलों को आपको बचाना है।
1: बिल्कुल
0: और इसके साथ साथ जो खास तौर पर जैसे आम है, अमरूद है, नींबू है, टमाटर है, मिर्च है, भिंडी है, या फिर बेल वाली सब्जियां हैं, अगर पानी ज्यादा इन खेतों में हो जाता है तो ये बिल्कुल खराब होने लगते हैं। इनमें खास तौर पर आपको जल निकासी का प्रबंध रखना है, नहीं तो आपकी फसल खराब हो जाएगी, और बेल तो पानी के अंदर डूबने के बाद फल भी और बेल भी दोनों ही खराब हो जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: इसीलिए जल निकासी का इंतजाम रखना है। और खास तौर पर जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में ज्यादातर बीमारियां आती हैं पशुओं के अंदर, इसलिए टीकाकरण पहले से करवा लेना चाहिए। अगर नहीं करवाया है तो टीकाकरण अभी भी करवा लें। गलघोटू या मुंह पका खुरपका का जो टीका है वो पहले से ही आप लगवा लेंगे तो खतरनाक बीमारी है गलघोटू, उससे बचाव आपके पशुओं का हो जाएगा। अश्विनी भाई बहुत महंगे हैं पशु,
1: जी बिल्कुल
0: अगर भाई इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो नुकसान हो सकता है, और टीके से काफी बचाव हो सकता है। और इसके साथ साथ जब इन मौसम में हम देखते हैं कि ब्यात का भी समय होता है,
1: जी
0: अगर कटड़ा कटड़ी बछड़ा बछड़ी हैं उनको अगर पेट में कीड़े हो जाते हैं कई बार, तो कीड़ों से बचाव के लिए भी दवाई दे देनी चाहिए उनको। आपके पास के पशु चिकित्सालय हैं उनमें आप जा करके दवाई ला सकते हैं, और 3-4 माह के अंतराल पर उनकी सलाह पर आप इन कीड़ों की दवाई अपने छोटे जो पशुओं के बच्चे हैं उनको दे सकते हैं, इस तरह से वो बचे रहेंगे। इसके बाद कलीली और चींचड़ी की समस्या भी कई बार आती है अपने बाड़े में, और वो ना केवल छोटे बच्चों को बल्कि जो बड़े पशु हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और आप क्या करते हैं, खरारा करते हैं या उनको अलग कर देते हैं खाल से कलीली को, अब क्या होता है कि उन्हें तो आप साफ कर देते हैं लेकिन उनके अंडे जो होते हैं वो उनके खूंटों के पास में या दीवारों में छुपे होते हैं, वो फिर बड़े होकर के फिर बड़ी कलीली बन जाते हैं और पशुओं का खून चूसते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कटड़े कटड़ी के तो कई बार जब वे खून चूस लेते हैं तो बाल उड़ जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं पशु, और हम जानते हैं कि जो छोटे पशु हैं उनका भी ध्यान हमें बहुत ज़रूरी है। अगर किसी तरह से किसी पशु को परेशानी होती है तो दुधारू पशु में खास तौर पर दूध निकालने में फिर दिक्कत आती है, और यही कल के आपके पशु हैं, अगर छोटी बछिया है, छोटी कटिया है, आगे जाकर आपका दुधारू पशु तैयार होकर, जो भाई खेती नहीं है जिनके पास वो भी पशुपालन करके अपना रोजगार कमाते हैं, क्योंकि पशुओं का चारे का वो इंतजाम करके पशुपालन करते हैं और जो उनके रोजगार का साधन भी बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है पशुपालन तो हमारे किसान भाई जिनके पास जमीन है वो तो जरूर करते हैं, क्योंकि जो पशुओं के लिए चारा दाना है वो तो हमारे पशुओं को अपने खेतों से मिल जाता है, और पशुपालन का काम अगर कोई

0: करता है तो उसको आसानी इसलिए भी रहती है कि सारा सामान, चाहे वो दाना है चाहे चारा है, वो हमारे खेतों में मिल जाता है। अब हम अपने जो युवा साथी हैं उनको भी ये कहना चाहेंगे कि जो कृषि आधारित रोजगार हैं, अगर वो उसको करते हैं उसमें उनको ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। एक तो जो शहर की ओर दौड़ की होड़ लगी हुई है वो कम हो जाती है।
1: बिल्कुल, ये सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो होड़ लगी हुई है शहरों से, द गांव से शहरों की ओर जाना है, यहाँ गांव में रहकर कोई रोजगार नहीं करना है, चाहे वहां पर 15-20 हज़ार की नौकरी क्यों नहीं करनी पड़े, वहां पर वो समझते हैं कि अपना कि मेरा मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। गाँव में रहकर ही आप छोटे मोटे उद्योग लगाकर उतनी आमदनी आराम से कमा सकते हैं। और जैसे निरंकार भाई लगातार बता रहे हैं कि इन सब छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, जो जो सलाह दी जाती है इस मौसम में, बारिश के मौसम में, या कि जब ठंड का आगमन होगा तो अपने पशुओं की, अपने खेती की, अपनी ज़मीन की कैसे देखभाल करना है और करनी भी चाहिए, उनमें अगर इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लाभ ज़रूर कमाएंगे।
0: और जो रोजगार की हम बात करते हैं, जब आप शहर में जाके रोजगार करते हो तो जमीन भी किराए पे लेनी पड़ेगी, सारी जगह जो चीजें वहां पर आप खरीदोगे वो भी महंगी पड़ेगी।
1: बिल्कुल,
0: अपने गांव में रह करके बहुत सारी चीजें आपको सस्ती पड़ेंगी, उससे आपको ज्यादा लाभ भी होगा। तो बातें तो अपने किसान भाइयों से हम करते
1: बिल्कुल।
0: रहेंगे। अब कहो तो एक सुनवा देते हैं
1: ओम
0: उपदेश,
1: जी,
0: ये ओम वीर आर्य की आवाज में,
1: जी
0: और
1: उससे
0: कुछ
1: पहले
0: नाम
1: जी,
0: भी है वो
1: हाँ
0: भी
1: जी
0: पढ़
1: जी
0: लेते
1: जी
0: हैं।
1: जी नाम ये कुछ बचे हुए हमारे साथियों के हैं जो हमारे साथ इंतजार भी कर रहे होंगे। कस्बा बाड़ा, जिला अंबाला से ये पत्र में मिला है। ये है रवि कुमार, राहुल, रंजीत कुमार कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत और उनका पूरा परिवार। यहाँ पर एक पत्र और मिला है, ये है करालावाला दिल्ली से, है रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन प्रजापति। ये है चौक 5 MD पतोड़गढ़, जिला गंगानगर, राजस्थान से है मंगल मंगल जी, श्रीमती रोशनी, अंकुर और डॉक्टर सुनील और उनका पूरा परिवार। ये है गांव पंचायत बैठना पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से है बालकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा और उनका पूरा परिवार। ये है रघुनाथपुर, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिमाना, हिमनी, हर्षित और उनका पूरा परिवार। ये है अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक मल्होत्रा और गावैक मोत्रा उनका पूरा परिवार। ये है परमजीत सिंह और ये गगनदीप कौर, गुरमीत कौर, परमजीत कौर और पाल। और ये पत्र मिला है शहर वाला पुराना वाला से पत्र मिला है। ये है गांव थाना पंजाब से हरिंदर छिप्पा, जसबीर छिप्पा और उनका पूरा परिवार। और गांव नाईवाला, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से बेद मंडा, अलका मंडा और उनका पूरा परिवार। और ये है ऊपर कोट मोहल्ला चौकटी बुलंदशहर से पत्र मिला है मोहम्मद साइद अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहाना अब्बासी और उनका पूरा परिवार। ये है बिलाई छत्तीसगढ़, रोशन लाल देवगन, कौशल्या देवगन, हेमलता देवगन और इनका पूरा परिवार।
0: नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा और इनका परिवार। ये हैं ग्राम पंजोनिया जिला जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंदोलिया, आदर्श सार्थक आलोक और चंदोलिया। और ये हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़ और मन्नत मक्कड़, लिखने वाले हैं ये पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से। और इसादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। ये हैं दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि नोकेलाल। और गांव रावतखेड़ा जिला हिसार हरियाणा से सियाराम भादू, सुशील भादू और इनका परिवार। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया और इनका परिवार। ये हैं कबीर रेडियो श्रोता संघ डांडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया। गांव खोखरावाली जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से विनोद बाराशा, विशाल बाराशा, विकास बाराशा। और नलोई तहसील शिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक वेदांश। और ये है भोला कॉलोनी घरोंडा से विजेंद्र कुमार जयजान, कांतारानी, गुंजन, साहिल और इनका परिवार। ये है कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन मयंक शर्मा। और ये हैं मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा और इनका परिवार। और ये है नूर

अहल महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज़, तलत जहानाज़, फरत जहानाज़ और इनका परिवार। ये हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा और इनका परिवार। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और उनका परिवार। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीये, राधिका गजबीये, तन्मय गजबी और इनका परिवार। तो सुनते हैं ओमवीर आर्य को।

0: और इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 है। शाम के 7:30 हो चुके हैं। आइए अब सजाते हैं महफिल गजलों की, और इस गजल के कार्यक्रम का आगाज जगजीत सिंह साहब की आवाज के साथ।

चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे की ओर और सुनवाते हैं आपको एक बार फिर जगजीत सिंह साहब की आवाज में फिल्म सरफरोश से ये गजल।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी गजल की ओर। हम आपको सुनवा रहे हैं भूपिंदर सिंह और सुरेश वाडकर साहब की आवाज में फिल्म मासूम से ये गजल।

0: इसी के साथ इस कार्यक्रम से मुझे यानी दीप्ति को इजाजत दीजिए। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चारू सक्सेना। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के AI कार्यक्रम की सराहना की। दिल्ली मेट्रो को सार्वजनिक परिवहन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा ऑपरेशनल एक्सीलेंस वर्ग में अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिल्ली सरकार जन सहभागिता को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक रविवार को स्वच्छता, यमुना सफाई और वृक्षारोपण जैसे जनहित अभियानों का आयोजन करेगी। दिल्ली की सभी झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनियों में जन सुविधा परिसर बनाए जाएंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी मजबूती है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए युवाओं को तैयार करने के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकी के बीच भारत की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहने के कार्यक्रम का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है।
7: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
6: प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 135वें कड़ी को आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारियों और भाजपा राष्ट्रीय तथा दिल्ली प्रदेश कार्यालय के कर्मचारियों के साथ सुना। वहीं दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज रोहिणी सेक्टर 8B5 स्थित वरिष्ठ नागरिक केंद्र में मन की बात कार्यक्रम को नागरिकों के साथ सुना। इस अवसर पर महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि मन की बात केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि देशवासियों को जोड़ने वाला एक जन आंदोलन बन चुका है। दिल्ली मेट्रो को सार्वजनिक परिवहन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा ऑपरेशनल एक्सीलेंस वर्ग में अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

0: डीएमआरसी के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए ये पुरस्कार यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई गई उसकी स्मार्ट डोर टू डोर यात्रा सेवा के लिए प्रदान किया गया है। ये सेवा प्रथम और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, रियल टाइम सूचना तथा निर्बाध टिकटिंग को एकीकृत कर यात्रा को अधिक सुगम, सुविधाजनक तथा पर्यावरण अनुकूल बनाती है। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली मेट्रो ने बताया कि ये सुविधा दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप के माध्यम से उपलब्ध है, जो एआई पर आधारित एकीकृत प्लेटफॉर्म है। इस व्यवस्था के माध्यम से यात्री अपने घर से गंतव्य तक यात्रा की योजना बना सकते हैं और उसकी बुकिंग कर सकते हैं। इसमें घर से मेट्रो स्टेशन तक की यात्रा, मेट्रो यात्रा तथा मेट्रो स्टेशन से अंतिम गंतव्य तक की यात्रा शामिल है। वहीं यात्रियों को पूरी यात्रा के लिए केवल एकीकृत किराए का भुगतान करना होता है। यूआईटीपी का परिचालन उत्कृष्टता अवार्ड उन सार्वजनिक परिवहन संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जो दैनिक सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन, नवाचार और प्रभाव का परिचय देती हैं। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग विधानसभा स्थित पीतमपुरा शकूर बस्ती विधानसभा के वेस्ट एनक्लेव और मुस्तफाबाद विधानसभा के महालक्ष्मी विहार में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में सम्मिलित हुई। ये सम्मेलन माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, विकास और जन कल्याण के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने विकास और जनहितैषी योजनाओं में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित ये यात्रा आज विकसित भारत के संकल्प को जन जन का संकल्प बना चुकी है। उन्होंने कहा कि इसी प्रेरणा के साथ विकसित शालीमार बाग के निर्माण का अभियान निरंतर आगे बढ़ रहा है। साथ ही बेहतर सड़कें, सुदृढ़ आधारभूत सुविधाएं, स्वच्छ परिवेश और जनहित के कार्यों के माध्यम से विकास का लाभ प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री और विकासपुरी विधानसभा से विधायक पंकज कुमार सिंह ने आज अपनी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर आयोजित प्रबुद्ध जन नागरिक सम्मेलन में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने सुशासन, गरीब कल्याण, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों पर चर्चा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार जन सहभागिता को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक रविवार को स्वच्छता, यमुना सफाई और वृक्षारोपण जैसे जनहित अभियानों का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज चिल्ला गांव स्थित यमुना घाट पर आयोजित क्लीन दिल्ली विद सीएम स्वच्छता अभियान के दौरान ये घोषणा की। इस आयोजन में बड़ी संख्या में युवाओं, स्वयंसेवकों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों के साथ मुख्यमंत्री ने श्रमदान किया। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना नदी दिल्ली की स्मृति, संस्कृति और जीवनधारा है, साथ ही इसे स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाना केवल सरकार का दायित्व नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।
3: यह नदी हमारी अपनी है, यमुना हमारी माँ स्वरूपा है और इसे हमें गंदा नहीं करना है। जब ये सफाई अभियान यहाँ करते हैं तो इससे हजारों लोगों को मैसेज जाता है कि अब तक जो हमने किया कहीं ना कहीं उसे ब्रेक लगाने की जरूरत है, यमुना को हम गंदी नहीं कर सकते।
2: उन्होंने कहा कि सरकार वैज्ञानिक, स्थायी और व्यापक स्तर पर यमुना के पुनर्जीवन के लिए निरंतर कार्य कर रही है और स्वच्छ घाट उसी संकल्प का सजीव प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित युवाओं और स्वयंसेवकों की सराहना करते हुए कहा कि समाज में जागरूकता ही सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि पूजा सामग्री, प्लास्टिक, निर्माण मलबा और अन्य कचरे को यमुना में प्रवाहित न करें और स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 1 जुलाई को दिल्ली सरकार में ई ऑफिस व्यवस्था लागू होने का 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सरकारी कामकाज अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह हुआ है, जिससे लोगों को सरकारी सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने में मदद मिली है। एक रिपोर्ट।

0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 27 जून 2026 तक 235 विभागों और कार्यालयों के 15,748 अधिकारी और कर्मचारी ई ऑफिस प्रणाली से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ई ऑफिस व्यवस्था का दायरा और बढ़ाया जाएगा, जिससे दिल्ली में सुशासन को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि ई ऑफिस व्यवस्था के माध्यम से अब यह आसानी से पता चल जाता है कि कोई फाइल किस अधिकारी के पास लंबित है और उस पर क्या कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने ई ऑफिस व्यवस्था को 3 अलग अलग श्रेणियों में विकसित किया है। पहली श्रेणी पूर्ण रूप से सरकारी विभाग के लिए, दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, आयोगों, समितियों, स्वायत्त और स्थानीय निकायों के लिए तथा तीसरी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए बनाई गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: दिल्ली विधानसभा में यूथ आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित छात्र संसद में दिल्ली के छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें संसदीय लोकतंत्र के कामकाज को करीब से समझने का अनुभव मिला। दिल्ली विधानसभा ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही को देखकर, संसदीय परंपराओं को समझकर और विधानसभा परिसर का दौरा करके संवैधानिक मूल्यों और देश को मजबूत बनाने में नागरिकों की अहम भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। दिल्ली सरकार में मंत्री और भवाना क्षेत्र से विधायक रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज चांदपुर गांव में HT11KV विद्युत लाइन स्थानांतरण कार्य और चांदपुर कला के से चांदपुर खुर्द लिंक रोड के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाएं क्षेत्र में सुरक्षित और सुदृढ़ विद्युत व्यवस्था, बेहतर संपर्क मार्ग तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना को नई मजबूती प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि बवाना विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और जनहितकारी विकास कार्यों को गति देना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली की सभी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में जन सुविधा परिसर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार जो काम 11 साल में नहीं कर पाई, दिल्ली की भाजपा सरकार ने केवल 11 महीने में ही उसकी योजना बनाकर उसे लागू भी कर दिया। श्री बिधूड़ी ने ये बात आज तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़े झुग्गी कैंप इंदिरा कल्याण विहार ओखला फेज 1 में 66 लाख रुपए की लागत से बने सबसे बड़े जन सुविधा परिसर का शिलान्यास करते हुए कही। इस जन सुविधा परिसर में कुल 60 सीटें बनाई गई हैं, जिनमें से 30 पुरुषों के लिए और 30 महिलाओं के लिए। मिदुड़ी ने सबसे बड़े जन सुविधा परिसर के लिए फंड उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रवासियों की ओर से मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के प्रति आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार ने झुग्गी बस्तियों में विकास कार्यों के लिए 700 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से इन झुग्गी बस्तियों में वे तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनसे वे सुविधाजनक और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर ने जाति पंथ और ऊंच नीच से ऊपर उठकर प्रेम भाईचारे और एकता का संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि संत कबीरदास के दोहे और शिक्षाएं समाज को आज भी सही दिशा प्रदान करती हैं। मुख्यमंत्री ने ये बात आज संत कबीरदास के जन्मोत्सव के अवसर पर दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित एक भव्य राज्य स्तरीय समारोह के दौरान कही।
2: संत कबीरदास जी ने जीवन भर जात पात ऊंच नीच को छोड़ करके प्रेम प्यार समानता के भाव से रहने का संदेश दिया। उनके शिष्य हर समाज के थे, हर धर्म के थे।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार संत कबीर के नाम पर प्रतियोगिताएं और पुरस्कार प्रारंभ करेगी। दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में कल्याणपुरी और मंडावली से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से लगभग 1500 अवैध शराब की बोतलें बरामद की। पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। राजधानी में आज उमस भरी गर्मी के साथ तेज धूप से लोगों को दिक्कतें हुई। हालांकि दिन ढलते ही मौसम में बदलाव देखने को मिला, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के

0: आसपास रहने का अनुमान है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर 01132317711 01123717106। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के AI कार्यक्रम की सराहना की। दिल्ली मेट्रो को सार्वजनिक परिवहन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा ऑपरेशनल एक्सीलेंस वर्ग में अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत,
3: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रही हैं डॉक्टर कीर्ति काले।
7: नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति काले इस कवि गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। और आज हमारा सौभाग्य है कि इस कवि गोष्ठी में हमारे साथ 3 वरिष्ठ रचनाकार समाहित हैं और एक मैं हूं। हमारे साथ में है डॉक्टर शिव नारायण जी जो कि पटना बिहार से हमारे साथ में हैं, श्री राधेश्याम बंधु जी जो वरिष्ठ रचनाकार हैं, नवगीतकार हैं, हमारे बीच में हैं, और एक वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर सीता सागर जी हमारे साथ में हैं। तो आज ये विशेष कवि गोष्ठी है क्योंकि ये आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ये कवि गोष्ठी आयोजित की जा रही है। 2-3 दोहे सुनाती हूँ, उसके बाद मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूंगी। आकाशवाणी ने किए पूरे 90 वर्ष,
8: बहुत
7: आकाशवाणी ने किए पूरे 90 वर्ष, 90 वर्षों में हुआ प्रतिदिन नव उत्कर्ष।
8: बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत खूब।
7: समाचार संगीत अरु खेल ज्ञान विज्ञान, समाचार संगीत अरु खेल ज्ञान विज्ञान, कवि सम्मेलन शायरी सबको दिया वितान।
8: बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छे।
7: और छपे भले अखबार में टीवी करे बखान, कि छपे भले अखबार में टीवी कहे 50, जब बतलाता रेडियो तब होता विश्वास।
8: बहुत खूब, बहुत।
7: आकाशवाणी और रेडियो की विश्वसनीयता लगातार 90 वर्ष से बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। हम सबके जीवन का प्रारंभ, यानी हमारे नित्य प्रतिदिन जो हमारे समय का प्रारंभ होता है, वो आकाशवाणी के द्वारा जो ट्यून बजती है उसी से होता है। तो 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और सबसे पहले जिन्हें मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रही हूँ, वो बिहार के पाटलिपुत्र से हमारे बीच में आए हैं, तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर शिव नारायण जी, आप आइए और अपनी रचनाओं से हमारे श्रोताओं को लाभान्वित कीजिए।
9: धन्यवाद कीर्ति जी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर सबसे पहले मैं आकाशवाणी के प्रति अपनी शुभकामनाएं निवेदित करता हूं और एक गजल पेश कर रहा हूं।
7: स्वागत है।
9: चौखट पर मौसम का पहरा ठीक नहीं है।
7: क्या बात है।
9: चौखट पर मौसम का पहरा ठीक नहीं है।
8: बहुत अच्छे।
9: और आने वाली रुत का लहजा ठीक
8: नहीं है। वाह वाह वाह।
9: तुम चाहो तो रोज तलाशी ले लो मेरी, तुम चाहो तो रोज तलाशी ले लो मेरी, लेकिन तेरा अपना नक्शा ठीक नहीं है।
8: बहुत खूब।
9: लेकिन तेरा अपना नक्शा ठीक नहीं है। मेकअप चाहे जितना कर लो, मेकअप चाहे जितना कर लो, चेहरे पर तुम दुनिया बोलेगी यह चेहरा ठीक नहीं है।
8: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
9: मेकअप चाहे जितना कर लो, चेहरे पर तुम दुनिया बोलेगी यह चेहरा ठीक नहीं है। और क्या बतलाएं, बारिश होगी या ना होगी, क्या बतलाएं, बारिश होगी।

0: या न होगी, मौसम का यह बदला रुतबा ठीक नहीं है।
1: बहुत अच्छा।
0: और ये मक्ते का शेर कि शिव का द्वार खुला है, शिव का द्वार खुला है वो भी आ जाए तो, शिव का द्वार खुला है वो भी आ जाए तो, लेकिन उसका आना जाना ठीक नहीं है।
1: बहुत अच्छा।
0: चौखट पर मौसम का पहरा ठीक नहीं है, आने वाली रुत का लहजा ठीक नहीं है।
1: बहुत
2: बहुत अच्छा।
0: एक छोटे बहर की गजल और आप देखें।
2: जी स्वागत।
0: जिंदगी के नाम पर अपनी कहानी और है, जिंदगी के नाम पर अपनी कहानी और है, फूल है खुशबू है लेकिन रात रानी और है।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: जिंदगी के नाम पर अपनी कहानी और है, फूल है खुशबू है लेकिन रात रानी और है। मेरे हिस्से में तुम्हारे जख्मों के ये सिलसिले, मेरे हिस्से में तुम्हारे जख्मों के ये सिलसिले, जिस्म पर उभरी हुई उनकी निशानी और
1: बहुत
0: है।
1: अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत।
0: सब तो अपने हक में शायद ले गए अपने सुकून, सब तो शायद अपने हक में ले गए अपने सुकून, मेरे हक में जो बचे वो जिंदगानी और है।
1: बहुत अच्छे।
0: और कल तलक जो दोस्ती का दम्ब भरते थे, कल तलक जो दोस्ती का दम्ब भरते थे, यहाँ आजकल उन दोस्तों की मेहरबानी और है।
1: बहुत अच्छे।
0: आजकल उन दोस्तों की मेहरबानी और है। और ये मक्ते का शेर कि सिर्फ तुम्हारे नाम जो लेकर चले थे बैसाखियाँ।
1: बहुत अच्छे।
0: सिर्फ तुम्हारे नाम जो लेकर चले थे बैसाखियाँ, आज उनकी क्या गजब की ये जवानी और है। जिंदगी के नाम पर अपनी कहानी और है, फूल है खुशबू है लेकिन रात रानी।
1: बहुत अच्छे,
2: क्या कहने। वाह वाह।
0: एक छोटे बहर की ये गजल देखें आप। कैसी होती है खुददारी तुम क्या जानो, कैसी होती है खुददारी तुम क्या जानो, अलगू जुम्मन की लाचारी तुम क्या जानो।
1: बहुत अच्छे।
0: कैसी होती है खुददारी तुम क्या जानो, अलगू जुम्मन की लाचारी तुम क्या जानो।
1: बहुत अच्छे।
0: और आंख मिलाकर आंसू पीकर हंसते रहना।
1: बहुत अच्छे।
0: आंख मिलाकर आंसू पीकर हंसते रहना, कुछ लोगों की यह फनकारी तुम क्या जानो। कुछ लोगों की यह फनकारी तुम क्या जानो। और कागज पर खुशियों के, कागज पर खुशियों के खिलते फूल नए जो, नाम वही होता है सरकारी तुम क्या जानो।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: वही होता है सरकारी,
1: बहुत खूब।
0: सिर्फ भरोसा होता जिनको हाथों पर ही, सिर्फ भरोसा होता जिनको हाथों पर ही, कल उनका कितना है भारी तुम क्या जानो।
1: बहुत अच्छा।
0: और ये मक्ते का शेर, क्यों रहती है धड़कन में शिव प्यार मोहब्बत, क्यों रहती है शिव धड़कन में प्यार मोहब्बत, सांसों की यह दुनियादारी तुम क्या जानो, कैसी होती है खुददारी तुम क्या जानो, अलगू जुम्मन की यह लाचारी तुम क्या जानो। और अंत में एक छोटे बहर की ही गजल और मैं सुना दूं आपको।
2: जी बहुत स्वागत।
0: सब रिश्तों का मान बराबर होता है, सब रिश्तों का मान बराबर होता है, आपस का सम्मान बराबर होता है।
2: क्या कहने, क्या कहने।
0: जब रिश्तों का मान बराबर होता है, आपस का सम्मान बराबर होता है, कद से हो जाता है साया छोटा तो।
1: बहुत अच्छे।
0: कद से हो जाता है साया छोटा तो, तब सिर पर दिनमान बराबर होता है, तब सिर पर दिनमान बराबर होता है।
2: बहुत अच्छे,
1: बहुत अच्छे।
0: सबके सब अपने चेहरे पर कायम है।
1: बहुत अच्छे।
0: सबके सब अपने चेहरे पर कायम है, कब किसका उन्वान बराबर होता है।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: मौत जहाँ दस्तक देती है चलने की, बंधु जी
3: स्वागत।
0: मौत जहाँ दस्तक देती है चलने की, मुफलिस और धनवान बराबर होता है।
1: बहुत अच्छे,
2: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: मौत जहाँ दस्तक देती है चलने की, मुफलिस और धनवान बराबर होता है। और ये मक्ते का अंतिम शेर कि शिव चर्चा होती है जिस महफिल में, कि शिव चर्चा होती है जिस महफिल में, उस महफिल का मान बराबर होता है।
3: वाँ वाँ वाँ।
0: जब रिश्तों का मान बराबर होता है, आपस का सम्मान बराबर होता है, आपस का सम्मान बराबर होता है।
1: बहुत अच्छे,
2: बहुत अच्छा। शिव नारायण जी, आपने तीन गजलें सुनाई और तीनों बिल्कुल अलग अलग अंदाज की थी, लेकिन तीनों में एक बात मुझे लगा कि कॉमन है, वो है उसकी व्यंग्यात्मकता। आपके शेरों की जो व्यंग्यात्मकता थी वो बहुत दूर तक

0: नोट करने वाली थी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए हम एक खूबसूरत सफर पर चलते हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ कवयित्री गीतकार डॉक्टर सीता सागर जी हैं। बहुत अच्छे गीत वो लिखती हैं, कहती हैं, सुनाती हैं। कवि सम्मेलनों में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनके लिए मैं पंक्तियां बोलूंगी कि कोई गीत नहीं गाता है, कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है।
1: बहुत
0: तो बहुत मीठा गाने वाली डॉक्टर सीता सागर जी हमारी बहुत आत्मीय, मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करती हूँ। आइए सीता जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति। मेरी खुशकिस्मती है कि बहुत अच्छी गीतकार और शायरा और बहुत अच्छी संचालिका और उतनी ही प्यारी नेक दिल इंसान कीर्ति काले के संचालन में मैं काव्य पाठ करने जा रही हूँ, तो मैं गीत के साथ हाजिर।
0: धन्यवाद।

0: वाह
1: बहुत बहुत धन्यवाद सीता जी, आपने मन के अनेक विविध पक्षों को अपने दोनों गीतों में अभिव्यक्त किया है। और आइए गोष्ठी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। हमारे बीच में वरिष्ठ नवगीतकार और जिन्होंने कई सारे टेली फिल्म्स भी लिखी हैं और विविध आयामी जिनका व्यक्तित्व है, दूरसंचार विभाग में राजभाषा अधिकारी के पद पर वो रहे हैं और जीवन का बहुत बड़ा अनुभव जिन्हें है, ऐसे श्री राधेश्याम बंधु जी से मैं सम्मान पूर्वक आग्रह करूंगी कि वे अपनी रचनाएं हमारी इस गोष्ठी को अर्पित करें। मेरी ही पंक्तियां हैं कि जुबा पर हैं सभी के आजकल अंगार की बातें, कि जुबा पर हैं सभी के आजकल अंगार की बातें, हवा करने लगी है तीर और तलवार की बातें, और यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आंखों में, कि यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आंखों में, चलो कुछ देर बैठे और कर लें प्यार की बात
2: है।
1: तो आइए बंधु जी कुछ प्यार की बात करें, कुछ मनुहार की बात करें।
3: अच्छा कीर्ति, बहुत बढ़िया।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित इस गोष्ठी में आए सभी कवियों को कवित्रियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, आकाशवाणी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया है। मैं चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ।
1: स्वागत।
2: कि चांद चलता रहा चांदनी के लिए,
3: बहुत अच्छे।
2: चांद चलता रहा चांदनी के लिए, चांदनी लुट गई रोशनी के लिए।
3: क्या बात है।
2: चांद चलता रहा चांदनी के लिए, चांदनी लुट गई रोशनी के लिए। प्यार की बस्तियां, प्यार की बस्तियां यूं वीरान हो, प्यार की बस्तियां यूं वीरान हो, आदमी जिए आदमी जिए आदमी के लिए। आदमी जिए आदमी के लिए। आइए एक हिंदी गजल से अपनी बात शुरू कर रहे हैं कि आज नया जमाना आया है तो हमें बदलना चाहिए, भाषिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी और वैचारिक रूप से भी। इस आधार पर मैं चाहूंगा कि आया है नया दौर नया मन बनाइए।
4: क्या बात है।
2: आया है नया दौर नया मन बनाइए, घायल दिलों के घाव पर मरहम लगाइए।
3: बहुत अच्छा।
2: आया है नया दौर नया मन बनाइए, घायल दिलों के घाव पर मरहम लगाइए। और लाना है अगर आदमी को आदमी के पास, लाना है अगर आदमी को आदमी के पास, कांटों की जगह प्यार की खुशबू बसाइए।
3: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
2: कांटों की जगह प्यार की खुशबू बसाइए, आया है नया दौर नया मन बनाइए। ऊंची

0: हवेलियों का प्यार कहाँ खो गया, ऊंची हवेलियों का प्यार कहाँ खो गया, उनमें भी कभी प्रेम का दीपक जलाइए।
1: बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
0: उनमें भी कभी प्रेम का दीपक जलाइए, आया नया दो नया मन बनाइए। कि रिश्तों का आईना बहुत नाजुक है दोस्तों, रिश्तों का आईना बहुत नाजुक है दोस्तों, शीशे के महल से नहीं पत्थर चलाइए।
1: क्या बहुत अच्छे,
0: शीशे के महल से नहीं पत्थर चलाइए, आया नया दो नया मन बनाइए। और दो पंक्तियां मैं देशभक्ति के लिए कहना चाहता हूँ, आपका ध्यान चाहूंगा विशेष रूप से, कि करते रहे जो उम्र भर रोटी की तिजारत, कुछ तो वतन के वास्ते जज्बा जगाइए।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: करते रहे जो उम्र भर रोटी की तिजारत, कुछ तो वतन के वास्ते जज्बा जगाइए, आया नया दो नया मन बनाइए। और लड़ते रहे जो उम्र भर कुर्सी के वास्ते, लड़ते रहे जो उम्र भर कुर्सी के वास्ते, उनको भी भरत की तरह जीना सिखाइए।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: उनको भी भरत की तरह जीना सिखाइए, और नफरत का जहर भी न जिसे मार सका है, कृतिकाली जी, नफरत का जहर भी न जिसे मार सका है, नफरत का जहर भी न जिसे मार सका है, मीरा की तरह, मीरा की तरह प्यार को जीना सिखाइए।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: मीरा की तरह प्यार को जीना सिखाइए। और दो पंक्तियां मैं दे रहा हूँ, मेरा ही विश्वास भगवान मिलते हैं, कि सच्ची तड़प हो अगर तो मिलते हैं राम भी, लेकिन हमारी शर्त है, सच्ची तड़प हो अगर तो मिलते हैं राम भी, पहले तो अपने आप को सबरी बनाइए।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
2: पहले तो अपने आप को सबरी बनाइए।
3: और अब मैं विशेष मकसद से आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। संस्कृत में एक कहावत है कि गद्यम कवि नाम निकषम वदंती, तो कीर्ति काले जी जितनी अच्छी कवित्री हैं उतनी ही अच्छी गद्यकार भी हैं, और ये सबसे बड़ी विशेषता है उनकी। न जाने कितने देशों में कविता के सिलसिले में काव्य पाठ, उनकी यात्राएं, न जाने कितने सम्मानों से, पुरस्कारों से सम्मानित। कीर्ति के बारे में जितनी मैं प्रशंसा करूं कम ही होगी, तो मैं बहुत ज्यादा प्रशंसा न करते हुए बाकी सब श्रोताओं पर छोड़ती हूं, और इतनी ही ये शुभकामना रखती हूं कि कीर्ति की कीर्ति पताका इसी तरह से दिशा दिशा में फहराती रहे, और कीर्ति जितना जमकर संचालन करती है उतना ही एकाधिकार के साथ में काव्य पाठ भी करती है। तो हम कीर्ति को आमंत्रित करते हैं। कीर्ति काले,
4: बहुत बहुत धन्यवाद। सीता जी, एक गीत मैं आपके सामने रखती हूँ,
2: स्वागत
4: सुनिएगा।

0: स्वाद।
1: वाह वाह वाह, बदी का जवाब नहीं है भाई, वाह वाह।
0: गया है आपस का संवाद। और पहले की शामें कैसी होती थी,
2: क्या बात,
0: कि संजवा

0: सिमट गया है आपस का संवाद।
1: सच्चाई
0: एक चित्र और रखती हूँ,
2: बहुत
0: छत है एक मगर सबका अब अलग अलग संसार, छत है एक मगर सबका अब अलग अलग संसार, अलग अलग मोबाइल टीवी अलग अलग व्यवहार, ना पहले सी मान मनोबल ना वो साझी बातें, छत पर दरी बिछा कर सोना वो गर्मी की रातें, गर्मी की रातें, गर्मी की रातें। और आमदनी कम थी बेशक पर आमदनी

0: संवाद धीरे धीरे सिमट गया है आपस का संवाद। और अपने घर की एक बात रखती हूँ और मुझे लगता है कि ये आजकल हर घर
1: ये घर घर की बात
0: घर घर की बात
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कि घर के

0: कौन करे।
1: सच्चाई है ये।
0: और चैत बैसाख अष्टमी नवमी, चैत बैसाख अष्टमी नवमी नहीं किसी को याद, धीरे धीरे सिमट गया है आपस का संवाद।
1: बहुत अच्छे।
0: और इस गीत का अंतिम बंद है,

0: मन इतराया करते थे, इतराया करते थे, इतराया करते थे।
1: क्या लेखन है, वाह।
0: और रिश्तों के फोड़ों से अब तो, रिश्तों के फोड़ों से अब तो रिसने लगा मवार, रिश्तों के फोड़ों से अब तो रिसने लगा मवार। धीरे धीरे सिमट गया है आपस का संवाद।
1: बहुत अच्छे,
0: लेकिन ये आपस का संवाद बना रहे और इसी के लिए आकाशवाणी हमारे साथ में हमेशा रहती है। आकाशवाणी में साहित्य, संगीत, कला, खेल सब कुछ समाहित रहता है और न जाने कितने साहित्यकारों को, कितने कलाकारों को एक प्रारंभ से लेकर आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं बस इस कवि गोष्ठी के समाहार के रूप में यही कहूंगी कि हमारी धड़कनों में देश का जयगान रहता है, कि हमारी धड़कनों में देश का जयगान रहता है और नजर में तीन रंगों का सदा सम्मान रहता है। और कनाडा, चीन, अमेरिका, मॉरिशस, जर्मनी, फिजी कहीं भी तन रहे पर मन में हिंदुस्तान रहता है। हिंदुस्तान को अपने मस्तक पर लगाते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आकाशवाणी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, राम राम।
2: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे डॉक्टर सीता सागर, श्री राधेश्याम बंधु, प्रोफेसर शिव नारायण और डॉक्टर कीर्ति काले। गोष्ठी का संचालन कर रही थी डॉक्टर कीर्ति काले। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।

0: चलता था ग्रैंड वार्डन। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूँ मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूँ, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं। आइए फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सिंघम से श्रेया घोषाल की आवाज में और स्वानंद किरकिरे साहब का लिखा ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 1988 में रिलीज फिल्म कयामत से कयामत तक का। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण साहब की आवाज में, और गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने।

और आइए अब कार्यक्रम फिल्म संगीत में बढ़ते हैं आज की अगली और आखिरी पेशकश की ओर। ये गीत हमने आपके लिए चुना है फिल्म दिल तो पागल है से। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने और लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में ये गीत आप सुनेंगे।

इसी गीत के साथ इस कार्यक्रम से यानी फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की मुझे इजाजत दीजिए। मैं यानी दीप्ति पाठक आपसे फिर बहुत जल्द मिलूंगी। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के संग।

0: आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में UPI भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशल्स में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
1: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए

0: सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की

0: पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षो में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप्प हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक

0: ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations of a recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heat wave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke saath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation level talk with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields including agriculture, finance, space and health. Prime Minister Modi expressed happiness that an MOU has been signed to implement UPI in Seychelles.
2: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: He said the India-Seychelles partnership in the health sector has stood the test of time. He said the MOU signed on Jan Aushadhi today will help provide quality and affordable medicines to the people of Seychelles. Addressing the gathering, Seychelles President Hermini said maritime security in the Indian Ocean region remains central to bilateral ties, with the two countries reaffirming their commitment to counter piracy, drug trafficking, illegal fishing and cross-border crime.
3: A particularly significant milestone is the groundbreaking inauguration of the Professional and Technical Education Center. This India-assisted project will equip Seychellois youth with world-class vocational training, strengthening our capacity building. My deepest gratitude to Prime Minister Modi for this transformative initiative.
1: On the

0: In reply, India were 54 for 4 in 8 overs when reports last came in. The rain has currently halted play. Ireland lead the series 1-0. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. Says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations over recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heatwave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का समंदर बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की ताकत भारत की सबसे बड़ी कुव्वतों में से एक है। भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जाम को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लंदन में खवातीन के T20 आलमी कप के अपने फाइनल ग्रुप ए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 171 रन्स का जीत का निशाना रखा है और मर्दों की क्रिकेट में बेलफास्ट में फाइनल T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान आयरलैंड ने भारत को जीतने के लिए 155 रनों का निशाना मुकर्रर किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत बहिरे हिंद को एक ऐसा खित्ता समझता है जहां इख्तिसादी खुशहाली के साथ साथ समंदरी तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाता है, नेज जहां शराकत दारी साइज पर मबनी नहीं बल्कि बाहमी इज्जत और एतमाद पर मबनी है। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का एक समंदर बनाता है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: जनाब मोदी विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने बाहमी तआवुन के तमाम शोबों का जायजा लिया और बाहमी मफाद के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात पर तबादले ख्याल किया। दोनों ममालिक ने ज़राअत मालियात खला और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में बहुत से समझौतों का तबादला भी किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इजहार मसर्रत किया कि सेशेल्स में UPI का आगाज करने के लिए एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशेल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशेल्स में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
1: उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में भारत सेशेल्स शराकत दारी वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरी है। उन्होंने कहा कि आज जन औषधि से मुतालिक जिस मुफाहमत नामे पर दस्तखत हुए हैं वो सेशेल्स के अवाम को मेयारी और किफायती अदविया फराहम करने में मदद करेगा। इस्तेमा से खिताब करते हुए सेशेल्स के सदर हर्मिनी ने कहा कि बाहमी ताल्लुकात में बहिरे हिंद का खित्ता मरकजी हैसियत रखता है। दोनों मुल्कों ने समंदरी कज़ाकी मनशियात की नाजायज तिजारत गैर कानूनी माहीगीरी और सरहद

0: के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। बाद में दिन में वज़ीरे आज़म मोदी ने सेशेल्स की कौमी असेंबली से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीरे आज़म ने कहा कि भारत और सेशेल्स दोनों एक ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जहां तरक्की मजीद शमूलियाती हो और जहां बैनुल अक़वामी इदारे हम असर हकायक की अक्कासी करते हों। उन्होंने आलम जनूब के मफादात को आगे बढ़ाने के तई अपने अहद का इदा किया।
1: सेशेल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियालिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत का विजन महासागर के नजरिए में पिन्हा है जो इस बात को तस्लीम करता है कि हमारा मुस्तकबिल एक दूसरे से मुंसलिक और एक दूसरे पर मुनहसिर है।
1: वी बिलीव द इंडियन ओशन इज अवर शेयर्ड होम, इट्स सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी आर अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही भावना हमारे महासागर विजन का आधार है।
0: वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी असेंबली से खिताब करने वाले पहले भारतीय वज़ीर आज़म होने की हैसियत से सबके सामने खड़ा होना एक खुसूसी एजाज है। इससे कबल दिन में सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजने के लिए उन्होंने सेशेल्स के सदर और अवाम का शुक्रिया अदा किया। जनाब मोदी मशरिकी अफ्रीका के इस जज़ीरानुमा मुल्क के 3 रोज़ा दौरे पर गुज़श्ता रोज विक्टोरिया पहुंचे हैं। इसी दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, अमित शाह, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और जितेंद्र सिंह समेत बहुत से मरकजी वज़रा ने माहौलियाती तहफ्फुज़ और पायदार तरक्की में क़यादत के लिए वज़ीर आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज से नवाजे जाने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने आज कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के दरमियान बातचीत में बाहमी ताल्लुकात के तमाम शोबों का अहाता किया गया। विक्टोरिया में मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब मिस्री ने कहा कि दोनों लीडरों ने सेहत, तालीम, सलाहियत साजी, डिजिटल तब्दीली, पायदार तरक्की, समाजी बुनियादी ढांचे, काबिल तजदीद तवानाई, समंदरी तहफ्फुज और दिफा के शोबों में तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने से इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क की तामीर में अवाम की शमूलियत की ताकत भारत के लिए एक बड़ा एहसासा है। जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में जंग जैसी सूरत हाल के तनाजुर में कुछ नुकात के सिलसिले में जब उन्होंने हम वतनों से अपील की तो ये अवामी शमूलियत फिर से देखी गई। जनाब मोदी ने लोगों से कहा था कि वो कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने से गुरेज करें, गैर मुल्की सफर पर न जाएं और कार पूल का इस्तेमाल करें।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: वज़ीर आज़म ने अपनी अपील के सिलसिले में लोगों की हिमायत और हर तरह से सरगर्मी के साथ तआवुन करने पर मुल्क के हर शहरी के तई तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि ये इज्तिमाई जज्बा कौम को मजीद मुस्तहकम करेगा और उसे कामयाबी की तरफ ले जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जामात को वाजह तौर पर मुस्तरद कर दिया और उन्हें बेबुनियाद करार दिया। मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों की जानिब उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को अंदरून मुल्क देखना चाहिए और अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर इन्हिसार करने के अपने रुझान को तर्क करना चाहिए जिसे वो मुल्क की पॉलिसी के एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल करता है। سعودی عرب میں آج ملک کی تیل کمپنی آرامکو کا ایک ہیلیکاپٹر آبنائے ہرمز کے مغرب میں خلیج کے مشرقی ساحل پر راس تنورا میں گر کر تباہ ہو گیا۔

इस हादसे में 14 अफराद हलाक हो गए। आरामको ने जुमा को खलीज में अपने रास्तनूरा टर्मिनल पर खाम तेल की लोडिंग दोबारा शुरू कर दी थी। वाजे रहे कि मगरबी एशिया तनाजे की वजह से यहां खाम तेल की लोडिंग तकरीबन 4 माह से बंद थी। सऊदी अरब की तवानाई की वजारत के मुताबिक तमाम महलूकीन सऊदी अरब के शहरी थे। वजारत ने मजीद कहा कि हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। फ्रांस के शुमाली खित्ते में आज एक स्काई ड्राइविंग तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में उसमें सवार 11 अफराद हलाक हो गए। मर्थे मोसिल के नुमाइंदे यवेस सेगुई ने बताया कि तैयारा नैन्सी शहर के करीब गिरकर तबाह हुआ। हादसे के बाद इमदादी टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गईं, जबकि हुक्काम ने हादसे की तहकीकात के सिलसिले में ऐनी शाहिदीन के बयानात जमा करना शुरू कर दिए हैं। यूरोप को शदीद तरीन गर्मी का सामना है। फ्रांस, जर्मनी और चेक जमहूरिया समेत कई मुल्कों में हफ्ते के आखिर में दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया गया। फ्रांस के महकमे सेहत के हुक्काम का कहना है कि मुल्क में शदीद गर्मी की वजह से बुध से अब तक तकरीबन 1000 अमवात हो चुकी हैं। इनमें से 85% अमवात बुजुर्ग अफराद की दर्ज की गई हैं। फ्रांस के मुख्तलिफ हिस्सों में इस हफ्ते दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावज कर गया है। पेरिस में एफिल टावर और लुरे म्यूजियम भी शदीद गर्मी के बायस जल्द ही बंद कर दिए जा रहे हैं। जमहूरिया चेक और जर्मनी में भी दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल के लिए ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में इंतहाई मूसलाधार बारिश के साथ कुछ मकामात पर शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने आइंदा 2 रोज के दौरान शुमाल मशरकी भारत, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, क्राइकल, तेलंगाना और विदर्भ के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। राजधानी दिल्ली में जुज़वी तौर पर मौसम के अब्र आलूद रहने की भी पेशगोई की गई है। आसाम के धीमाजी में जिले और पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश में कई दिन तक शदीद बारिश के बाद सैलाब की सूरतेहाल मजीद खराब हो गई है। ज़राअत और किसानों की बहबूद निजदेही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के विजन को हकीकत का रंग देने में गांवों के मरकजी किरदार को उजागर किया है। ICC खवातीन T20 आलमी कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 171 रन का निशाना दिया है। अब से कुछ देर पहले तक ऑस्ट्रेलिया ने हदफ का पीछा करते हुए 7 ओवर्स में 2 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। मर्दों के क्रिकेट में बेलफास्ट में जारी 2 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के दूसरे और आखिरी मैच में मेजबान आयरलैंड ने भारत को जीत के लिए 155 रन का निशाना दिया है। जवाब में भारत ने आखिरी खबरें मिलने तक 10 ओवर्स में 4 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। हैरी टेक्टर ने 47 गेंदों पर 53 रन की इनिंग खेली। अहमदाबाद में आज ABC मर्दों के वॉलीबॉल कप में भारत ने प्लेऑफ में तीसरे मकाम के लिए खेलते हुए बहरेन को 3-1 से शिकस्त देकर कांसे का तमगा अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने 40 बरस बाद इस टूर्नामेंट में पहली बार तमगा हासिल किया और अपनी सरजमीन पर एक यादगार मुहिम का अख्तिताम किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का समंदर बनाता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की ताकत भारत की सबसे बड़ी क़ुव्वतों में से एक है। भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लंदन में खवातीन के T20 आलमी कप में अपने फाइनल ग्रुप ए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है।
اور مردوں کے کرکٹ میں بیلفاسٹ میں فائنل T20 بین الاقوامی میچ میں میزبان آئرلینڈ نے بھارت کو جیتنے کے لیے 155 رن کا نشانہ مقرر کیا ہے۔

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित सुधीर पांडे का एकल तबला वादन। पंडित सुधीर पांडे का नाम देश के अग्रिम पंक्ति के सर्वश्रेष्ठ तबला वादकों में लिया जाता है। आपने तबले की शिक्षा अपने पिता सहगुरु स्वर्गीय पंडित अर्जुन पांडे और दादा गुरु पंडित भागवत सिंह जी से बनारस, दिल्ली और अजराड़ा घरानों में प्राप्त की। तीनों घरानों का खूबसूरत गुलदस्ता सजाकर एक नई शैली गुरु द्वारा प्रदान की गई, जिसे लडंत का बाज नाम दिया गया। आप इस शैली के प्रमुख प्रतिनिधि वादक हैं। दाएं बाएं की सघन भूमिका, बोलों की शुद्धता, रचनाओं में लय का सुंदर विन्यास, प्रयोग धर्मिता और विरासत में मिले पुराने दुर्लभ बोलों की पांडित्यपूर्ण प्रस्तुति आपके वादन में सहज रूप से मिलती है।
1: This is Akashwani. In tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we bring you a tabla recital by Pandit Sudhir Pandey. Pandit Sudhir Pandey is recognized as one of India's foremost tabla virtuoso. He received his rigorous training from his revered father and guru, late Pandit Arjun Pandey, and his dada guru, Pandit Bhagwat Singh, inheriting the rich traditions of the Banaras, Delhi and Ajrada gharanas. Drawing upon the finest elements of these three illustrious traditions, his gurus evolved a unique style of tabla playing known as Ladant Ka Baj, of which Panditji is among the leading exponents today. His artistry is characterized by the balanced and powerful use of both hands, crystal clear articulation of bowls, intricate rhythmic architecture, innovative presentation, and the scholarly rendering of rare traditional compositions preserved through the sacred Guru Shishya Parampara. Through his performances at prestigious festivals and concerts, he has earned immense admiration from musicians, connoisseurs and music lovers alike.
0: आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं घनश्याम सिसोदिया, पंडित सुधीर पांडे अपने कार्यक्रम का आरंभ तीन ताल से कर रहे हैं।
1: In tonight's program, he is accompanied on sarangi by घनश्याम सिसोदिया. He is presenting tabla recital in ताल तीन।

धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट

संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन। अभी आप सुन रहे थे ताल तीन ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे घनश्याम सिसोदिया। और इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से

0: भी प्रसारित किया गया।
1: यू जस्ट हर्ड ताल तीन ताल प्लेड ऑन तबला बाय सुधीर पांडे। ही वॉज अकम्पनीड ऑन सारंगी बाय घनश्याम सिसोदिया। विद डैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी है। आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री एन एस कल्याण रामन द्वारा मृदंगम पर लय विन्यासम।
3: This is Akashwani. In tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha, we present Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanaraman.
2: Paramparik Sangeet Parivar mein janme, Sri N.S. Kalyanaraman, Andhra Pradesh ke suprasiddh mridangavadak hai. Unhone balyavastha se hi mridangavadan par gahri ruchi dikhai aur apna prarambhik prasikshan Sri M.K.R. Prasad se prapt kiya. Baad mein, unhone vikhyat mridangavidwan श्री दंडमुड़ी राममोहन राव और श्री के वीरभद्र राव से उच्च प्रशिक्षण पाया।
3: श्री एन एस कल्याण रामन इज अ रेनाउंड मृदंगम आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश बिलोंगिंग टू अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल फैमिली। ही शोड कीन इंटरेस्ट इन मृदंगम फ्रॉम अ वेरी यंग एज एंड रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग अंडर श्री एम के आर प्रसाद। ही लेटर अंडरवेंट एडवांस्ड ट्रेनिंग अंडर द रेनाउंड गुरुज श्री दंडमुड़ी राममोहन राव एंड श्री के वीरभद्र राव।
2: श्री एन एस कल्याण रामन ने डॉक्टर एम बालमुरली कृष्णा, श्री टीवी शंकर नारायण, श्री टीएन शेषगोपालन, हैदराबाद ब्रदर्स और हैदराबाद सिस्टर्स जैसे अनेक प्रख्यात संगीतज्ञों के साथ संगत किया। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित मंच जैसे मद्रास म्यूजिक एकेडमी में कई प्रदर्शन दिया।
3: Sri N.S. Kalyana Raman has accompanied several eminent musicians including Dr. M. Balamurali Krishna, Sri T.V. Sankaranarayan, Sri T.N. Sheshagopalan, Hyderabad Sisters and Hyderabad Brothers. He has performed in prestigious sabhas across the country including Madras Music Academy.
2: Sri N.S. Kalyana Raman Akashwani ke top grade kalakar raha. Aapne Chennai aur Vijayawada Akashwani Kendra mein 36 वर्ष की विशिष्ट सेवा प्रदान किया। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन के कई राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में भाग लिया। आप कंची कामकोटि पीठम का आस्थान विद्वान रहा और आपको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार भी प्राप्त हुई।
3: He is a top grade artist of Akashwani and has also participated in national programs of music and Doordarshan programs. He rendered 36 years of distinguished service to Akashwani at Chennai and Vijayawada. He was honored as Asthana Vidwan of Kanchi Kamakoti Peetam and also received the prestigious Ugadi Puraskar from the government of Andhra Pradesh.
4: आज के कार्यक्रम में श्री एन एस कल्याण रामन मृदंगम पर अपने लय विन्यास का प्रारंभ मिश्र जाति झंपे ताल के साथ कर रहा है।
3: Tonight, Sri N.S. Kalyanaraman begins his Laya Vinyasam on Mridangam with Mishra Jati Jampetalam.

0: आप रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा प्रस्तुत मृदंगम पर लाइव विन्यासम सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है। अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: You have been listening to Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanuraman in the Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. This program was recorded in the studios of Akashvani Vijayawada, and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan.

का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं का वो पुल है जो हमारी यादों, रिश्तों और जीवन के खूबसूरत पलों से जोड़ता है। वह कभी किसी की पहली मोहब्बत की खुशबू होती है तो कभी बचपन की मासूमियत। यही कारण है कि पुराने और नए फिल्मी गीत हर पीढ़ी के दिल में अपनी अलग जगह बनाते हैं। तो आइए, आपकी पसंद और आपकी फरमाइशों के साथ शुरू करते हैं आज की यह संगीत में महफिल, इस खूबसूरत गीत के साथ जिसे आवाज दी है मोहम्मद अजीज, अमित कुमार और सपना मुखर्जी ने। तो सुनिए और आनंद लीजिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे अमित।

हीरा की पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। अभी आपने गीत सुना फिल्म हीरा पन्ना से। दोस्तों, हर गीत अपने समय की कहानी कहता है। कुछ गीत हमें मुस्कुराना सिखाते हैं तो कुछ कठिन समय में हौसला भी देते हैं। शायद यही वजह है कि रेडियो की दुनिया में गीतों का जो जादू है वो आज भी वैसा ही बरकरार है। और आपकी फरमाइश के अनुसार, चूंकि ये कार्यक्रम ही आपकी फरमाइश पर आधारित है और हमें संदेश भी आना शुरू हो गए हैं। संदेश हमें मिला है कलेर बिहार से, मोहम्मद आसिफ खान, निकट परवीन, नगर निगम वार्ड 28, नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से, अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत, वसीम अकरम, रुबीना आरिज, नदीम शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी। मुकेश भट्टा, नीलम भट्टा, निहारिका, हार्दिक वंश भट्टा का संदेश हमें मिला है। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी का संदेश हमें मिला है। इनका साथ में इन्होंने ये भी लिखा है, खुश रहो और खुशियां बांटो, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। सतीश अनेजा जी का संदेश हमें मिला है, साथ ही बिमला अनेजा जी चंडीगढ़ सिटी से। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभ

चंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, इनका संदेश हमें मिला है। नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल, रसीद, अनम, यशफ, इनका संदेश हमें मिला है। मारहरा दरवाजा एटा से इनका कहना है कि कोई भी गीत सुनवा दीजिए, प्यार भरा नमस्कार साथ में भेजा है। सप्रेम नमस्कार के साथ लिखते हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी। छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई, दुखनी सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद, कापसीड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया, आशु और समस्त फूल वाले फैमिली। इन्होंने लिखा है कि डियर होस्ट जी, आदाब व सलाम, सदा खुश रहो, दूसरे को भी खुश रखो, आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है, मेरे मेल जरूर शामिल कीजिएगा। जी जरूर, आपका मेल शामिल कर लिया गया है। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक और बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना और अब्दुल आजाद लिखते हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद, गोविंदपुर अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा, मिखाइल और जैनब, इन्होंने प्यार भरा नमस्कार भी भेजा है। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा लिखते हैं कि कोई भी गीत सुनवा दीजिए। तो सुनते हैं अगला गीत फिल्म दाग से, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने।

बिल्कुल दोस्तों, अगर आपके भी दिल में कोई बात है, कोई गीत है, कोई पसंद है, तो आप भी हमें शेयर कर सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि अगर दिन की शुरुआत अच्छे संगीत से हो जाए तो पूरा दिन खुशनुमा हो जाता है, और अगर शाम किसी मधुर गीत के साथ ढले तो दिन भर की थकान भी पल भर पे मिट जाती है। आपके जीवन में भी कोई ऐसा गीत है जिससे आपकी कोई कोई खास याद जुड़ी है तो अपनी फरमाइश में हमें जरूर भेजिएगा। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अमित, और लगातार जो है आपके संदेश हमें मिल रहे हैं। संदेश हमें भेजा है जयराम सिंघम ने, जयराम सिंगड़कर, साथ ही दिशांत कुमार और अर्पिता जी, वार्ड नंबर 1 फुफाली जिला यवतमाल से। नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर और जियाउल हक, भाटपारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी। लिखा है कि कोई भी गीत में हमें शामिल कीजिएगा, आपकी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिएगा जी। बिल्कुल जरूर। प्रकाश वर्मा का संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से, साथ ही निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा, सप्रेम नमस्कार लिखते हैं। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद

का संदेश हमें मिला है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, साथ ही उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। तो दोस्तों सुनते हैं अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म विरासत से, कुमार सानू और जसपिंदर नरूला की आवाज में।

बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और जसपिंदर नरूला की आवाज में। दोस्तों, कभी कभी कोई गीत शब्दों से ज्यादा हमारी भावनाओं को समझ लेता है और यही तो संगीत की बहुत बड़ी खासियत, बहुत बड़ी ताकत होती है कि बिना कुछ कहे भी ये संगीत, ये गीत बहुत कुछ कह जाता है। संदेशों का सिलसिला लगातार जारी है। संदेश हमें भेजा है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक और परी, साथ ही स्वाति लिखते हैं हमें फिल्म का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। और संदेश हमें मिला है रेशमी नगर मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर, शमशूल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा तूबा आफरीन, शमीम अख्तर अंसारी। शास्त्री नगर बीड शहर से संदेश हमें मिला है किशन सपकाल का, आशा, सोनिया और विशाल लिखते हैं आदरणीय जी को प्यार भरा नमस्कार। नूर महल महसौल सीतामणी बिहार से मुसर्रत जहां नाज, तलत जहां फरहत, रिफत, नुजत, साजिया और नाजिया लिखते हैं हम बहनों को प्रोग्राम में शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद कमर का संदेश हमें मिला है

गांव कल्याण मल्लका जिला बठिंडा पंजाब से अमृतपाल सिंह रामगढ़िया, परमिंदर कौर, सचनूर और मनिंदर सिंह। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना, प्रणय और हीरामन। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश का संदेश हमें मिला है। पहाड़गंज मुल्तानी टांडा से अनिल मोहन, उषा, टिल्लू और मधु का संदेश हमें मिला है। और इन्हीं सब संदेशों को ध्यान में रखते हुए सुनवाते हैं आपको अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में, फिल्म यादों की बारात।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में अभी आपने गीत सुना फिल्म यादों की बारात से, और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और मैं हूं आपका दोस्त आरजे अमित। दोस्तों, भारतीय फिल्म संगीत में शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, सूफी संगीत और पश्चिमी संगीत का सुंदर मेल देखने को मिलता है। यही विविधता हमारी फिल्मी गीतों की दुनिया भर में जो है हमारी फिल्मों को लोकप्रिय और बना देती है, और साथ ही साथ संदेशों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रकाश वर्मा का हमें संदेश मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से, साथ ही निखिल

और यशस्वी, लिखते हैं सप्रेम नमस्कार। अरुण कुमार पांडे का संदेश हमें मिला है मध्य प्रदेश से।

बसंत कुमार सिन्हा का संदेश हमें मिला है दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से, साथी रेखा देवी, अजय, रिम्मी, तनुश्री, नन्हे मुन्ने, अन्विका, धन्यवाद लिखते हैं संदेश शामिल करने के लिए। गांव फरासी हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार, इनका संदेश हमें मिला है और लिखते हैं, कोई भी गीत सुनवा दीजिए। शांतिनगर सोनीपत से संदेश हमें मिला है सुदर्शन मुखी, अनीता, सिमरन का, पीटीआई संसद मार्ग से संदेश हमें मिला है अनिल मोहन का, लिखते हैं, नमस्कार अमित जी, नाइट शिफ्ट में आपने कार्यक्रम को सुचारू रूप से प्रस्तुत करते हुए हम आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, बिल्कुल आपके करीब से, ठीक आपके प्रसारण भवन के सामने से ही। बहरहाल आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, बधाई स्वीकार करें शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस हौसला अफजाई के लिए। संदेश हमें मिला है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरव, शाइना और मैंडी शर्मा का। इन संदेशों के लिए बहुत बहुत अभी आप सभी लोगों का शुक्रिया। और अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म यारा दिलदारा से, और इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने।

दोस्तों, आज की यह संगीतमय महफिल अब यहीं संपन्न होती है। उम्मीद है कि आपकी पसंद के इन गीतों ने आपके दिन को, आपकी शाम को बहुत ही खुशनुमा बनाया होगा। आपकी फरमाइशें और संदेश हमें भेजते रहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका है, आपका अपना है। आपकी फरमाइश पर मैं हूँ आरजे अमित, आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी कुछ नए गीतों और नई फरमाइशों के साथ। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण अब संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी रहेंगे और रात्रि के 12 बजने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग ले रहे हैं। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद

0: संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दवाओं, शल्य चिकित्सा के सामान और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितताओं के मामले में 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक डॉ वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उप नियंत्रक लेखा नीरज चोपड़ा शामिल हैं। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। बेलफास्ट में आयरलैंड ने भारत को दूसरे 2020 क्रिकेट मैच में बड़ा उलटफेर करते हुए 1 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of 2 Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, Mr. Modi addressed a joint press meet after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. Mr. Modi said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual

सुरों का सफरनामा लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ अल्पना, और स्वागत करती हूँ आपका इस मुस्कुराती आवाज के सफर में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मुस्कुराती हुई आवाज यानी कि उदित नारायण जी के बारे में। आज का सफर समर्पित है उस आवाज को जिसने 3 दशकों तक बॉलीवुड को रोमांस, दोस्ती और भावना और खुशियों को अपनी गायकी से अमर बना दिया। आज हम बात करेंगे उदित नारायण की। कुछ आवाजें मौसम की तरह आती हैं और कुछ सदियों तक दिलों में रहती हैं, और ऐसी आवाज है उदित नारायण की।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

जी हाँ साथियों, 1988 में बनी फिल्म कयामत से कयामत तक, इस गीत ने, पापा कहते हैं, बड़ा नाम करेगा। ये गीत उदित नारायण की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इस गीत ने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया। वैसे उदित नारायण का जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1955 को नेपाल में, और उनकी माता भुवनेश्वरी झा लोकगीत की गायिका थी, और संगीत का संस्कार उन्हें परिवार से ही मिला हुआ था। उदित नारायण ने अपने संगीत सफर की शुरुआत रेडियो नेपाल से की थी, और इसके बाद वे भारत आए और मुंबई में संघर्ष के दिनों में उन्होंने वहां शुरुआत में बहुत संघर्ष किया और वहीं पे रहे, और उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। और यही नहीं, उन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाया बॉलीवुड में, ये तो हम सभी जानते हैं। एक से एक खूबसूरत गीत, इतने सारे कि आप दिन पूरी रात भी सुन सकते हैं। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं, एक और बहुत ही प्यारा गीत है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और आपको अगर कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। वैसे आपको पता तो है ही हमारे मेल आईडी ipradiodelhi@gmail.com, और जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आपके साथ अल्पना, आज की कार्यक्रम की हम सफर।

जी हाँ साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शुरू का सफरनामा। मैं हूँ आपके साथ अल्पना और हम बात कर रहे हैं उदित नारायण की, वर्सिटाइल सिंगर की। जी हाँ, और अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम दीपा नारायण है और उनके पुत्र आदित्य नारायण, जो कि प्रसिद्ध गायक और अभिनेता और टेलीविजन एंकर भी हैं। साथियों, 90 का दशक आते आते उदित नारायण की रोमांटिक गीतों की सबकी पहली पसंद बन गए थे। जी हाँ, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, सलमान खान हो, कई बड़े बड़े सितारों की आवाज सिर्फ उनके रोमांटिक अंदाज उनके गीतों के जरिए ही बयां होते थे। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं, बहुत ही प्यारा गीत है। जो जीता वही सिकंदर से।

इश्क की हर धड़कन में एक मीठा सा एहसास रहता है जब उदित नारायण गाते हैं। हर दिल वो गीत गुनगुनाता है जो उनकी आवाज़ में हमारे दिल में उतर जाता है। जी हाँ, 1996 से 2000 का दौर उदित नारायण के कैरियर का स्वर्णिम दौर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक से एक खूबसूरत गीत उस समय आए और उनकी आवाज़ ने हर गीत में अपना जादू बिखेर दिया। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं। राजा हिंदुस्तानी मूवी से एक गीत है और सुनिए कितना प्यारा गीत है। उदित नारायण की आवाज़ साथ में अलका याग्निक, सपना अवस्थी की आवाज़ है, बोल है समीर के और म्यूजिक डायरेक्टर है नदीम श्रवण।

और साथ ही हम बात कर रहे हैं उदित नारायण की, और सुनते हैं एक और बहुत ही रोमांटिक नंबर उदित नारायण की और अलका याग्निक की आवाज़ में, फिल्म हम दिल दे चुके सनम से।

साथियों, उदित नारायण ने केवल रोमांटिक गीत ही नहीं गाए हैं, बल्कि दोस्ती, देशभक्ति और प्रेरणादायक गीतों में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं फिर से उदित नारायण की आवाज में। जी हाँ, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उदित नारायण की, और जो गीत हमने चुना है वो है फिल्म लगान से।

साथ ही हम बात कर रहे हैं उदित नारायण की और उदित नारायण को संगीत जगत में अनेकों सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्हें मिले हैं, फिल्म फेयर के पुरस्कार मिले, पद्मश्री 2009 में नवाजा गया और पद्मभूषण 2016 में उनको मिला। उन्होंने हिंदी के अलावा नेपाली, भोजपुरी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मराठी और अन्य कई भाषाओं में हजारों गीत गाए हैं। और सुरों का रिश्ता भाषाओं से नहीं, दिलों से होता है। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। और कुछ आवाजें सरहदों के से भी बड़ी हो जाती हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे गीत इन्होंने गाए हैं। तो चलिए, एक और प्यारा सा गीत है वीर जारा। जी हाँ, वीर जारा, सरहदों के पार की एक कहानी, बहुत ही खूबसूरत कहानी थी। अगर आपने नहीं देखी वो फिल्म तो आपको जरूर देखनी चाहिए। उसका ही हम एक गीत आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज में।

तीन दशकों से अधिक लंबे सफर में उदित नारायण ने संगीत को केवल गाया ही नहीं बल्कि हर पीढ़ी की यादों का हिस्सा बना दिया। सदियों सुर बदलेंगे, चेहरे बदलेंगे, हर दौर नए अफसाने लाएंगे, लेकिन लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें समय भी कभी मिटा नहीं पाएगा। और इसी के साथ अल्पना को दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने की। सुरों का सफरनामा एक और अध्याय लेकर हाजिर होंगी अगली बार, लेकिन तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, लेकिन सफर अभी जारी है मेरे दोस्तों, क्योंकि अगले और भी समय तक मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे गीतों के साथ मिलूंगी। फिलहाल छोड़ जा रही हूँ इस बहुत ही प्यारे गीत के साथ, फिल्म तेरे नाम से, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। एक बजने को है, अब समाचार होंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोतों ने भी भाग लिया। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री

0: सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज में अमेरिका के कैलिफोर्निया में राउंड ऑफ 32 के शुरुआती मैच में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच मुकाबला जारी है। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of 2 Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the 2 nations. Earlier, Mr. Modi addressed a joint press meet after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. Mr. Modi said, India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said, India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
2: The two countries also exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल से और मैं हूं आपके साथ अल्पना। और लीजिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम शुरू करते हैं जिसके अंतर्गत हम सुनते हैं गीत सुनहरे, यानी कि गोल्डन एरा के वो खूबसूरत गीत जो आज भी आपके दिलों पे छाए हुए हैं। शुरुआत करते हैं गीतादित्त की आवाज़ पे प्यासा फिल्म से इस गीत के साथ, जिसमें मोहम्मद रफ़ी की भी आवाज़ सुनाई पड़ेगी आपको।

और अगला गीत फिल्म हीर रांझा से लता मंगेशकर की आवाज़ में है। 1970 की ये फिल्म है और इसको संगीत से सजाया है मदन मोहन ने। बोल हैं कैफी आज़मी की।

और अब आपको ले चलते हैं 1960 की फिल्म बरसात की रात की तरफ। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, बहुत ही प्यारा गीत है, और चलिए सुनते हैं इस गीत को।

जी हाँ, इतने प्यारे प्यारे गीत अगर हो तो बिल्कुल भी, गीत भी आपकी रात अच्छी करती है और आप इससे हटते भी नहीं हैं, और इन गीतों को भूलना नामुमकिन सा है। तो अगला गीत 1960 फिल्म से है, ये चित्रगुप्त का इस पे संगीत है और मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में फिल्म बारात से।

और लीजिए अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। सलिल चौधरी का म्यूजिक है और फिल्म है हनीमून।

साथियों, आप सुन रहे हैं गीत सुनहरी, गोल्डन एरा के वो गीत जो आज भी आपके दिलों को छू जाते हैं। और लीजिए, इस कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं फिल्म हम दोनों से, आवाज मोहम्मद रफी आशा भोसले की, और बोल हैं साहिर के और संगीत से सजा है जयदेव ने।

जाओ। मैं इसी खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, लेकिन बिल्कुल आपको यहाँ आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम आपके लिए इंतजार करने हैं, तो ट्यून करे रहिएगा हमारा चैनल अल्पना को। इस कार्यक्रम से इजाजत दीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसके अंतर्गत आपने पुराने गीतों का आनंद लिया। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। लीजिए सुनते हैं समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्ध पोतों ने भी भाग लिया। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में UPI भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशल में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च

0: सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांवों की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ग्रीस यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल कई स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने कैलिफोर्निया में सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकीमोतो को 22-20 15-21 21-19 से हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज में अमेरिका के कैलिफोर्निया में राउंड ऑफ 32 के शुरुआती मैच में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। हाफ टाइम के बाद भी दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of 2 Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, addressing a joint press conference after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, Mr. Modi said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity, and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said, India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: The 2 countries also exchanged several agreements in a range of fields including agriculture, finance, space and health. On the occasion, PM Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Later in the day, PM Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Mr. Modi reached Victoria on Saturday on a 3-day visit to the East African island nation. On the sidelines of the Seychelles visit, PM Modi met with Mauritius Prime Minister Dr. Navin Chandra Ramgoolam. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They also reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Both leaders reaffirmed

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, जिसके अंतर्गत आपने नॉन स्टॉप फिल्म संगीत सुना। यह कश्मीर दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। 3 बजने को है, समाचार होंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी शामिल हुए। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में UPI भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का

0: योग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि ग्रीस यात्रा के दौरान ये प्रतिनिधिमंडल कई स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के उच्चतम रिकॉर्ड दर्ज किए। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज के शुरुआती मैच में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया है। मुकाबले में हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का अभियान इस विश्व कप में समाप्त हो गया। ग्रुप चरण के मुकाबले खत्म होने के बाद 32 टीमें नॉकआउट स्टेज में पहुंची। इस चरण में 16 मैच खेले जाने हैं। भारत के स्टार शटलर किताम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकीमोतो को हराया। 33 वर्षीय श्रीकांत का सामना फाइनल में चीनी ताइपे के 8वीं वरीयता प्राप्त सू लिंग यांग से होगा। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष अब्राहम। Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of 2 Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, addressing a joint press conference after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, Mr. Modi said, India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said, India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai. जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: The two countries also exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, PM Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Later in the day, PM Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Mr. Modi reached Victoria on Saturday on a 3-day visit to the East African island nation. On the sidelines of the Seychelles visit, PM Modi met with Mauritius Prime Minister Dr. Naveen Chandra Ramgoolam. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They also reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Both leaders reaffirmed the significance of the India-Mauritius enhanced strategic partnership under India's vision Mahasagar and Neighbourhood First policy and their shared commitment to the Global South. India categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Ranadhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swasthya Karyakram.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 और अब प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम। पहली गजल मेहंदी हसन की आवाज में।

0: चूड़ियां ले लो, चूड़ियां रंग बिरंगी चूड़ियां, गोरे गोरे हाथा की सगाई, आशिक के मन को भाई, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां चूड़ियां।
1: ए चूड़ी वाले, चूड़ी वाले चूड़ियां दिखाओ ना, चूड़ियां दिखाओ।
2: इस खूबसूरत हाथ में तो चूड़ियां कयामत ठहरेंगी।
1: ये क्या कर रहे हैं?
2: चूड़ियां पहना रहा हूं बीबी।
1: हमको और चूड़ियां दिखाओ ना, हमको धानी चूड़ियां चाहिए।
2: धानी चूड़ियां चाहिए? अब धानी चूड़ियां कहां से लाऊं मैं? ये चित्ती मुश्किल से मिली, हफ्ते भर की कमाई गई ना इसमें।

0: प्रातः 4 बजने को है। कुछ पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी शामिल हुए। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक

0: विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 1,00,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बन रहा 1,400 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उत्तरी और पश्चिमी भारत के बीच संपर्क को काफी आसान बनाएगा और देश की आर्थिक प्रगति में सहायक होगा। एक्सप्रेसवे बड़ोदरा मुंबई खंड की प्रगति की समीक्षा के बाद श्री फडणवीस ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे बड़ोदरा मुंबई यात्रा के समय को 8 घंटे से घटाकर लगभग 4 घंटे कर देगा। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज के शुरुआती मैच में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया है। मुकाबले में हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का अभियान इस विश्व कप में समाप्त हो गया। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish B. Abraham. Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of 2 Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, addressing a joint press conference after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, Mr. Modi said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: The two countries also exchanged several agreements in a range of fields including agriculture, finance, space and health. On the occasion, PM Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Later in the day, PM Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Mr. Modi reached Victoria on Saturday on a 3-day visit to the East African island nation. On the sidelines of the Seychelles visit, PM Modi met with Mauritius Prime Minister Dr. Navin Chandra Ramgoolam. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They also reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Both leaders reaffirmed the significance of the India-Mauritius enhanced strategic partnership under India's vision Mahasagar and neighborhood first policy and their shared commitment to the Global South. India categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Ranadhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swasthya Karyakram during the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi today. The minister also released the operational guidelines for the Anemia Mukt Bharat Abhiyan at the same conference. The launch will mark a significant milestone in India's fight against anemia as the program transitions from Anemia Mukt Bharat to Anemia Mukt Bharat Abhiyan. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom with a focus on strengthening trade, investment and strategic

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कर्नाटक संगीत।
1: प्रस्तुत है।

0: इसी के साथ कर्नाटक संगीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। वंदे मातरम।
1: वंदे

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 जून 2026।

कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण।

पांच बजे हिंदी में समाचार, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 5:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग उष्ट्रासन और योग से संतुलित जीवन पर चर्चा। 5:20 पर सुनिएगा देशभक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम। 5:30 पर सुनिएगा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम स्वर रंजनी। 6:00 हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 6:10 पर प्रस्तुत किया जाएगा भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

6:40 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम का विषय होगा राहुल संकृतियायन के जीवन से प्रसंग। 6:45 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम रामचरितमानस। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बालकांड भाग 101।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोतों ने भी भाग लिया। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए गए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। सोशल मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शोखंत, आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे कि किस आसन को करने से आप अपनी दृष्टि दोष में लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आज हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जिसका नाम है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार ऊष्ट्रासन किया जाता है। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दें। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकने का प्रयास। इस बात का ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय गर्दन में किसी भी प्रकार का कोई झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। अगर संभव हो तो पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर टिकाए रखें। यह हमारी ऊष्ट्रासन की स्थिति होती है। बहुत लोगों में देखा गया है कि वह ऊष्ट्रासन नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप अर्धऊष्ट्रासन का भी प्रयास कर सकते हैं। अर्धऊष्ट्रासन के लिए आपको कुछ नहीं, बस अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर टिकाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और वक्षस्थल के भाग को पीछे की ओर ले जाएं और उस स्थिति में कुछ क्षण रुके और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ही आगे सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। तो यह अर्धऊष्ट्रासन की अभ्यास विधि है। ऊष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक होता है, पर इसके लिए आपको ऊष्ट्रासन का अभ्यास प्रतिदिन करना जरूरी है और एक दिन एक सेशन में आप ऊष्ट्रासन का अभ्यास 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं। ऊष्ट्रासन करने के बाद आप विश्राम स्थिति में वापस आ जाएं और कुछ क्षण वहीं रुकें। विश्राम स्थिति या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या आप दंडासन में भी विश्राम कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप प्रतिदिन ऊष्ट्रासन करने के अभ्यास से अपने दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग।

किसी भी पोजीशन में और किसी भी काम को 20 मिनट से ज्यादा की अवधि में ना करें। 30 सेकंड का ब्रेक लेकर के आंखों को रिलैक्स किया, अपनी सांस को

0: देर देख लिया, यानी थोड़ा आपे में आ जाना है, क्योंकि जो आपे में नहीं है फिर वो स्यापे में रहता है। तो हमें स्यापे में नहीं रहना
1: जी,
0: हमें आपे में जीवन जीना है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं लैप जो है ना वो बच्चे को रखने के लिए होती है, टॉप को रखने के लिए नहीं
1: जी,
0: होती
1: बिल्कुल
0: है ना। तो एक तो इसे लैपटॉप को लैप में नहीं रखना, पहली चीज। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी बेड टेबल्स भी आ जाती हैं, उनको रख के, यानी जब आप गोद में लैपटॉप को रखते हैं तो ये आपके जितने भी प्रजनन अंग हैं उनको इफेक्ट करता है एडवर्स रूप में। तो गोद में या जेब में मोबाइल फोन रखना, इससे बचें। और सर्वाइकल, जहां हम सर्वाइकल की बात करते हैं, चाहे वो सर्वाइकल स्पैज्म हो जाता है कुछ लोगों को, कुछ को स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल पेन है, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि विजुअली तो हम नहीं दिखा सकते यहाँ रेडियो के माध्यम से, बस ये समझ लें कि हमें कॉन्शियसली अपने पॉस्चर को सही रखना है। और दूसरा काम ये कि जैसे हमने कहा 20 मिनट्स के बाद का ब्रेक, तो उस ब्रेक में आप कमर को बस सीधा करके बैठेंगे और गर्दन को पीछे लटका देंगे, पीछे बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। सिर्फ इतना भी यदि आप करते हैं 30 सेकेंड्स के लिए हर 20 मिनट के बाद, तो आपको गर्दन में दर्द कभी नहीं हो सकता। हम क्या भोजन कर रहे हैं, कैसी पॉस्चर में बैठ रहे हैं, किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ हमारे जीवन का निर्माण करता है, हमारी लाइफ का निर्माण करता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये यौगिक रूप से हम प्राप्त करते हैं। सुबह जल्दी उठिए तो रात को अपने आप समय पे नींद आनी आरंभ हो जाएगी, लेट्स डू इट वाइस वर्सा। तो ये एक सेल्फ टॉक थेरेपी आपको सुबह उठने में बहुत लाभ देगी। हम कहते हैं जो तुम्हारी दादी खाती थी अगर तुम वो खा लो तो तुम कभी बीमार ना पड़ो, क्योंकि हमारी जितने भी पूर्वज हैं, हमारी दादी दादा नाना नानी, वो सब हम उन्हीं के तो DNA है ना आगे, तो वो सब जानते थे, बस हम उन चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करने की आवश्यकता है। देखिए आहार में तो हमें बस 3 नियम याद रखने हैं। पहला नियम कि पहले लोग घर पर भोजन करते थे और जब पेट में गुड़गुड़ होती थी तो बाहर जाते थे, है ना। और अभी उल्टा हो गया है, अभी हम जब भूख लगती है तो कहते हैं चलें बाहर, और जब पेट में गुड़गुड़ होती है तो कहते हैं चलें घर। ठीक है, पेट में गुड़गुड़ में घर जाना इज ओके, लेकिन जब पेट में भूख लगे तो बाहर नहीं दौड़ें, यानी जो घर का भोजन है उसका सेवन करें। और आहार में हम सब ये ध्यान रखें, सिर्फ अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं, सिर्फ इन चीजों का ध्यान रख लें कि जो भी भोजन डब्बे में पैक होकर के आ रहा है, फिर चाहे वो कितना डिजाइनर डब्बा है या कितना देसी डब्बा है, डब्बे का भोजन यानी पैक्ड फूड अगर आप अपनी डाइट से पूरी तरह से हटा दें, और साथ में चीनी जो सफेद चीनी होती है उसे अपनी डाइट से हटा दें, रिप्लेस कर दें गुड़ से, शक्कर से, तो वो आपके लिए लाभकारी है। और बस जब आपके सामने भोजन आए तो अपने आप से ये कुछ प्रश्न करने, क्यों खाऊं, कैसे खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, है ना। और अगर मन में आ रहा है, दुविधा है खाऊं कि ना खाऊं, तो बिल्कुल मत खाऊं,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, ये रूल याद रखना है, खाऊं कि ना खाऊं बिल्कुल मत खाओ, जाऊं कि ना जाऊं यानी फ्रेश होने तो जरूर जाओ, ये भी इतना भी अगर हम कर लें तो हमारा स्वास्थ्य निश्चित रूप से सही रहेगा। और एक चीज और इस यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी
1: प्रतिष्ठा जी,
0: कि हमारा जो बॉडी शेप है ना, हम सब चाहते हैं वी शेप हो, यानी अच्छी सी चेस्ट, उससे अच्छे ब्रॉड शोल्डर्स, चेस्ट और बिल्कुल पतली सी कमर, तो हम बस ऐसा भोजन ही करें कि अच्छा सा ब्रेकफास्ट, उससे कम लंच और छोटा सा डिनर। लेकिन अभी हम उल्टा करने लगे, हम भागते दौड़ते ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम ऑफिस में लंच करते हैं थोड़ा ज्यादा सा, और घर आके बहुत, इसीलिए अब हमारी बॉडी की शेप उल्टा भी बनती जा रही है ना, पेट तो इतने बड़े बड़े हो और अपर बॉडी आपकी कम हो, तो बस वी शेप भोजन करें तो निश्चित रूप से हम सब स्वस्थ।

जल दाता ग्रैंड वाटर, कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है।

वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर प्रस्तुत है देशभक्ति गीत का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं पहला देशभक्ति गीत सुप्रिया जोशी और रवि त्रिपाठी की आवाजों में।

इसी के साथ देशभक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। लीजिए प्रस्तुत है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम स्वरंजनी। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सुधा माथुर की आवाज में ये शास्त्रीय गीत।